भोर सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है खुद गर्ल्स फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने।

और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं खुद्दार फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि यानी 18 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। आपको देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 57। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10। आज सवेरे कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे सुबह 8:45 पर और दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 10:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद आप सुनेंगे सुबह 11:10। तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:25 पर अपनी आपको जानकारी दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के जीरो जगह पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेला सुरंग, एक कदम बुजुर्गों की ओर, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे दिन में 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 1:10 पर। और आज की हमारी कलाकार होंगी अभिनेत्री शबाना आजमी।

संगीत.com ये कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:30 पर, मनभावन कार्यक्रम होगा 3:10 पर और फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 4:10 पर। परिक्रमा कार्यक्रम का समय रहेगा 4:30 और 5:10 पर आनंद लीजिए पानी पर लिखी कहानी, जिसका आलेख होगा नीलम कुमार का और कहानी होगी अंग वस्त्र। विश्लेषण कार्यक्रम का समय रहेगा 6:10 और मार्केट मंत्रा होगा 6:30 पर। स्पीड सीरीज में हम आपके लिए लाएंगे 7:10 पर जन सेवा से देश सेवा तक। रात 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम होगा।

स्पोर्ट्स स्कैन आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर और स्पॉटलाइट 9:15 पर। रात 10:10 पर विश्व दर्पण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर आनंद लीजिए कार्यक्रम हर सिंगार का और रात 11:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मोर की इस वीला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

हम अक्सर शिकायत करते हैं उन सब बातों या चीज़ों के बारे में जो हमें जीवन में नहीं मिली, लेकिन धन्यवाद बोलने में हम जैसा कंजूस शायद ही कहीं मिलेगा। कभी सोचा

है आपने कि अगर ईश्वर भी इंसानों की तरह सोचकर व्यवहार करती तो बारिश की बूंदें और धूप के टुकड़े समेत प्रकृति के सारे अनमोल उपहार जो बिन मांगे हमारी सांसों की तरह हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उनसे महरूम होना कैसा होगा। इसलिए कहते हैं साथियों कि जीवन के हर पल हर क्षण के लिए उस परम शक्ति का आभार माने और अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहें।

साथियों, कहते हैं कि प्रार्थना में शब्द कम और भाव रहें भरपूर। प्रार्थना में शब्द कम और भाव रहें भरपूर, सच्चे मन से यदि नाम लो तो फिर प्रभु नहीं है दूर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों कहते हैं कि जब मन ठहरना सीख लेता है तब जीवन खुद रास्ता दिखाने लगता है, और यदि कदम भटकने लगे तो उस वक्त ईश्वर पर आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। 6:33 और 57 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM

गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूं मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस की सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ सुनते हैं ये सुंदर संगीतमय पाठ।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे खसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष

उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे अयोध्या कांड से लिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि अब देश और दुनिया का हाल हम जानेंगे समाचार बुलेटिन के जरिए। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों के उस पार आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड। फिलहाल आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार बुलेटिन।

0: आयोजिते तृतीये विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्तविंशत्यधिकैकशत धावनांकै पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में

साथियों, कभी गौर किया है आपने, सुबह का संगीत कुछ अलग ही होता है। पत्तों की हल्की सरसराहट, खिड़की से आती हवा और दूर कहीं चिड़ियों की आवाज, और इनके बीच अगर कोई धीमी सी धुन बज जाए तो लगता है जैसे सुबह कह रही हो कि आज थोड़ा धीरे चलो, आज खुद को भी थोड़ा समय दो। तो जनाब, आज की सुबह से कोई बहुत बड़ा वादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तय कर लीजिए कि आज छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करेंगे आप, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा बड़ी खुशियों से खूबसूरत नहीं बनती। कई बार सुकून के छोटे छोटे पल ही हमारा पूरा दिन बना देते हैं। 7:12 और 14 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

संगीत की खूबसूरती यही है कि वो हमसे कुछ पूछता नहीं, बस आता है, मन को छूता है और कभी कभी उन भावनाओं को भी आवाज़ दे देता है दोस्त, जिन्हें कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते। वेल, लता जी की आवाज़ में ये गाना था 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। बोल भरत व्यास के थे और संगीत वसंत देसाई का, और इस गाने में स्वर और शहनाई की गूंज का अद्भुत तालमेल है। वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे लता जी के सुर और शहनाई के स्वर आपस में संवाद कर रहे हों। और ये शहनाई बजाई थी महान कलाकार, भारत रत्न पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने। और कई साइंटिफिक रिसर्चेस भी इस बात पर रोशनी डालते हैं जनाब कि बच्चों की पर्सनालिटी को निखारने में और उनमें सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में संगीत की और ख़ास तौर से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। वेल, ये तो हमारा आपका डिसीजन है कि हम इस पर क्या करेंगे और क्या सोचते हैं, लेकिन बात तो सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता जी और मन्ना डे की आवाज़ों से सजा 1956 की फिल्म चोरी चोरी से, ये गोल्डन क्लासिक जो मैं लेकर आई हूँ अपनी प्लेलिस्ट में खास आपके लिए। वैसे 7:17 और 25 सेकेंड हो गए हैं और 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

साथियों कहते हैं कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को स्वयं मालूम नहीं पड़ता कि अगला दृश्य क्या होगा। सच है बात बिल्कुल, लेकिन यही अनिश्चितता, यही अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक अनजाना सा डर पैदा करती है और फिर उस डर से आगे बढ़ते सोचते हुए हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही निकाला जा सकता है कि जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि चिंता, नफरत, दुख, डर और ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस के लिए आपके पास समय ही ना बचे। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तो ऑप्शन हमारे पास है कि हम दुखी रहना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हैं। वैसे 7:24 पर आप जुड़े हुए हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ और ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ।

आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा, और आज का दिन इंटरनेशनल इक्वल पे डे के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से म्यूजिकल दिल्ली में 8:45 पर। और आज के मौसम की अगर हम बात करें दोस्त, तो आज धूप खिली रहेगी ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। हवा की गति रहेगी करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और आज की प्रोग्राम समरी भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो 8:45 पर आपके साथ रहूंगी मैं म्यूजिकल दिल्ली गीत में उसके पहले सेगमेंट में, और हम करेंगे खूब सारी बातें। 9:10 पर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रोग्राम जब जन सेवा से देश सेवा, और 9:45 पर म्यूजिकल दिल्ली का सेकेंड सेगमेंट आप सुनेंगे रेखा के साथ। 10:30 का समय रहेगा दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद, और 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको अरुणाचल प्रदेश लेकर चलेंगे। 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेत्री शबाना आजमी के बारे में बात करेंगे। 2:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com, और 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में आज आप सुनेंगे नीलम कुमार की लिखी कहानी अंगवस्त्र। 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का, और 7:10 पर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। 10:30 हर सिंगार, और 11:40 पर गीत मेरे मन मीत, और एक और गाना लता रफी की खूबसूरत आवाजों में आपकी नजर कर रही हूँ फिलहाल गोल सुप्रभात में।

0: छूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन।
1: जनाब फिलहाल इसी गीत के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा गोल्ड सुप्रभात से, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ और गोल्डन म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए। इस गाने के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे और उसके बाद समाचार और उसके पार। 8:45 पर आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली में। तो आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर।
2: वो क्या चीज थी मिला

0: नमस्कार। सुबह की पहली किरण, हवाओं में खुलती ताजगी, चाय की प्याली से उठती खुशबू और आपके रेडियो से आती एक आवाज। वो आवाज क्या कह रही है? उठिए जनाब, सुबह हो गई है। आज सवेरे के आज के संस्करण में अपनी को होस्ट नीना आरेकल के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना, जहां हर सुबह मिलती है खबरों की ताजगी, संगीत की मिठास, इतिहास के पन्नों की दिलचस्प बातें और कुछ ऐसी मुस्कुराहटें जो आपका पूरा दिन बना दे, है ना नीना?
1: Yes, Naveen. And with new day comes new strength. And with that thought, I extend a warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 18th of September 2026.
0: And Nina, kisi ne kya खूब कहा है, सुबह का सूरज कहता है हर दिन एक नई कहानी है, जो बीत गया वो कल था और आज की अपनी रवानी है। तो क्यों ना हो एक नई सुबह थोड़ी उम्मीद के साथ शुरू की जाए, क्योंकि ये दिन आपका इंतजार कर रहा है और कह रहा है आज मुझे खास बना दो ना, और ऐसा खास बना दो कि इतिहास में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। तो चलिए आज के दिन को खास बनाते हैं। अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं और नीना आज आपको दिन भर के लिए तैयार करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले खास खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम से देने को कहा है।
1: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.

0: are being transformed into modern public service centers named Shaheed Veer Gundadhur Seva Dera. Bastar Olympics and Bastar Pandum reflects the changing picture of Bastar. Prime Minister Narendra Modi said that areas which once witnessed terror are now providing opportunities for talent.
1: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है. जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े. बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है. यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है.
0: द गवर्नमेंट्स फर्म रिजॉल्व हैज रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ माओइस्ट सरेंडरिंग इन बस्तर. एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू मेक दीज फॉर्मर माओइस्ट इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल ट्रेनिंग. वन सच फॉर्मर माओइस्ट लखमू पोयाम ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट सेड दैट व्हाइल वर्किंग विद द नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन ही ऑलवेज लिव्ड अंडर द फियर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ. ही इज नाउ अंडरगोइंग स्किल ट्रेनिंग एंड लीडिंग अ पीसफुल लाइफ.
2: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद
0: आफ्टर सरेंडरिंग वी आर लिविंग हियर नाउ एंड वी फील गुड. व्हेन वी वर देयर वी ऑलवेज लिव्ड इन फियर दैट वी माइट बी किल्ड और शॉट. हियर वी कैन ईट ड्रिंक स्लीप एंड वर्क पीसफुली एंड मीट एंड इंटरेक्ट विद एवरीवन. वी फील गुड लिविंग हियर. द स्टोरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सरेंडर्ड माओइस्ट लाइक लखमू पोयाम शो दैट फॉलोइंग द एंड ऑफ नक्सलिज्म अ न्यू डॉन ऑफ डेवलपमेंट इज इमर्जिंग इन बस्तर. विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी न्यूज, रायपुर.
3: हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी. कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सेट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी देगी. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे.
4: External Affairs Ministry has notified the Passports Amendment Rules 2026, amending the Passports Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20 International to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets and stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl.
3: नीना, आज सवेरे का हर पन्ना अपने आप में कुछ कहता है. चलिए अपनी इस पत्रिका का एक और पन्ना पलटते हैं और नजर डाल लेते हैं कि क्या कहती हैं आपके शहर के कपड़े. तो सीधा हम आपको चेन्नई लिए चलते हैं.
4: A caregiver in Chennai has been booked for poisoning community cats after the intervention of People for Ethical Treatment of Animals. The cruelty response officer of the organization, Sri Kutti Raja, said that the PETA India commends Chennai police for registering an FIR and sending the message that cruelty to animals will not be tolerated. He also said that it is imperative that members of the public should report cruelty to animals to the police. Some more from Chennai. The anti-terrorism squads of Tamil Nadu and Uttar Pradesh arrested a 19-year-old youth on charges of attempting to radicalize youth. Police said that he was a part of an online module linked to Al-Qaeda in the Indian subcontinent. The Coimbatore ATS team handed him over to the UP ATS, who produced him before a local court and took him to Uttar Pradesh on a transit prisoner warrant.
3: बात दिल्ली की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल अंगदान संकल्प अभियान की शुरुआत की. इस पहल का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना, प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करना और नागरिकों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल दिल्ली सचिवालय में दो विशेष गीतों का शुभारंभ किया.

0: गीत दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस रचना में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ये बेहतर सुविधाओं, नए अवसरों और शिक्षा के बदलते माहौल के प्रति श्री मोदी की सराहना को दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में वो शामिल हुई। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा भाव का सशक्त संदेश देता है।
1: एंड नाउ नवीन, वी मूव ऑन टू बेंगलुरु। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका एंड द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली हैव साइंड एन एमओयू टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्मेसी स्किल लैब एट द आरजीयूएचएस भीमनाकप्पे रिसर्च सेंटर। NIMHANS observed World Duchenne Awareness Day under theme Access Changes Lives, bringing together 35 children living with Duchenne muscular dystrophy, their families and healthcare professionals. And now Mumbai.
0: और अब बात मुंबई की। मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र ने मुंबई क्षेत्र के सभी विद्यालयों को वार्षिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है वो दो श्रेणी में आयोजित की जाएगी। पहली श्रेणी में 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्र होंगे और दूसरी श्रेणी में 8वीं से 10वीं के। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अंतिम तारीख 25 सितंबर है, जबकि लिखित परीक्षा जो होगी वो 30 सितंबर को होगी और हर श्रेणी में टॉप के जो 32 टीमें होंगी मौखिक प्रश्नोत्तरी के दौरान उनके लिए अर्हता प्राप्त करेंगी। अगली खबर, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कल बीड रेलवे स्टेशन से बीड पुणे विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ, जो 1948 में हैदराबाद के निजाम पर भारतीय सशस्त्र बलों की विजय के बाद मराठवाड़ा के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ का प्रतीक है।
1: Time to move from Mumbai to Hyderabad. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, commemorating Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and his 25 years of dedicated public service, women in Timapur village of Kundakur Mandal, Rangareddy district, organized a grand Ashirwad Deepam event. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and Union Minister G. Kishan Reddy attended the celebration, where local women welcomed them traditionally with lit lamps and mangal aarti.
0: बात कोलकाता की। राज्य में आज विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है। कारखानों, औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में वास्तुकला और मशीनरी के देवता की पूजा के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। दुर्गापुर, आसनसोल और नादिया के कल्याणी सहित राज्य के औद्योगिक केंद्रों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पूजा स्थल रंगारंग रोशनी और फूलों से जगमगा रहे हैं। देश दुनिया की खबरें हों, शहर की खबरें हों और आपके शहर का मौसम हम न बताएं, नहीं हो सकता। बिना मौसम के तो शायद कोई भी न्यूज़ मैगजीन अधूरी ही है। तो चलिए मौसम का हाल जानते हैं, दिल्ली से शुरू करते हैं। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, मौसम का मिजाज हमेशा हमेशा हमारी बातचीत का एक हिस्सा होता है ना नीना?
1: Yes,
0: तो चलिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेरे साथ और बाकी की चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद नीना के साथ। दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और मौसम विज्ञान कहता है कि साथ में विभाग भी लगाइए। मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रहेगा, यानी सुबह का मौसम सुहाना, लेकिन दिन चढ़ने के साथ गर्मी का एहसास पड़ेगा। तो मैं और नीना की यही सलाह है आपको, दिल्ली वालों, सुबह की चाय के साथ मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन दोपहर में धूप से बचने के लिए पानी की बोतल साथ रखिए। चेन्नई क्या कहता है?
1: Chennai is likely to see generally cloudy sky with moderate rain. The temperatures are expected to range between minimum 27 degree and maximum 38 degrees Celsius. Bengaluru is to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 25 degree to 34 degree Celsius.
0: Nina, Mumbai ka mausam hamesha logon ko lubhata hai aur hamesha khoobsurat bana rehta hai jahan thodi si humidity

0: हुई वही फुहारे जो हैं वो आपका मन मोह लेती है। आज भी लगभग कुछ ऐसा ही रहेगा, 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दिन भर का तापमान रहेगा। मॉनसून का रंग पूरी तरह से फीका नहीं हुआ है और हल्की बारिश का एहसास आप आज भी उठाएंगे। कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग कहता है कि कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ थोड़ी बौछारें भी पड़ सकती हैं। टेम्परेचर 24 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। तो यानी कोलकाता में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही होगा, बादल, धूप, बरसात। तो ये थी आपके शहर के मौसम की जानकारी। आपका दिन खूबसूरत रहे, सफ़र सुरक्षित रहे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। इन सब ख्यालों के साथ आप घर से निकल पड़िए, लेकिन ये जरूर जानिए कि आज का दिन क्या कहता है देश दुनिया का इतिहास।
1: Yes, Naveen. International Equal Pay Day is observed every year on 18 September to highlight the importance of equal pay for work of equal value. The United Nations uses the occasion to raise awareness about persistent pay disparities, particularly between women and men, and to promote equal opportunities in the workplace. The day calls on governments, employers, and societies to support fair and non-discriminatory wage practices and to work towards closing the gender pay gap. Equal Pay Day serves as a reminder that fair remuneration is an important part of achieving equality, dignity, and decent work for all.
0: नीना, एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत है और इतिहास के पन्नों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आज भी हमारे बीच जीवित है। आज की तारीख है 18 सितंबर, एक ऐसी तारीख जो साहित्य, सिनेमा, न्यायपालिका, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय जगत की कई महत्वपूर्ण शख्सियतों से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। बात 1809 की, जब लंदन में आज ही के दिन रॉयल ओपेरा हाउस खुला था।
1: In 1810, Chile declared independence from Spain.
0: 1967 में वो आज ही का दिन था जब नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था।
1: In 1851, the first edition of the New York Daily Times, which later became the New York Times, was published.
0: और 1986, मुंबई में पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया था।
1: In 1919, women gained the right to vote in Holland.
0: और अब जुड़ी हुए हैं उन व्यक्तियों से आज का दिन, उन व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ है आज का दिन जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ी है। 18 सितंबर 1906, जानते हैं हंसी के उस कवि की कहानी को कहता है जिनका नाम है काका हाथरसी। आज के दिन 1906 में उनका जन्म हुआ था, व्यंगकार काका हाथरसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काका हाथरसी का असली नाम क्या था? काका हाथरसी का असली नाम था प्रभु लाल गर्ग। काका नाम उन्हें एक नाटक में निभाए गए काका के किरदार से मिला था और हाथरसी उनके शहर हाथरस से जुड़ा है। तो इस तरह प्रभु लाल गर्ग बन गए काका हाथरसी। और नीना, जानती हैं काका हाथरसी एक ऐसी शख्सियत थे जो न सिर्फ हंसाते थे बल्कि हंसाते हंसाते समाज को आईना भी दिखाते थे। और उनका जो व्यंग था वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। और इसकी छोटी सी झलक मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते थे कि अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज। अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज। ऊपर से हैं इंडियन और भीतर से अंग्रेज। बस चार पंक्तियां लेकिन व्यंग बहुत गहरा। आइए सीधा मैं आपको काका हाथरसी से जोड़ता हूं और सुनते हैं कि काका हाथरसी क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और कि आज ही के दिन 18 सितंबर 1995 में उनका निधन भी हुआ था। यानी आज की तारीख उनके जन्म और मृत्यु दोनों से जुड़ी हुई है। और काका हाथरसी ने कहा था कि जब मैं ये दुनिया छोड़ूं तो कोई रोएगा नहीं, वो सिर्फ हंसेगा और हंसता रहेगा। देखिए काका क्या कहते हैं।
2: ए पंक्तियां सुनिए। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद, शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद। एक नेत्र था बंद, रात दिन आहें भरता, रात दिन आहें भरता, शिव शंकर की पूजा नित्य नियम से करता। तो भोले हुए प्रसन्न, शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, भोले हुए प्रसन्न कहा वर मांगो भैये। वह बोला वर नहीं, मुझे तो कन्या चाहिए।
0: तो ऐसे थे काका हाथरसी और ये उन्हीं की आवाज थी। काका हाथरसी को 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आज सुबह हमने बहुत खूबसूरत तरीके से काका हाथरसी को याद किया।
1: बॉर्न इन स्टिल वाटर ओक्लाहोमा इन

0: आज ही जयंती है भगवान दास की। विभिन्न भाषाओं के प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री, देश की भाषा संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र और शिक्षित भारत के मुख्य संस्थापकों में उन्हें गिना जाता है। और बहुत खास बात यह है कि केवल 24 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साइंस ऑफ द पीस एंड साइंस ऑफ इमोशन नामक पुस्तकों की रचना भी कर ली थी।
1: Jimi Hendrix, born in 1942 in Seattle, is remembered as one of the greatest and most influential guitarists in rock history. He began playing guitar at 15, later joining the U.S. Army before moving on to perform with acts like the Isley Brothers and Little Richard. His career took off when he moved to England in 1966, where he formed the Jimi Hendrix Experience with Noel Redding and Mitch Mitchell. Within months, the band scored hits with Hey Joe, Purple Haze, and The Wind Cries Mary. Enjoy Jimi Hendrix Experience.
0: और अब बात सारंगधर दास की। 1957 में स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का निधन हुआ था। 1958 में समाज सेवी और शिक्षाविद भगवान दास जी का निधन हुआ था, जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात राजनारायण बोस की। एक ऐसी महत्वपूर्ण साहित्यिक नाम राजनारायण बोस, जिनका निधन आज ही के दिन 1899 में हुआ था, और वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के प्रमुख चिंतकों में से एक थे। और रीना, थोड़ा सा फिल्मी हो जाएं। बात 1953 की। हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय हास्य अभिनेता हुआ करते थे असित सेन, एक ऐसे कलाकार जो सिर्फ अपने डायलॉग्स से और भाव भंगिमाओं से हंसा दिया करते थे। बहुत ही सीरियस हुआ जाते थे, लेकिन जब भी वो डायलॉग बोलते थे तो लोगों को हंसी आ जाती थी। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीनों के लिए उनका नाम परिचित है। संवादों की जरूरत नहीं होती थी असित सेन को, बस उनके एक्सप्रेशन ही काफी थे।
2: ये देखो, भरा हुआ पिस्तौल है। इस इलाके में हम पुलिस वालों को भी तैयार होके आना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों ने बिना हथियार लिए डाकुओं को मार भगाया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा इन बहादुरों के दर्शन करता हूँ। मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। जो आज तक पुलिस वाले न कर सके, वो तुम लोगों ने कर दिखाया। अच्छा, फिर मिलेंगे।
1: Benjamin Solomon Carson Sr. is an American retired neurosurgeon, academic, author, and government official serving as a National Nutrition Advisor at the Department of Agriculture until 2025. In 1987, he gained fame for leading a team of surgeons in the first known separation of conjoined twins joined at the back of the head. He performed the first successful neurosurgical procedure on a fetus inside the womb, developed new methods to treat brainstem tumors, and revitalized hemispherectomy techniques for control.

18 सितंबर 1957, ये दिन याद किया जाएगा स्नेह लता श्रीवास्तव के लिए। भारतीय संसद की प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर रही और लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी। ये उपलब्धि भारतीय संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और अब रुक करते हैं सिनेमा की ओर। बात 18 सितंबर 1950 में जन्मी शबाना आजमी की, एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम आते ही अभिनय की गंभीरता, संवेदनशीलता और सशक्त महिला किरदारों की याद आती है। उन्होंने समानांतर सिनेमा से लेकर मुख्य धारा की कई फिल्मों में काम किया। कुछ गीत हैं जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, उन पर पिक्चराइज हुए, सुनते हैं।

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। अब मैं और नीना बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, कुछ नया सीखिए, किसी की मदद कीजिए और अगर मौका मिले तो किसी को हंसाइए ही जरूर, क्योंकि एक मुस्कान मुफ्त होती है लेकिन उसका असर बहुत कीमती होता है।
1: Keep smiling, keep shining, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
4: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और

0: कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दो दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कस्बे में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हिद खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am VC Pramod. The headlines. Election Commission freezes.

0: इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल जिमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकाज से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इंतखाबी कमीशन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा होने वाले असेंबली जिमनी चुनाव के दौरान पार्टी का नाम और चुनाव निशान इस्तेमाल न करें। अपने उबूरी हुक्म में कमीशन ने दोनों ग्रुपों से कहा है कि वो आज दिन में 11 बजे तक अपने अपने ग्रुपों के नाम पेश करें ताकि कमीशन उन्हें तस्लीम कर सके। चुनाव कमीशन ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय की जेर क्यादत पार्टी के दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं के मौकफ की समात के बाद उबूरी हुक्म जारी किया। बाद में कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो ग्रुप हैं जिनमें से एक की क्यादत ममता बनर्जी और दूसरे की जनाब अरूप रॉय कर रहे हैं और दोनों ही ग्रुप अपने आप को असल पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेगीनगर सीटों के लिए असेंबली जिमनी चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होना है। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल 2026 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। उम्र दाखिला की वजारत के नुमाइंदे बिल की दफात के बारे में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी थी। मस्कूरा बिल में गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इसका मकसद गैर मुल्की अदियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा के 21 मेंबर हैं जिन्हें स्पीकर ने नामजद किया है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा के भी 10 अरकान हैं जिन्हें चेयरमैन मौसूफ ने नामजद किया है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में शामिल लोकसभा के सरकर्दा अरकान में तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनिका गुरुस्वामी हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ऐवान में पेश करना है। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर काबिल भरोसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश रही है और मुल्क इस जरूरत की खातिर मुसलसल खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने उजागर किया कि हम अहम सनतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करेगी और दुनिया भर में सप्लाई चेन से मुतालिक चैलेंजों के दरमियान नए इम्कानात पैदा करेगी। वजीर आजम ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: इम्तिहानात के इनेकाज से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं।

एनटीए की वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर दस्तियाब हैं। ये इम्तिहान मुल्क के 272 शहरों में 454 मराकज पर इस महीने की 9 और 10 तारीख को कराया गया था। एजेंसी ने इम्तिहान कराने के ताल्लुक से 16 अगस्त को नोटिस जारी किया था। उम्मीदवार अपने अपने मजामीन की हतमी आंसर कीज देखने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए

0: सादगी से देखते रहें। किसी भी तरह की वजाहत के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर राब्ते के लिए फराहम की गई तफसीलात के जरिए एनटीए हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं। हतमी आंसर कीज का जारी करना यूजीसी एनईटी के इवैल्यूएशन के अमल में एक अहम कदम है, जिसके जरिए भारतीय यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अहलियत का तायुन किया जाता है। वजारत खजाना नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब भारत के सफर की माली एयानत पर दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वजारत ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़रा खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरीज के लिए होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुख्तलिफ वज़रा आला और रियासतों के वज़रा खजाना के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अवामी जिंदगी के 25 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह सफर अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र पर मबनी है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खिदमत और अच्छी हुकुमरानी के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के लिए मुसलसल कोशां हैं। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के अहद के तहत लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले में आज हम नक्सलिज्म के खात्मे पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में नक्सलिज्म के खात्मे के बाद गोलियों की आवाज़ों के बजाय एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जदीद अवामी खिदमात के मराकज में बदल गए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम बस्तर की बदलती हुई तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाके दहशतज़दा थे वो अब हुनर के लिए मौके पैदा कर रहे हैं।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजारत खारजा ने 1980 के पासपोर्ट जाब्तों में तरमीम करते हुए पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया गया 36 सफहात पर मुश्तमिल एक आम पासपोर्ट 5 साल तक या उसकी उम्र 18 साल होने तक जो भी पहले हो काबिल कबूल रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में हल्के जंगी तैयारे तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ट्विन सीटर ट्रेनर्स और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय फिजाइया को सौंपेगी। वो पवन हंस लिमिटेड को आइंदा सिलसिले के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाना अंदरून मुल्क सलाहियतों के इस्तेहकाम और गैर मुल्की ज़राए पर इन्हिसार को कम करने की जानिब एक और कदम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस राबते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबती राबतों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सलाहियत साजी को मजबूत करने पर भी तवज्जो दी गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में उन्होंने मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान महाज आराई के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते होने वाले अक्वाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के आला सतह के इजलास में शिरकत के लिए ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं के लिए वीजा की मंजूरी दे दी है। इनमें ईरान के सदर मसूद पेदशकियान और वजीर खारजा अब्बास अराकची शामिल हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान 6 महीने से ज्यादा अरसे से जारी टकराव के तनाजुर में ये कदम गैर मामूली है। उधर यमन में ईरान की पुश्त पनाही वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और बहर अहमर में बहरी जहाजों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस और चीन ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की उस

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा।
1: भाई दिल और दिमाग को संभालना कई बार हम सबके लिए तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम अपने साथ कुछ गलत होता देखते हैं, है ना। जैसे कि एक समान काम के लिए जब दो व्यक्तियों को अलग अलग अमाउंट का वेतन दिया जाए तो फिर किसे बुरा नहीं लगेगा, और वो भी तब जब एक व्यक्ति पुरुष हो और दूसरी महिला। जी हाँ, पूरी दुनिया की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत आय लगभग 20% कम है। इसीलिए 2019 में यूएन जनरल असेंबली ने 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में स्थापित किया ताकि महिलाओं की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पे इक्विटी की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सके। फिलहाल वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए हम भी लेते हैं एक और कदम और एक म्यूजिकल ब्रेक 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। वैसे 8:50 और 4 सेकंड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज गोल्ड स्टूडियो से आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

8:55 100.1 आकाशवाणी एफ एम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और म्यूजिक और वो भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर अच्छा और फुट टैपिंग हो तो हमारा मूड अपने आप बना देता है। और आज फ्राइडे है जनाब, वीकेंड हम सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे प्लान्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरे भी और आपके भी, तो उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और साथ में रखते हैं गोल्डन म्यूजिक को। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके अनुसार कुछ चेंज ये हुआ है कि जब पंजीकरण कराने में यानी रजिस्ट्रेशन कराने में अगर 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उससे ज़्यादा की देरी हो गई है, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। और इसका उद्देश्य क्या है जनाब? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता बनाई जा सके, है ना। और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हम जन्म और मृत्यु के रखते हैं उनको सटीक, ट्रांसपेरेंट और समयबद्ध बनाया जा सके। तो चेंजेस तो फिर देखिए जनाब हमेशा अनिवार्य होते हैं, ज़रूरी होते हैं जीवन में अगर हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। और अगर चेंज अच्छे के लिए हो तो फिर बदल जाना ही अच्छा होता है। फिलहाल हम यहाँ और कुछ नहीं बदल रहे, हम आपको सुनवाने वाले हैं एक और गोल्डन क्लासिक और इसी तरह आपको जुड़े रहना है 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।

भाई फिलहाल तो मेरे चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप एंजॉय करते रहिए गोल्डन म्यूजिक को 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। फिर मिलूंगी आपसे, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ऑन 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो

0: प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक की सरायकालेखा शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, उड़ीसा, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that they are

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योतिग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद जी।
1: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
2: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए, उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था, उसकी नींव है वो 3 सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला?
3: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालिक किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायत

0: शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो हर एक स्तर पे, गाँव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, यह स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे हम सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है, और प्रशासनिक ढांचे में भी कहाँ कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसको कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है, उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में चार चार छह छह घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल

0: एक्टिविटीज है उनको 24 आवर थ्री फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया, जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योति ग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
3: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी

0: का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है। और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है, उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई। तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
0: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं, दो तीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी

0: यूनिवर्सिटीज डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लान्ड एक फिनटेक सिटी है, वो
1: जी
0: फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए हैं उनके लिए काफी कुछ। एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
2: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहां की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1,100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
3: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1,371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो

0: पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी, लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे, कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी, वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ
0: जी
1: किया, जो आज
0: बिल्कुल
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।

0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और दोस्तों, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक और जनसेवा जीवन के 25 साल पूरे होने पर देश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षो के सार्वजनिक जीवन को देश सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की लंबी यात्रा माना जाता है। इन्हीं 25 वर्षों की निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और हर नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद प्रधानमंत्री के योगदान और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। इस अवसर को सिर्फ उत्सव के रूप में नहीं बल्कि सेवा और जनभागीदारी के संकल्प के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें आम लोगों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर जोर भी दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास होगा। विद्यार्थियों और युवाओं को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहत। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं युवाओं की प्रतिभा और नए विचारों को मंच देने के लिए नवाचार और हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक सोच, तकनीक और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। एक महीने के इस व्यापक अभियान में अनेकों कार्यक्रमों के जरिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जनभागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, ऐसे न जाने कितने ही कार्यक्रम होंगे इस एक महीने में। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम में हर नागरिक को 25 निर्धारित सेवा गतिविधियों में से किसी एक से जुड़कर समाज के लिए योगदान देने का मौका भी मिलेगा। तो वही आप भी इस जनभागीदारी का हिस्सा बन सकते हैं और आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं। 9:45 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। जुड़े हैं आप म्यूजिकल दिल लगी के इस खूबसूरत सफर में 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ।

सब जब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो समाज, परिवार और देश में एकता, ताकत और तेजी से विकास होता है ना। इसीलिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई। दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाली ये एक सरकारी योजना है। अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत मिलने वाली ऋण राशि की, तो स्वरोजगार, वाहन खरीद या सहायक उपकरणों के लिए प्रति लाभार्थी 50 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि के आधार पर 5 से 9 प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज जो है वो देना पड़ता है और महिला दिव्यांगजनों को ब्याज दरों में 1% की छूट भी मिलती है। कृषि, लघु व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा यानी स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है और कम से कम 40% या उससे अधिक दिव्यांग इसके पात्र

रहे। उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य आवेदकों के लिए 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। बौद्धिक या मानसिक तौर से दिव्यांगजनों के लिए 14 वर्ष से अधिक, उच्च शिक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। और अगर दस्तावेजों की बात करूं तो UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबर होना जरूरी है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप NDFDC योजना के पेज पर या फिर माई स्कीम पोर्टल पर जाकर आप सारी जानकारी इस योजना से जुड़ी हुई ले सकते हैं। और भी काम की बातें बताऊंगी जरूर अगर वक्त रहा तो, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ इस सफर से विदा, लेकिन फिर से मिलूंगी 10:30 बजे। इसके बाद आप सुनेंगे समाचार। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में

0: भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
1: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक के सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigam and Rejinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup-Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently 2 rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The Commission will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले दो महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हुई। 6145 लोग अभी भी लापता। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। अमेरिका ने इससे पहले महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। प्रस्ताव कल भारी बहुमत से पारित हुआ। इसके

0: पक्ष में 152 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, इसराइल और पराग्वे ने इसके विरोध में वोट किया। 4 देश मतदान से दूर रहे। चीन और रूस ने भी अब्बास को वीजा नहीं देने के अमेरिकी फैसले की आलोचना की थी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख आज मॉस्को स्थित राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थिम्फू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और भूटान के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश से भारत आने वाली हिल्सा मछली अब भारत से बांग्लादेश निर्यात की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार पिछले 2 महीनों में भारत से करीब 500 टन हिल्सा बांग्लादेश भेजी जा चुकी है। कारोबारियों को जल्द ही 150 से 200 टन अतिरिक्त हिल्सा निर्यात होने की उम्मीद है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश की हिल्सा का भारतीय बाजार, विशेषकर पश्चिम बंगाल में वर्चस्व रहा है, लेकिन बांग्लादेश में घरेलू उत्पादन घटने से भारतीय हिल्सा की मांग बढ़ी है। निर्यात की गई हिल्सा की बड़ी मात्रा गुजरात के भरूच से भेजी गई है, जबकि कुछ खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित थोक मछली बाजार से बांग्लादेश पहुंची है। हिल्सा की चटगांव और सिलहट में विशेष मांग है। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने कल से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने परिसरों में सफाई अभियान चलाया। अजरबैजान, आइसलैंड, सऊदी अरब, लाइबेरिया और तंजानिया में भी भारतीय मिशनों ने अभियान की शुरुआत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत विषय के साथ चलाया जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दन्नुक के कुल्दान इलाके में 3 शव मिले हैं। ये घटना प्रांत में कथित गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन लापता किए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आई है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और कथित गैर न्यायिक हत्याओं को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। अमरीका ने क्यूबा की निकेल खनन उद्योग और सैन्य अनुसंधान संस्थानों को निशाना बनाते हुए 8 क्यूबाई संस्थाओं और 3 सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
3: अमरीकी विदेश विभाग ने क्यूबा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह खनिजों से होने वाली आय का इस्तेमाल आम नागरिकों के लाभ के बजाय अपने सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा सरकार दशकों से देश के संसाधनों को एक सीमित और भ्रष्ट सैन्य अभिजात

0: अकबर के हाथों में पहुंचाती रही है। इन प्रतिबंधों के तहत नामित पक्षों की अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी नागरिकों के नियंत्रण वाली संपत्ति और संपत्ति में हितों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमरीकी प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी समेत शीर्ष ईरानी अधिकारियों का वीजा मंजूर कर दिया है। ईरान को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच 6 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है और गतिरोध बना हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष फिर से लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी जारी है, लेकिन हाल ही में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के अंतर्गत विदेशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज करना, हथियारों के सौदों पर रोक और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूरोपीय संघ यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन खरीदने के लिए 3.3 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों के बीच यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ ने अपने यूक्रेन सपोर्ट लोन के तहत पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी धनराशि मंजूर की है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हो गई है, जबकि 6145 लोग अभी भी लापता हैं। प्रभावित जिलों में बचाव, राहत और पुनर्वास अभियान जारी है। सबसे अधिक मौत चितवन में हुई है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
2: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. India votes for United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address high-level meeting of assembly in New York. Army Chief General Dhiraj Seth visits Russian Land Forces headquarters as part of his 3-day official visit to Russia. India exports around 500 tons of Hilsa fish to Bangladesh in the past 2 months. 3 civilians killed by Pakistani forces in Balochistan. Death toll in Nepal flood climbs to 1,410 while 6,145 people remain missing. And in men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win series 3-0. India has voted for a United Nations General Assembly UNGA resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the assembly in New York, US next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel, and Paraguay voted against it, and four others.

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31:07 हो चुके हैं और आपको तो पता ही है कि ये कौन सा सफर है। ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप हमें अपने दिल के मेल हम तक भेजते हैं और आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुँचाते हैं। तरीका तो आप जानते ही हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 9868867533 पर, यानी 9868867533 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldaiadelhi@gmail.com।

गोल्ड AIRTELE@gmail.com। बस अब नहीं बताऊंगी। हाँ, अब मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। लगातार मेरे पास बरसात होनी शुरू हो जाती है, सेकंड्स भी नहीं लगते हैं और इतने सारे मैसेजेस होते हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रह जाते हैं। तो नाराज़ निराश मत हुआ करिए, क्योंकि कभी ना कभी आपका नंबर भी आएगा। अब इतने सारे मैसेज होते हैं ना, जो दौड़ में सबसे आगे निकल गया, समझ लीजिए उसका नाम आ गया। हाँ, लेकिन कुछ लोग ना मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, और वह शिकायत ही करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर, गायकवाड़ साहब, आपने पिछली बार मुझसे यही शिकायत की थी कि कई दिनों से आप फरमाइश भेज रहे हैं, शायद हमारे पास गाने नहीं और हम आपकी फरमाइशें नहीं बजाते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार आपका गीत बजाया था और आप फिर भूल गए, आज आपने फिर से वैसा ही लिखा है। तो ये सब मत करिए, हमें बहुत दुख होता है जब हम आपकी बात को सुन भी लेते हैं और पूरा भी करते हैं और उसके बाद भी आप शिकायतें, सेम शिकायत बार बार भेजते हैं। और अब आपके मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का मैसेज। और हमें लिखा है धर्मेंद्र शिपा कपिल और ईशान पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। हमारे पास ये मैसेज पहुँचा है सुरेश मालोद, वर्षा, श्रद्धा और मानसिका कोपरगांव से। और हमें ये लिखा है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खुरवाल, सचिन, अमन दीपांशु ने। और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा ने। साथ ही अफरोज शेख पता नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन और पूरा परिवार हमें ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से सुन रहे हैं। आफ्ताब, अफजाल, ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और कमल कुमार का हमें अफजाल मलिक के साथ कोल सिटी बरका काना से मैसेज पहुंचा है। और ये हमें लिखा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी और पूरे परिवार ने हमें कहाँ से लिखा है, नवाशहर पंजाब से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी और पूरे परिवार का मध्य प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचा। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, अक्ताप का मैसेज। शोभापुर से मेरठ कैंट से हमें लिखा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। रैया रोड राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी का मैसेज। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी का, पूजा पायल और जगदीश के साथ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका का मैसेज। मुंबई से अनुपर चात्या, शमसुल कमर, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का मैसेज। जॉन डिकेस्ट्रो, रोज, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा और पूरे परिवार का दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है बड़ा बम चौक से ममता मार्कंडे, संजय और बेबी किट्टू का। और इसके साथ साथ सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग का मैसेज। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ का मैसेज। जली जैन मंदिर वाली गली खुरावली से। और मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार का गांधी चौक बाड़मेर से। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, पूजा प्रांजल और पूरे परिवार का। और हाँ, आपसे ये बात कहूँगी कि ग्रीन कलर से मत लिखें, ब्लैक कलर से लिखें ताकि पढ़ना आसान हो। ये इतना लाइट होता है कि मैं आपके नामों को ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ। और इसके अलावा महेश अग्रवाल ने हमें लिखा है बहादुरगढ़ से। और साथ ही ये मैसेज हमें मिला है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का। और ये मैसेज हमारे पास भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली और वकील अहमद का। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम का हमें ओखला संगम विहार से। राजनगर गांधी चौक से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता का मैसेज। आसाम से हितेंद्र दास ने हमें लिखा है। और गिरधारी लाल अग्रवाल हमें धनबाद झारखंड से लिख रहे हैं। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ तैमूर और कलीम का गंजुंडवाड़ा से मैसेज। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम का हमें कुमार हेड़ा सहारनपुर से पहुंचा। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीतीश, सुरभि और पूरे परिवार का पद्मा टॉकीज नेपानगर से। दीपेश, पूनम वर्मा और ज्योति शिवांश का हमें पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मैसेज। कमल बालूजा, मधु सागर हमें लिख रहे हैं मजनू का टीला से। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का मैसेज। हमें लिखा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री ने पांडर कवड़ा से। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या

और सविता का हमें नांदेड़ महाराष्ट्र से पहुंचा है मैसेज, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन उन सभी को शामिल करूंगी इस गीत के बाद, क्योंकि मैं सुनवाने जा रही हूं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो की पसंद। सहारनपुर जनकपुरी से हमें लिखा है इन्होंने, मोबी फिल्म से ये खूबसूरत गीत आपके लिए ये रहा।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं लगातार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस, और आपके कौन कौन से मैसेजेस अब हम तक और भी पहुंचे हैं उन्हें शामिल करते हैं। जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल और पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है। पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत कमल सानी पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से। विवेक वर्धन, डॉक्टर पारुल मेरठ से हमें लिख रहे हैं। जनकपुरी दिल्ली से आरके गुप्ता, प्रदीप सलूजा, प्रथम संगीता का हमें मैसेज मिला है। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से लिख रहे हैं। शिव गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता और पूरे परिवार का हमें चाईबासा झारखंड से मैसेज पहुंचा। हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र, नोकेलाल का हमें ततरेंगी भाटापारा से मैसेज। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह का मैसेज। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का मैसेज। उमेश ने हमें लिखा है राखी, प्रियांश, अंशिका के साथ गाजियाबाद से, और ये मैसेज हमें पहुंचा है किसका, परवेज आलम, ग्राम बलमी सिरसिया, चंपारण बिहार से लिख रहे हैं। नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन और पूरे परिवार का मारहरा दरवाजा एटा से। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, एडवोकेट ममता मोदी, डॉक्टर प्रियंका, तस्नीम कौशल का हमें मैसेज पहुंचा है। रामगढ़ कैंट से, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत भाटिया और मयंक का मैसेज। और साथ ही दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू का हमें मैसेज पहुंचा है। श्री श्रोता रघुबीर नगर से लिख रहे हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेखर शेख और रोहित सोहित का मैसेज। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया का हमें अपार ढिंगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुंचा है। और अकबर हुसैन, मोहम्मद कैफ, राबिया खातून का हमें सिवान बिहार से मैसेज मिला है। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार और डॉली बेबी का हमें मैसेज मिला है। डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा और पूरे परिवार का मैसेज। शाहदरा दिल्ली बिहारी कॉलोनी से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित तानिया का मैसेज हमें डबवाली से मिला है, बठिंडा रोड से। और सुधाकर राजे जाधव, देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव और पूरे परिवार का हमें जाफराबाद मराठवाड़ा से मैसेज पहुंचा है। सतीश अनेजा, विमला अनेजा का हमें चंडीगढ़ से मैसेज मिला। तुषार सिंह, संगीता कंवर, रिंकी शेखावत, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर से लिख रहे हैं। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या और आरफ का इसके पप्पी के साथ हमें रोड MLB रोड ग्वालियर से मैसेज मिला।

अनिल मोहन, उषा, टिल्लू, मधुका हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान और पूरे परिवार का गंज डुंडवारा से, उग्रसेन यादव, शकुंतला और गरिमा का हमें नई दिल्ली से मैसेज, पारुल सिंह, विवेक सिंह, वरुण, तरुण, दिशा, पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है कहाँ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से। और हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस पहुँच रहे हैं लगातार, लेकिन क्या करें, वक्त मुझे लगता है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा का मैसेज, और हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेरा जहां का मैसेज पहुंचा है कहां से, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। ये मैसेज हमें लिखा है किसने, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से हमें मिला है। और हमारे पास नीलम का गुड़गांव से मैसेज पहुंचा है, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें लिख रहे हैं, और ये मैसेज हमारे पास बहुत सारे रिपीट भी पहुँच रहे हैं, सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, विपिन नेहरा ने हमें काशीपुर उत्तराखंड से लिखा है, और नमस्कार दीदी हमें पहुंच गया है लेकिन नाम भूल गए हैं शायद आप। अनिल ठाकुर, रीना ठाकुर, सराय काले खान से हमें लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से मैसेज मिला है, और हमें लिखा है मास्टर खिलू परवेज बेगम, इमरान अनाज, राधा नामदेव ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हैं, कौन कौन है फिर से देख रही हूँ। संजय मालाकार ने हमें लिखा है, बबलू कश्यप, और बहुत सारे नाम है इसमें। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुँचा है, चलिए बाकी के मैसेजेस को भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जल्दी से एक गीत शामिल कर लेती हूँ। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ से, तो ये रहा आपकी पसंद का गीत, और ये खुद्दार फिल्म से ये रहा आपके लिए।

और अब जल्दी से कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लूं। अहमद भाई फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, आमना आसमा का हमें पूरे परिवार के साथ छोटी बलिया मुंबई करजत से मैसेज पहुंचा है। और हमें संजय मालाकार, मीना, संगीता, पुष्पा, मयंक ने हमें लिखा है आदर्श नगर से कि दुबई नगर दिल्ली किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से। जुबैर अली खान, सबीहा, अंजुमन का मैसेज। और हमें सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर ने डाबकी रोड अकोला से लिखा है। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का मैसेज। और राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा का मैसेज हमें दिल्ली नांगलोई से। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड, चंद्रकला रिवाड का मैसेज। और मोदी, महेंद्र मोदी, मैनेजिंग पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, महेंद्र मोदी ने हमें लिखा है रामगढ़ कैंट से। और मुलापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन का मैसेज। अलीका टव्वाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, कुलदीप गांधी का मैसेज। और साथ ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं जो रिपीट हैं। प्लीज़ रिपीट मैसेजेस मत भेजिए ताकि मैं सबके नामों को शामिल कर पाऊँ, आसानी से पढ़ पाऊँ। और ये हमें हिमांशु कुमार का मैसेज मिला है, दिव्य स्वरा, शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है, भाई इतने सारे फिर से रिपीट मैसेजेस हैं तो कैसे मैं शामिल करूं। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का हमें तनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से मैसेज पहुंचा है। और अब संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का हमें फिर से मैसेज पहुंच गया। ये तो दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से, पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता का मैसेज। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मैसेज। और अब वक्त नहीं गंवाऊंगी, जल्दी से एक और गीत सुना देती हूँ आपको। और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है बता दूँ, भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली और वकील अहमद की पसंद। ये खूबसूरत गीत आप तक पहुँच रहा है, ये रहा फिल्म आबरू से।

0: और अब वक्त बहुत कम बचा है तो चलते चलते जल्दी से कुछ और नाम पढ़ दूं। राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पालल अद्विका अतर सिंह का हमें मैसेज पहुंचा है कहां से, समय पर दिल्ली से। और हमें ये लिखा है हिमांशु कुमार ने, कहां से नहीं पता, नजफगढ़ से शाहरुख फारूक शबनम शहनाज का मैसेज। और अब वक्त नहीं बचा है कि मैं अब और मैसेजेस को शामिल करूँ, तो फिलहाल वक्त है समाचारों का। समाचारों के बाद फिर से भेंट होगी, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिन्दुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान

0: पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि यह कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमरीका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: कभी जो सांझ की खुशबू हुआ करते थे, आज वही अजनबी सा साया लगते हैं। वक्त के तराजू में तोले गए रिश्ते अब हर मोड़ पर ठुकराते से लगते हैं। कस्में थी जो कभी सात जन्मों की, दो पल की धूप में ही पिघल गई। वो आंखें जो कहती थी सब कुछ बिना कहे, आज खामोशी के पर्दों में छिप गई।
3: फर्क अब न फासलों का कोई रहा, पास होकर भी बहुत दूर हैं हम। प्यार की चादर जो ओढ़ी थी कभी, अभी उसी आग में सुलग रहे हैं हम। बदलते मौसम ने तो बस रंग है बदले, यहाँ तो इंसानों के जज्बात बदल गए। कल तक जो जान से भी ज्यादा प्यारे थे, आज हवा के रुख के साथ बदल गए।
1: दोस्तों, आज हमारे समाज में दिलों के रिश्ते न जाने किस अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर प्यार और फिर शादी जैसे बंधन तक पहुंचने के बाद

0: आपसे रिश्तों में ये दूरी क्यों आने लगती है? कहा जाता है कि प्यार और शादी का रिश्ता तो जन्मों जन्म का होता है,
1: मगर आज रिश्तों में जो तल्खी हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये हमें जरूर जानना चाहिए, वरना हमारे परिवार और समाज दोनों ही इस तरह से टूट जाएंगे कि सभी के लिए ये हंसती खेलती जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाएगी।
0: ना जाहिर हुई उनसे, ना बयां हुई हमसे, सुलझी हुई आंखों में जिंदगी कुछ यूं सिमट गई।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: रिश्तों के ताने बाने को उधेड़ते आजकल ऐसे कई किस्से हैं जो अक्सर अखबार की सुर्खियां बन जाते हैं, कि कहीं किसी लड़की को रिश्ता हो जाने के बाद भी जब उसका मंगेतर उसे पसंद नहीं आया तो उसने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उसका जीवन छीन लिया।
4: तो कहीं किसी पत्नी ने अपना कोई प्यार पाने के लिए अपने पति को ही दुनिया से विदा कर दिया। किसी खबर में कोई ड्रम में होता है तो किसी खबर में कोई ऊपर से गिरा दिया जाता है। और ऐसा भी है कि बहुत बार पुरुष भी किसी और लड़की के प्यार में अपना घर संसार बर्बाद कर लेता है।
3: आखिर आजकल की युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग में इतनी बेचैनी आती कहाँ से कि वे बजाय अपनी बात को मुखर तरीके से कहने के क्राइम का रास्ता चुन लेते हैं और उसके बाद खुद के लिए जेल यात्रा और परिवार के लिए समाज में बदनामी।
4: आज की युवा पीढ़ी बात तो करती है अभिव्यक्ति की आजादी की, मगर जब बात अपनी होती है तो फिर खामोश क्यों हो जाती है। अपनी बात खुलकर कहो। अगर कोई पसंद है तो ठीक है, अगर कोई पसंद नहीं है तो नहीं है। जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है उसे क्राइम तक ले जाना कोई समझदारी नहीं है।
3: वो वादे, वो कसमें, वो लंबी रातें सब धुएं की तरह हवा में उड़ गए। हम तो खड़े रह गए किसी मोड़ पर तन्हा, मगर रास्ते न जाने कहां मुड़।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन रहे हैं। 11:45 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और ये सफर है तस्वीर का, जिसमें हम आपको किसी न किसी खूबसूरत जगह की सैर पर जरूर लेकर चलते हैं। आज कहां ले चल रहे हैं जरूर बताती हूं। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय परिदृश्य में बसा जीरो, जी हाँ, जीरो घाटी उत्तर पूर्वी भारत का एक मनमोहक पर्यटन स्थल है, जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से सभी को मोहित कर लेता है। यहाँ पहले धान के खेत, शांत गांव और हरी भरी पहाड़ियाँ जीवंत वनस्पतियों से ढकी हैं। इस छोटे से शांत शहर की शांति इसे आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है। वहीं इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता अनगिनत प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, जो खास तौर से दूर दूर से यहाँ की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ये जगह रोमांच के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन है। चाहे आप मनमोहक ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहते हो, जंगल में कैंपिंग का मजा लेना चाहते हो, या वन्य जीवों की खोज करना चाहते हो, जीरो किसी को निराश नहीं करता। तो भाई आज आप और हम साथ साथ निकलेंगे जीरो की यात्रा पर, और क्या है यहाँ पर देखने के लिए जरूर बताऊंगी मैं आपको गीतों के इस सफर में साथ साथ आगे।

दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक सेला सुरंग है जो कि 9 फरवरी 2019 को सुरंग का शिलान्यास समारोह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इस निर्माण वर्षों के दौरान लगभग 650 कर्मचारी और मजदूर दैनिक आधार पर लगे थे और इस सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग को पूरा करने के लिए लगभग 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 5,000 मीट्रिक टन स्टील और 800 मीट्रिक टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ और समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग तवांग तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देती है। पहले यात्रियों और भारतीय सैनिकों के लिए तवांग तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, खासकर कठिन सर्दियों के महीनों के दौरान जब ये बर्फ से ढका होता था। सेला सुरंग के खुलने से तवांग के लिए एक और मार्ग मिल जाता है जिससे यात्रियों के लिए सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद मार्ग के साथ साल भर पहुंच का आनंद लेना आसान हो जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार सुरंगें, अग्निशमन उपकरण और जेट फैन वेंटिलेशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सजी हैं। वाहनों की आवाजाही का वास्तविक समय डेटा प्रदान करने और परेशानी मुक्त संचालन की सुविधा के लिए SCADA आधारित निगरानी उपकरण भी सुरंगों के अंदर रखे गए हैं। दोनों सुरंग एकल ट्यूब और सुरंग दो, जो कि दो ट्यूब वाली सुरंग है, ये 980 मीटर और 1555 मीटर के आसपास तक फैली हुई हैं और खास उद्देश्यों को ये नामित की गई हैं। एक आपातकालीन सेवाओं और रसद के परिवहन के लिए और दूसरी नियमित यातायात के लिए। इसके अलावा सुरंग के प्रवेश द्वारों पर वाहन की आवाजाही को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने, निर्बाध और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए 1200 मीटर की कनेक्टिंग जो रोड है वो बनाई गई है। सेला सुरंग की बात करूं तो ये रणनीतिक स्थान और इसका खास महत्व भी है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सेला टनल को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और इसे खास रूप से LAC के पूर्वी क्षेत्र में चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड से संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। असम के तेजपुर में भारतीय सेना की IV कोर अब सेला सुरंग के जरिए एक घंटे के अंदर तवांग पहुंच सकेगी। इसके अलावा बोमडिला और तवांग से यात्रा 171 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए साल के किसी भी समय संभव है। मौसम की परवाह किए बिना यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई नई पूर्ण सुरंगें सेला दर्रे की तुलना में बेहतर और अधिक सीधा रास्ता प्रदान करती हैं, जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। सेला सुरंग जो है, अगर मैं इसकी बात आपको कहूं कि मैं क्यों कर रही हूं, तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में ऐतिहासिक सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसकी ऊंचाई और रिकॉर्ड की बात करें, 13,000 फीट की से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन यानी डबल लेन सड़क सुरंग है ये। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम का जिले में स्थित यह सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जोड़े रखती है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से यह रास्ता जो है वो 4-5 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब चीन सीमा जो LAC है उसके पास भारतीय सेना और हथियारों की आवाजाही साल के 365 दिन आसान हो गई है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा परियोजना वर्तक के तहत लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, जिसमें दो सुरंगें हैं और एक संपर्क मार्ग भी शामिल है। अगर इन शॉर्ट कहूं तो सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और

सुरक्षा को मजबूत करने वाले जिन अभूतपूर्व कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है उनमें सेला सुरंग भी एक मील का पत्थर है। और अब क्योंकि हम सेवा संकल्प अभियान के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर इस सुरंग की बात करना तो एकदम जायज बनता है ना। तो आज हम जहाँ पर निकले हैं वो अरुणाचल प्रदेश का जीरो है, और जीरो की यात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है।

प्रमुख आकर्षण है और ये फार्म अपातानी जनजाति की पारंपरिक कृषि पद्धति को प्रदर्शित करते हुए एक अनूठा नजारा पेश करता है। यहाँ पर आपको चावल की दो किस्मों के साथ साथ मछली की भी एक किस्म की प्रजाति की खेती यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप चाहे तो सीखे झील जा सकते हैं जो शहर के केंद्र से 4 किलोमीटर दूर है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में हापोली कस्बे से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित सीखे झील राज्य की पहली और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सरकार द्वारा आपातानी समुदाय के सहयोग से जल संरक्षण परियोजना के रूप में विकसित की गई ये झील पिकनिक, बोटिंग और बाकी मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय जगह मानी जाती है। आप चाहे तो जीरो संगीत महोत्सव में जुड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों में आयोजित होने वाला जीरो संगीत महोत्सव भारत के स्वतंत्र कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला एक आउटडोर संगीत समारोह है और ये महोत्सव भारत की सबसे महत्वपूर्ण संगीत प्रतिभाओं और विविध दर्शकों को एक साथ लेकर आता है। जीरो संगीत महोत्सव जीवंत संस्कृति, संगीत और कला का संगम है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जीरो में आप टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं जो परिवार के साथ सैर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। शहर के केंद्र से 16 किलोमीटर की दूरी पर है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी हरियाली में बसा टेली वैली वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता का एक अनूठा अनुभव देता है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। 337 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य मिशमी, ताकिन, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा और हिमालयन ब्लैक बेयर जैसी कई स्थानीय और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। आप चाहें तो और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां जा सकते हैं जीरो में, बताऊंगी जरूर लेकिन इस गीत के बाद।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वेलकम बैक। 11:44 बहुत कम समय बचा है और बहुत सारी बातें हैं, तो जल्दी से पहले एक और खास बात आपको बता दूं कि आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार। 5:10 पर शाम को वक्त रहता है पानी पर लिखी कहानी का, याद है ना आपको। और आज की जो कहानी है वो है अंग वस्त्र। जरूर सुनिएगा इस कहानी को, आपको जरूर पसंद आएगी। इसे लिखा है नीलम कुमार ने, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनिएगा पानी पर लिखी कहानी शाम 5:10 पर। और मैं आपको बता रही थी कि जीरो में क्या क्या है घूमने के लिए, तो जल्दी से बता दूं। मेघना गुफा मंदिर है यहाँ पर, जो कि 5000 वर्ष पुराना है और इसकी खोज 1965 में हुई थी, जिसके बाद दूर दूर से यात्री यहाँ इस पवित्र जगह को देखने के लिए, यहाँ की यात्रा करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के 28वें अवतार भगवान लकुलिशा को समर्पित ये प्राचीन मंदिर संस्कृत ग्रंथों की विस्तृत नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला से सजा है, तो आध्यात्मिक आभा से यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ का शिवलिंग है जो कि देखने लायक है। शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अरुणाचल प्रदेश के सुरम में जीरो घाटी में स्थित शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। प्राकृतिक रूप से बना ये शिवलिंग संरचना जो है वो स्फटिक की प्राकृतिक माला से सुशोभित है और इसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 22 फीट है और समुद्र तल से ये 5,754 फीट की ऊंचाई पर बसा है और एक आकर्षक शहर है जहां से आसपास के अपाटा के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। आपको यहां भी जरूर जाना चाहिए। डोलो मांडो में ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। जीरो घाटी के सुरम्य पुराने शहर हिजा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित डोलो मांडो रोमांच पसंद करने

से ये 5,754 फीट की ऊंचाई पर बसा है और एक आकर्षक शहर है जहां से आसपास के अपाटा के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। आपको यहां भी जरूर जाना चाहिए। डोलो मांडो में ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जीरो घाटी के सुरम्य पुराने शहर हिजा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित डोलो मांडो रोमांच पसंद करने वालों और प्रकृति प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र है और नीचे फैली जीरो घाटी का मनमोहक नजारा आप यहां से देख सकते हैं। हरे भरे

माध्यम सिर्फ ट्रैकिंग ही है, इससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ भूभाग और लुभावने नज़ारे प्रकृति की शांत सुंदरता में आपको सचमुच डुबो देंगे। टिपी आर्किड अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप देख सकते हैं, और ये आर्किड के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है। लगभग 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। आर्किड संग्रहालय है ये, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, हर्बेरियम और ग्रीन हाउस है। यहाँ पर लगभग 1000 आर्किड प्रजातियों को गमलों में लटकती टोकरियों में प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है, जरूर देखिएगा। और भी कुछ बताऊंगी जरूर अगर समय बचा तो, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

भाई, अगर आप जीरो जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सितंबर से के अंत से नवंबर के मध्य तक का समय है। और अगर आप फूलों और कम भीड़भाड़ वाले माहौल के लिए जाना चाहते हैं तो मार्च से मई मिड तक आप जा सकते हैं। यात्रा के जोखिम के बावजूद एकांत और हरे भरे नज़ारे अगर आप लेना चाहते हैं तो मानसून जून से अगस्त तक, और मनमोहक शीतकालीन नज़ारों और शांत प्रवास के लिए आप दिसंबर से फरवरी का महीना चुन सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है तो आपको बता दूँ कि जीरो वैली पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हवाई मार्ग से असम का लीलाबाड़ी हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। दूसरा ऑप्शन जोरहाट हवाई अड्डा है। इसके अलावा गुवाहाटी या तेजपुर तक उड़ान भरे या फिर सड़क मार्ग से आप यहां जा सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप चाहें तो नाहरलागुन निकटतम रेलवे स्टेशन है जो जीरो से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। नाहरलागुन के लिए गुवाहाटी और दिल्ली से ट्रेन मिल जाती है। गुवाहाटी यहां से अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो गुवाहाटी पहुंच जाइए, यहां से 470 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से रात भर बसें आपको मिल सकती हैं। ईटानगर या नाहरलागुन से लगभग 105 किलोमीटर की ड्राइव पर जीरो है। और अगर आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं नाहरलागुन उत्तर लखीमपुर या जोरहाट से। निजी टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बस से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट यानी ILP की जरूरत होती है, जो ऑनलाइन या संबंधित सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। और साल भर सुहावना मौसम रहता है, सितंबर में क्योंकि जीरो फेस्टिवल होता है तो इस समय जाना यहां पर ज्यादा अच्छा है अगर आप पहुंच सकें तो। अब खाने की बात करूं तो यहां पर बैम्बू चिकन पिका पिला जो कि बांस के अंकुर और स्थानीय मिर्च से बना हुआ एक अचार होता है, स्मोक्ड मीट, थुक्पा या फिर चूरा सब्जी, अपतानी व्यंजन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जरूर यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए जो यहाँ के लोकल स्वाद को आप तक पहुंचाएगा। और अगर मैं बात करूँ शाकाहारी ऑप्शंस की तो मिक्स वेजिटेबल, टैपियो या फिर स्थानीय होम स्टेज में घर का बना ताजा जैविक खाना आपको आराम से मिल सकता है, तो आप इसका अनुभव भी यहाँ पर ले सकते हैं। और एक अगर मैं बात करूँ त्योहारों की तो यहाँ पर ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है कि जो कि जुलाई में अच्छी फसल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और म्यो को जो वसंत ऋतु में यहाँ के प्रमुख उत्सवों में से एक है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की संस्कृति में धान की खेती के लिए खास तौर पर इस जगह को जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर परंपराओं में बुजुर्ग अपातानी महिलाएं नाक के बड़े नचने वाले प्लग, नाक के प्लग जिसको कहते हैं, और चेहरे पर टैटू गुदवाती हैं जो अब काफी लुप्त प्राय हो चुका है। बेत और बांस के सुंदर शिल्प और हाथ से बुने हुए पारंपरिक कपड़े भी यहाँ पर पहने जाते हैं, हालांकि ये अब उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन ये एक पारंपरिक परिधान है। और इसके अलावा अपातानी लोग बिना हल के ही धान और मछली की खेती एक साथ करते हैं जो उनके उच्च पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को दर्शाता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जीरो म्यूज़िक फेस्टिवल हो, बेत बांस का शिल्प, म्योको जैसे त्यौहार, चेहरे पर टैटू, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए यहाँ की संस्कृति में। तो ज़रूर चाहिए जब भी आपको मौका मिले जीरो की यात्रा पर। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है तो जल्दी से एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा देती हूँ और उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊँगी सफ़र में।

और अब वक्त तो नहीं बचा है, दामन छुड़ाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे चलना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज़ किसी और सफ़र में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और ऐसे ही आपके पसंदीदा चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल वक्त है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त

0: संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मदलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpol D.N. Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galtsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing 2 terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Defence Minister Rajnath Singh will visit

किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें FM गोल्ड 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल

366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संगीत सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी अग्नि परीक्षा और गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे, और आज के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। खास तौर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके लिए ही उपस्थित होते हैं। अब ये बात की है तो बुजुर्गों के आज कार्यक्रम हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन की खास बात करते हैं। एक दिन और है आज का, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नौकरी और वेतन से जुड़ा नहीं बल्कि बराबरी, सम्मान और न्याय से जुड़ा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि समान काम करने वाले के लिए यानी समान वेतन मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है। सोचिए, अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां और योग्यता समान है, तो केवल उनके महिला या पुरुष होने के कारण उनके वेतन में अंतर क्यों हो। समान वेतन का मतलब केवल पैसे की बराबरी नहीं, ये उस सोच को बदलने की बात है जिसमें किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को अपने यानी उनके जेंडर के आधार पर कम या ज़्यादा आंका जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, नए मुकाम हासिल कर रही हैं और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का समान मूल्य और समान सम्मान मिलना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने कार्यस्थलों पर समान यानी कि अवसर को बढ़ावा देना चाहिए, और साथ में अगर हम कहीं वेतन में असमानता देखते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने और सही बदलाव की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बराबर हो तो मूल्यांकन भी बराबर होना चाहिए और सम्मान भी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यानी कि समान वेतन दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास समान अवसर, समान मेहताना और समान यानी कि साथ में सम्मान की सोच को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए, बराबरी किसी एक की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की है। आइए सुनिए लता मंगेशकर।

एक कदम बुजुर्गों की ओर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि बुजुर्गों से माफी और आशीर्वाद दोनों जरूरी है। कहते हैं घर में बुजुर्ग हों तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता, बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना बन जाता है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के बड़े हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी हमारी बात का लहजा गलत हो जाता है, कभी हम उनकी किसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, और कभी व्यवस्था के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि छोटी सी माफ़ कर दीजिए कितनी बड़ी दूरी को ख़त्म कर सकती है ये बात? बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि रिश्तों की कद्र करना है। उनके सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने से हमारा सम्मान कम नहीं होता, बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं, और माफ़ी के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि जीवन के मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए। अगर कभी जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो, यानी कि तो दिल से कहिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर प्यार से उनके चरण स्पर्श कहिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए ये कहिए। और ख़ास तौर पर यकीन मानिए, उस पल की खुशी किसी महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा अनमोल होगी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी माफ़ी सुकून देती है और आशीर्वाद ज़िंदगी संवार देता है। बुज़ुर्गों की क्षमा में भी हमारी

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपका स्वागत है, आपके विचारों का और आपकी पसंद का। आपके सुझाव आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जब बात हो रही है एक कदम बुजुर्गों की ओर की, तो उम्र बढ़ती है, रिश्तों की ज़रूरत नहीं घटती। बुजुर्ग हमारे घर की जड़ हैं, उन्हें समय और सम्मान दें, उनकी मुस्कान से

0: हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं, अपनापन उनके दिल तक पहुंचाएं। आइए बुजुर्गों का हाथ थामें और उन्हें एहसास दिलाएं कि है वो हमारे लिए कितने खास हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वहीं उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर वे अकेले रह जाते हैं जब उन्हें सबसे ज़्यादा अपनेपन और साथ की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है, रिश्तों की जोड़ कर रखने की क्षमता है। उनकी कही हुई छोटी सी बात भी कई बार हमें बड़ी मुश्किल से में बचा सकती है, यानी कि उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना, उनकी पुरानी यादें सुनना, बस उनका हाल पूछ लेना, इन छोटी छोटी चीज़ों से उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे अनमोल धरोहर हैं। आइए टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करें, शुरुआत करें अपने घर से, अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान और प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं। आइए सुने लंबी फिल्म से गीत जिसे गाए हैं लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं जब मोबाइल बड़ा हो गया और बुजुर्ग छोटे। आप कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर, विशेष कार्यक्रम आज हमारा आप सुन रहे हैं। तो अब ये कहना है कि एक समय था जब घर में सबसे बड़ी कुर्सी दादाजी की होती थी, सब उनसे पूछकर फैसला लेते थे। आज घर में सबसे बड़ी स्क्रीन मोबाइल की है और सबसे अकेली कुर्सी फिर भी दादाजी की ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर में हैं, अलग अलग दुनिया में। ऐसा लगता है कि पोता रील देख रहा है, बेटा लैपटॉप पर है और दादी दरवाजे पर बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उनसे दो बात कर ले। हम कहते हैं बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, सच ये है हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कभी 10 मिनट निकाल कर अपने पिता को वीडियो कॉल करना सिखाया? क्या माँ को सिखाया कि यूट्यूब पर भजन कैसे सुनते हैं? उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला मत छोड़िए, उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, उन्हें फ़ोन मिलाना सिखाइए। जब वो आपके दोस्त से वीडियो कॉल करेंगे तो उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो किसी भी लाइक से सबसे बड़ी होगी। तो मोबाइल से जुड़ने के लिए बना था, यानी कि दूरी के लिए नहीं। तो आज से एक नियम बनाइए, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के और सिर्फ बुज़ुर्गों के नाम।

और अब बात करते हैं कुछ यानी कि दवा से ज़्यादा दुआ, सेहत और सम्मान की। हम सोचते हैं बुज़ुर्गों को सबसे अच्छी दवा चाहिए, सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर उससे भी पहले उन्हें कुछ और भी चाहिए। उन्हें समय पर खाना चाहिए, रोज़ 20 मिनट की सैर चाहिए और प्यार भरी बातें चाहिए। हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द है, हम दर्द की दवा ला देते हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने के लिए ज़िद की? क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुज़ुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आप से नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज़्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़कर चलाइए, हाथ पकड़कर बिठाइए मत। एक कदम बुज़ुर्गों की ओर का मतलब है उनकी दवा का टाइम याद रखना, उनके चश्मे को साफ कर देना, उनके जूतों में कील अगर कोई है तो वो भी देख कर निकाल देना। तो याद रखिए, दवा शरीर ठीक करती है पर दुआ और सम्मान आत्मा को ठीक करता है। और बुज़ुर्गों की दुआ में सबसे बड़ी कोई दवा नहीं, यानी कि उनकी दुआओं में भी हमारी ही जिंदगी बसी हुई है।

और अब बात करते हैं, जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं, वे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं यानी हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो सिखाया है प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छता की। जी हाँ, जब हवा की बात हो रही है तो जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत तभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें और छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज

0: समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leon Po Dien Thungel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our Jammu correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with JNK police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has extended warm birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday. In a message posted on X, PM Rahman extended his warmest birthday wishes to Modi by wishing him good health and high spirits as he continues his dedicated service to the people of India. PM Modi responded by thanking Rahman for his message. The message was shared by the High Commission of India in Bangladesh on its official Facebook page. Earlier, the Prime Minister's office also posted a greeting card featuring PM Modi's photograph on its official Facebook page, wishing the Indian Prime Minister on his birthday. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said that he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily, in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft Tejas Final Operational Clearance Twin-Seater Trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 Basic Trainer Aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG Helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त ठीक 10:11 हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल के सफर को तय करते हुए आज बातें होंगी मशहूर अदाकारा शबाना आजमी की, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हर तरह के रोल और सांचे में अपने आप को ढाल लिया, अपनी अभिनय प्रतिभा को बखूबी दर्शाया। बहुत सारी बातें होंगी इनकी फिल्मों की और इनके करियर से जुड़ी। सुनते रहें आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और जिक्र हो रहा है शबाना आजमी का। मशहूर अभिनेत्री होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही और मशहूर शायर और कवि कैफी आजमी और इंडियन थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट शौकत आजमी की प्रतिभाशाली सुपुत्री शबाना आजमी, हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक संगीतकार जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी, उनके कार्यों की, अदाकारी की, उनकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने, आपने भी अगर उनकी फिल्में देखी हैं तो उनकी प्रतिभा के कायल तो आप भी जरूर हुए ही होंगे।

जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी साइकोलॉजी से स्नातक रही। शबाना आजमी की पढ़ाई मुंबई से ही हुई, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से। उनके करियर की शुरुआत हुई श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से और 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। उनकी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद सन 1983 से लेकर 1985 तक लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय

आकाशवाणी गोल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए बातें हो रही है जानी मानी प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी की, जिन्होंने आर्ट और कमर्शियल दोनों ही तरह की फिल्मों में अपनी अदाकारी, अपनी प्रतिभा, अपने हुनर, फन का डंका बजवाया।

शुरुआती दौर में जब वो आर्ट मूवीज यानी कि कलात्मक फिल्मों में अभिनय कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को ग्लैमरस इमेज से दूर रखा और अपनी बहुत सारी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, स्वामी, मासूम, मंडी, नमकीन, पेस्टन जी जैसी फिल्मों में उनकी उत्कृष्ट अदायगी नजर आती है। उनके अभिनय की बारीकियों और ऊंचाइयों की जितनी बात और तारीफ की जाए कम है। बस ऐसी अदायगी और अभिनय क्षमता है शबाना आजमी में।

0: Bora!
1: Huh?

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है।
1: कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक फिल्मों से भी उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूँ, लहू के दो रंग, थोड़ी सी बेवफाई, अवतार, टूटे खिलौने, देवता, स्वर्ग नर्क जैसी फिल्मों में भी उनकी यादगार अदाकारी हमें देखने को मिलती है। इन फिल्मों में भी वो किसी से कमतर नजर नहीं आती। उनके अभिनय में तरह तरह के रंग ही उनकी एक्टिंग की खासियत रही है। प्रयोगात्मक सिनेमा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या कहें कि डेयरिंग अभिनय। फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में उन्होंने बेधड़क अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण दिया। वहीं बाल फिल्म मकड़ी में एक चुड़ैल की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। उनकी कलाकारी ऊंचाई और गहराई दोनों का ताना बाना रही। मासूम में मातृत्व की कोमल भावनाओं को उन्होंने जीवंत किया, तो वहीं गॉड मदर में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका निभाकर लोगों को दांतों तले उंगलियां उन्होंने टपवाई।

शबाना आज़मी एक ऐसी अभिनेत्री, किसी भी रोल में जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस रोल के लिए यही बेस्ट चॉइस थी। उनसे बेहतर कोई और उस किरदार को निभा ही नहीं सकता था। और ऐसा तभी लगता है जब एक कलाकार अपने रोल में अपने आप को पूरी तरह से खपा दे, डाल दे और रत्ती भर भी कुछ और गुंजाइश ना रहे कि इसे ऐसे नहीं, इस तरह से निभाया जाना चाहिए था। बस यही एक खूबी होती है महान कलाकारों की कि जो कुछ अदायगी, कलाकारी वो कर गए, वही दूसरों के लिए आदर्श बन गया। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी ही सक्षम अदाकारा अभिनेत्री रही है शबाना आज़मी।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड। 2:30 पर एक बार फिर होंगे मैं और आप साथ साथ आकाशवाणी गोल्ड पर। कुछ ही देर में सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: Department IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए X@AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा

0: समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योइना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कुछ गीत, फिल्में और उनसे जुड़ी दास्तां। संगीत.com के इस सफर पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अंजलि है आपके साथ। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गाने ऐसे हुए हैं जिनके बनने की कहानी मजेदार रही। बहुत बार किसी गीत को रचते वक्त या लिखते वक्त ही अंदाजा हो जाता है कि इसे किस कलाकार को गाना होगा। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म के निर्देशक ये तय करते हैं कि पार्श्व गायन किस कलाकार से करवाना होगा। बहुत बार जिस कलाकार को लेकर तय होता है कि इसे इस गीत के लिए अपनी आवाज देनी है, बस किसी कारणवश वो गायक जब अपनी डेट्स नहीं दे पाते तो गायन के लिए या कोई असमर्थता दिखाते हैं गीत को गाने में, तो ऐसे में किसी दूसरे पार्श्व गायक या गायिका से उस गीत को गाने की पेशकश की जाती है। और यकीन जानिए, उस गायक की आवाज में वो गीत बेहद पॉपुलर भी हो जाता है। बहुत से गीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसे हैं जिन्हें हम सुनते हैं और जिनके लिए तय कलाकार अपनी आवाज नहीं दे पाए और किसी और गायक ने उस गीत को गाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अमर बना दिया। ऐसा ही एक गीत है फिल्म मुंबई का बम्बई का बाबू से, आवाज मुकेश साहब की और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत की धुनों से इस गीत को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया है SD बर्मंदा ने। और जानते हैं इस गीत के लिए किशोरदा पहली पसंद रहे, पर किशोर साहब किसी कारण से ये गीत नहीं गा पाए और मुकेश साहब की आवाज ने इन बोलों पर अपना जादू चला दिया और ये गीत हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी इतिहास का बहुत ही, जैसे बोलते हैं, मर्मस्पर्शी गीत बन गया।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 संगीत.com का ये सफर यहाँ पर तय हो रहा है और इसी तरह का एक और किस्सा शेयर करते हैं आपके साथ। मनर उदास और सुमन कल्याणपुर ने जिस गीत को डब किया, फिर वही गीत फाइनली उन्हीं की आवाज में रख लिया गया। कैसे? कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की धुन तैयार की थी और गीत के बोल गुलशन बावरा के थे, आपसे हमको बिछड़े हुए। ये गीत दरअसल मुकेश और लता जी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था 1969 की फिल्म विश्वास के लिए, लेकिन गायक मुकेश उस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं थे और उनके लौटने पर कल्याण जी ने उन्हें वो गीत गाने को कहा और डब किया हुआ गीत जो कि मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में था उन्हें सुनवाया। मुकेश जी को वो गीत मनहर और सुमन जी की आवाज़ में इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि भाई ये गीत तो बहुत अच्छा गाया हुआ है, आप इसी आवाज़ को लीजिए। बहरहाल उन्होंने गीत को नहीं गाया और मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गीत काफी पॉपुलर हुआ और सचमुच दिल को छू लेता है गीत। आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। वैसे आपने बहुत बार इस गीत को सुना होगा। 1969 की फिल्म विश्वास का ये गीत है, गुलशन बावरा के बोल है और कल्याण जी आनंद जी भाई की संगीत धुनों से ये सजा है।

और बार बार बार बार आप तक पहुंचना चाहता है। तो भाई कौन सा गीत है? ये गीत वही है जिसको आप अभी दो बार सुन चुके हैं और बार बार ये गीत आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और हम फिर क्यों रोके इसे, चलिए इस गीत को आप तक पहुंचा दिया जाए। तो ये इससे जुड़ा एक किस्सा भी पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि भाई कौन सा गीत है ये फिल्म निकाह का। इसी तरह निकाह के जो गीत थे ना, वो गायिका आशा भोसले को ध्यान में रखते हुए लिखे गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई ये गीत जो थे फिर सलमा आगा ने गाए या उनके साथ किसी और को स्टार गायक ने गाए। तो इसके पीछे भी कहानी यही थी कि रवि साहब ने जब ये गीत इन गीतों की जो संगीत तैयार किया था, उनकी रेंज को देखते हुए, आशा जी की रेंज को देखते हुए ये धुनें तैयार की गई थी। पर सलमा आगा इस गीत इस फिल्म के गीतों को लेकर बहुत जैसे एक्साइटेड थी और उन्होंने थोड़ी जिद भी की कि इस फिल्म के गीत तो वो खुद ही गाएंगी। तो खैर सलमा आगा जी की जिद के कारण रवि जी झुके और उन्होंने गानों की धुनों में कुछ हेर पेर किया और सलमा आगा की गायकी के हिसाब से धुनों में जो बदलाव किया गया, फिर उन्हीं की आवाज़ में फिल्म के सभी जो फीमेल कैरेक्टर का पार्श्व गायन था वो सलमा आगा से ही करवाया गया। फिल्म के गीत तो आपने ज़रूर सुने होंगे, उस वक्त ये फिल्म और इस फिल्म के गीतों ने धूम मचा दी थी। और सचमुच जैसे बोलते हैं ना कि एक टाइम होता है कि हालांकि कुछ स्टार ऐसे होते हैं कि बाद में शायद उनकी फिल्में ना चलें, लेकिन उस वक्त जो उनकी डेब्यू फिल्म होती है ना, वो इतना धमाल मचाती है, इतना कमाल मचाती है कि उसके बारे में हम क्या ही कहें।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 संगीत.com का ये सफर हम यहाँ पर तय कर रहे हैं और कुछ गीत जो आप तक नहीं पहुँचे, कोशिश हो रही है कि वो आप तक पहुँचे।

जी हाँ, ये जो गीत आपने सुना ना फिल्म दो बदन से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रहा गर्दिशों में हरदम, इससे भी जुड़ा एक रोचक किस्सा ये है कि कितना वैसे मेलेडियस और दिल को छूने वाला सैड सॉन्ग है ना, पर जानते हैं इस गीत को किसी और फिल्म के लिए मुकेश साहब की आवाज़ में गवाया गया था और उस फिल्म में क्यों नहीं इस गीत को रखा गया ये तो हम बाद में बात करेंगे। पार्श गायन में बदलाव क्यों किया गया ये भी एक मज़ेदार स्टोरी रहेगी फिर कभी। लेकिन इस गीत को जो पहले मुकेश साहब ने गाया था किसी और फिल्म के लिए, लेकिन इसे दो बदन फिल्म में रख लिया गया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, क्योंकि फिल्म के बाकी गीत भी उन्होंने ही गाए थे तो इस गीत के लिए आवाज़ ली गई मोहम्मद रफ़ी साहब की। और एक और गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए, फिल्म गाइड से जुड़ा ये गीत है, शैलेंद्र के बोल है और एस डी बर्मन दा का संगीत है इस गीत में। और इस गीत के साथ भी हमारी कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि बातें, एक रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है, लेकिन वक्त मिला तो बताएंगे, नहीं तो किसी और सफर पर तय करेंगे इस गीत से जुड़ा एक रोचक किस्सा आपके साथ।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुएंगल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुएंगल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री जयशंकर और श्री धुएंगल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन महाराष्ट्र के मौजूदा वर्धा मानेगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पलवल में खुले मैनहोल में गिरकर 4 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पलवल के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है, नशा मुकाना सारा। यात्रा के दौरान सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और नशा मुक्ति के अभियान को जन आंदोलन

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन। जी हां, वही प्रोग्राम जहां आपके मन के करीब जो गीत होते हैं उनकी फरमाइश आप हम तक पहुंचाते हैं, और साथ ही लिख भेजते हैं आप अपने दिल के करीब जो शब्द हैं, जो संदेश हैं, वो भी आप हम तक पहुंचाते हैं। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से हमारा ईमेल आईडी नोट करिए और लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश, अपनी फरमाइश और अपने पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868687 53। जी हाँ, तो भेजिए आप अपने करीब, अपने दिल के करीब गीतों को, उनकी फरमाइश को, और तब तक आप सुनिए हमारी पसंद का ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, आपसे मिलकर न जाने क्यों हमें भी बहुत कुछ याद आता है। याद आती हैं आपकी फरमाइशें, आपके द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे संदेश, और इन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे हुए मेल्स और मैसेजेस। दोस्तों पहला मेल हमें आया है गणेशपुर गंज डुगवारा एटा उत्तर प्रदेश से, और इसे लिख रहे हैं एम फारूख शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूख, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। और इसी के साथ हमें जनकपुरी सहारनपुर से मैसेज आया है जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का। और इसके बाद एक और मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं प्लीज़ अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए और उसमें हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ये मैसेज हमें लिखा है मोहसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और इनके साथ ममता रानी शर्मा। इसी के साथ एक और हमें मेल आया है प्रतिमा गोडाने, हीरामण शोंडी जी, प्रणय कुमारी, अर्चना सिद्धार्थ, ये हमें लिख रहे हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। इसी के साथ एक और हमें सनावत से मेल आया है और इसे लिख रहे हैं शेख मूसा मोहसिन। तो दोस्तों आपके मेल हम तक पहुंचे हैं और इनकी फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं खूबसूरत गीत, और तब तक आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप लिख भेजिए अपनी फरमाइश और अपना संदेश

थे। इस संदेश में शामिल हैं निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ एक और मैसेज हमें आया है और लिख रहे हैं, सलाम जी, दिल साफ रखना अच्छा है, बस हर किसी के लिए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और इन्होंने लिखा है मगर पारा बिलासपुर से, और ये मैसेज लिख रहे हैं वसीम आसमा दलाल, अकरम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा दलाल, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से। और हमें लिख रहे हैं मोहम्मद ताज अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ हमें भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज आया है और इसे लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। और एक और मेल हमें आया है हरजिंदर सिंह भाटिया का, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। और इसी के साथ दोस्तों एक और खूबसूरत मेल हमें महेंद्रू एंक्लेव दिल्ली से आया है, और इस मेल में शामिल हैं मधु नागपाल, पूजा जी, डेजी अरोड़ा और इनके साथ निधि चावला इस मेल में शामिल हैं, और उनके पूरे साथीगण इस मेल में शामिल हैं। और आज इनके लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि ये अपनी किसी स्पेशल दीदी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं और उनके लिए एक खूबसूरत गीत डेडिकेट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। तो आइए इनकी फरमाइश पर ये खूबसूरत गीत सिर्फ आपके लिए है।

0: दोस्तों 10 से 19 साल की उम्र का वो दौर जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। इस उम्र में शरीर में बदलाव आते हैं, मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से कई बार युवा भ्रमित हो जाते हैं। इसी अहम मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए कल यानी 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय का दौलतराम कॉलेज आयोजित कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडोलसेंट हेल्थ अवेयरनेस। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की संयोजिका डॉक्टर ज्योति तनेजा जी। डॉक्टर ज्योति तनेजा दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में अस्तित्व डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में संयोजिका के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए श्रोताओं, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। गुड इवनिंग मैम, आपका बहुत स्वागत है FM गोल्ड पर।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप हमें बताएं और इसका आयोजन किस लिए किया जा रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है।
1: धन्यवाद। हमारा उद्देश्य बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। हमारी युवा पीढ़ी जागरूक, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बने। किशोरावस्था में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वास्थ्य। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि किशोरों को सही जानकारी मिले, वे अपने शरीर और स्वास्थ्य को समझे और अपनी समस्याओं के बारे में बिना झिझक सवाल पूछ सके और समय रहते जांच कराएं। आज के समय में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूंगी कि डिजिटल वेलबींग यानी डिजिटल दुनिया के साथ हमारा स्वस्थ संतुलन बना रहे। आज के किशोर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच बड़े हो रहे हैं और अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया पर रहने, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन तुलना और गलत स्वास्थ्य की जानकारी हमारी नींद और मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और रिश्तों पर गहरा असर करती है। हम चाहते हैं कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम से हमारे किशोर अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अपनी मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, समय रहते जांच कराएं और बिना झिझक क्वेश्चन कर सके, हमारे पास आ सके और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही वो हमारी आगे पीढ़ी को लेकर जा सकेंगे।
0: जी मैडम, जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में हेल्थ और पोषण की कमी जैसी समस्याएं जो है वो इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस और इस दौरान जो हेल्थ स्क्रीनिंग के जरिए, वो कौन सी बातें हैं जो आप देश भर के युवाओं तक पहुंचाना चाहेंगे?
1: हेल्थ स्क्रीनिंग से हमारा कहने का मतलब है कि जैसे PCOS एक ऐसी बीमारी है जो कि एक हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जीवन शैली की और लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का खाना भोजन बच्चे लेते हैं बिना एक्सरसाइज के और एक्सेसिव ऑफ डिजिटल यूज एंड स्लीप, जो उनका सोने का टाइम है वो बहुत खराब हो गया है। तो कम सोना और ज्यादा टीवी देखना, स्मार्टफोन का यूज करना, इससे उनकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। अगर मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, तो अगर हम लड़कों की बात करें तो उनके लिए भी ये अफेक्ट करता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे किशोर इन बीमारियों से जो इस युवा अवस्था में होती है, फॉर फीमेल PCOS और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि लड़कों और लड़कियों दोनों को यही प्रभावित करते हैं, और किशोर अवस्था में हमारे कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो हम जिन पे हमें ध्यान दे रहे हैं कि हमें हमें उन चीजों से बचकर रहना है ताकि हमें वो बीमारियां ना पकड़ सके। तो हमें जो जो प्रिकॉशंस लेनी है इस प्रोग्राम के जरिए हम उनको बताना चाहेंगे ताकि वो अपनी उन प्रिकॉशंस को लेकर आगे बढ़ सके और अपनी उन बीमारियों से बच सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर उनको कोई बीमारी हुई है या कोई उनको सिम्टम्स हैं, तो उसको समय रहते समझ सके और डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं। स्क्रीनिंग से डरे नहीं और डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिलें और अपना जांच करवाएं, जिसमें उनका योगा, मेडिटेशन और अपनी जीवन शैली, ये तीन चीजें उनको हेल्प कर सकती हैं। न्यूट्रिशन पे भी हमारे स्पेशल स्पीकर्स हैं।

0: जो आकर बोलेंगे, और एक योगा के ऊपर भी हमारा एक सेशन है जो कि एम्स से डॉक्टर रीमा दादा कंडक्ट कराएंगे।
1: जी मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो उनमें बीमारियां फैल रही हैं और जो मानसिक तनाव उनको हो रहा है उसके लिए वो योगा कर सकते हैं, और भी बहुत से प्रिकॉशंस आपने हमें बताए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि क्या वो आप क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के साथ साथ क्या उनके माता पिता को, उनके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, क्या उनको भी कोई सलाह आप देना चाहेंगे कि वो कैसे ख्याल रख सकें अपने बच्चों का?
0: तो अंत में मैं यही कह सकती हूँ, माता पिता से भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। किशोरावस्था में बच्चे बहुत कुछ महसूस करते हैं और अपनी हर बात कह नहीं पाते, इसलिए उनकी बात को सुनना, उनकी जरूरत और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जस्ट कोई गलती होते ही उनको डांट लगा के, उनकी कमी दिखा के उनके साथ बैठे और उनकी उससे उसकी जगह अगर वो उनकी बात सुने और समझे, क्योंकि आज के अभी के माँ बाप भी देते हैं टाइम, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे, बस थोड़ा सा उनके साथ एक दोस्त ना जो संबंध है वो बना सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, और अगर उनकी कुछ कमियां हैं, अगर कुछ गलतियां हैं, तो उनको धीरे धीरे उनको सुलझाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान एक अच्छे खाने से और अच्छे घर के माहौल से ही उनको आगे वो बढ़ सकते हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के साथ चलें, उन्हें समझें और उनका सहारा बने, क्योंकि एक समझदार और दोस्ताना माता पिता ही बच्चे के जीवन को सुरक्षित जगह बना सकते हैं।
1: जी मैडम, क्योंकि ये उम्र छोटी होती है और इसमें गाइडेंस की, सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। मैडम, जो युवा और उनके पेरेंट्स अभी एफएम गोल्ड पर हमें सुन रहे हैं, तो ऐसा क्या मूल मंत्र है जो आप उन्हें देना चाहेंगी जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें आज से ही लागू करें और उसमें बड़ा बदलाव वो ला सकते हैं? ऐसा
0: मेरे लिए सबसे ज़रूरी है ये कहना कि बच्चे समय से सोएं और समय से खाएं, क्योंकि समय से ना सोना एक सबसे बड़ी बीमारी है जो बच्चों को प्रभावित कर रही है, और ना सोने से उनका स्ट्रेस भी बढ़ता है, उनकी साइकिल भी इरेगुलर होती है, और साथ ही साथ उनकी कोई भी स्टडीज, परफॉर्मेंस, एजुकेशन, उनके जो एग्जाम्स हैं उस स्ट्रेस को वो बढ़ाती भी है। तो अगर वो अपने सोना और अपने खाना उसको टाइम से लेंगे और स्वस्थ जो संतुलित भोजन लेंगे विद योगा एंड मेडिटेशन, तो आई एम श्योर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सही डायरेक्शन में जाएगी और समझदार और सुरक्षित रहेगी।
1: जी मैडम,
0: रहेगी।
1: जी जी मैडम, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जिन्हें हम रोज़मर्रा की जो हमारी दिनचर्या है उसमें ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर ज्योति तनेजा जी से ये बातचीत सिर्फ एक चर्चा नहीं है बल्कि किशोरावस्था से जुड़ी झिझक को मिटाने और सेहत को प्राथमिकता देने की एक नई शुरुआत है। अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर आपने कल होने वाली इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस पर इतनी अहम जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

दोस्तों आइए कुछ और खूबसूरत मेल आज के कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो अगला मेल हमें गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है और इसे लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान लिख रहे हैं, डांगरी से बाबूराम जयपाल हमें मैसेज कर रहे हैं और इसी के साथ संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का मैसेज हमें आया है बागपत उत्तर प्रदेश से। और एक और मैसेज हमें भूड़ चौराहा बुलंदशहर से आया है और ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी नमस्कार, कृपया हमें भी इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल करें। तो जनाब लीजिए हमने आपको शामिल कर लिया। और ये मैसेज हमें आया है पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंश राज सिंह का। इसी के साथ एक और हमें खूबसूरत मेल आया है सलीम अख्तर जी का और ये हमें लिख रहे हैं अलीगढ़ से और इनके साथ इस मेल में शामिल है रेशमा बेगम। तो आइए इनकी फरमाइश पर आप तक पहुंचाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

0: फिल्म कामचोर से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का और बोल इंदीवर के। दोस्तों, कार्यक्रम मनभावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, आइए एक नज़र और डालते हैं मेल बॉक्स पर और देखते हैं किसका मेल, किसका मैसेज हम तक पहुंचा है।

दोस्तों अगला मैसेज हमें आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह का। और ये मैसेज हमें मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और इसे लिख रहे हैं किशन वंजानी जी। और एक और मैसेज हमें आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से, रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन का, और ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी नमस्कार, एफएम गोल्ड पर आपके मनभावन अंदाज से सजे इस खूबसूरत कार्यक्रम में सचमुच मन लगता है दिल जीत लिया है आपने जी। शुक्रिया इस सुंदर मेल के लिए। और

आपने हमें मेल अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की गुजारिश की, तो हमने आपका मेल शामिल कर लिया। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है गौरी शंकर जी का नागलोई से। इसी के साथ एक और मेल आया है पिपरिया से, और इसे लिख रहे हैं कमलकांत गुप्ता जी, और इन्होंने लिखा है, जुगनुओं की रोशनी से तिरगी हटती नहीं, आईने की सादगी से झूठ की पलती नहीं। शायद आपने मिस्टेक कर दी है, माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ एक और हमें मैसेज आया है त्रिनगर दिल्ली से, और ये मैसेज लिख रहे हैं संगीतकार चमन जी, और एक खूबसूरत गीत की ये फरमाइश कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मेल हमें नवाब अहमद भारती जी का आया है, और इनके साथ शामिल हैं अरहान अहमद सूफिया नवाब। ये मैसेज हमें बल्ली माराण दिल्ली से कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को कार्यक्रम मनभावन से अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 4:10 पे कुछ और खूबसूरत नगमों के साथ।

0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह दिया गया है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भगवान श्रीराम की कथा भारत तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे एशिया में फैली हुई है और गांवों तथा शहरों दोनों में इसकी झलक मिलती है। श्री सिंह केरलम में कोची में आयोजित एक महाकाव्य अनेक कथाएं रामकथा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग की सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। डॉ जयशंकर और श्री धुंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश वर्मा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ और बेहतरीन नगमे।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म हाथ की सफाई से, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का और बोल गुलशन बावरा के।

दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाज किशोर कुमार की, बोल अनजान के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: दोस्तों, एफएम गोल्ड पर अब वक्त है रोजगार समाचार का।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with
2: Goa Shipyard Limited, a Government of India undertaking under the Ministry of Defence, invites applications for 31 trainee project executive positions on contract basis, initially for 2 years, extendable by 1 year. The vacancies include 9 trainee project executives, mechanical, 12 electrical, 5 electronics, 1 finance, and 4 naval architecture. Eligible Indian nationals can apply online from 4th September 2026 to midnight 3rd October 2026 by 5 p.m. Detailed eligibility, qualifications, enumerations and application instructions available at the Goa Shipyard Limited under the notice board careers advertisement. For details, kindly look up the website at www.goashipyard.in. The Unique Identification Authority of India invites applications for one post of Assistant Section Officer at its regional office, Mumbai, on deputation on foreign service terms. The post is open only to eligible government employees. Private candidates are not eligible. Applications in the prescribed performer should be forwarded to the Director HR, UIDAI Regional Office, Coffee Parade, Mumbai, and must reach by 5th October 2026. Detailed eligibility, deputation terms, and application procedures available on the UIDAI Assistant Section Officer vacancy. Do refer to the website at www.uidai.gov.in. The Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, invites applications from eminent academicians and researchers with sustainable achievement in physical sciences, chemical sciences, life sciences, or related interdisciplinary areas for appointment as president, JNCASR. The appointment may be through direct recruitment, deputation, including short-term contract or re-employment for 5 years or until attaining the age of superannuation, currently 65 years, whichever is earlier. The post carries a fixed remuneration of 2,25,000 per month as per the 7 CPC. The applicant's age should not exceed 60 years as on 1st July 2026. Applications, nominations in the prescribed format should reach the administrative officer, JNCASR, Jakur, Bengaluru, by 30th September 2026 for most regions and 15th October 2026 for specified northeastern Himalayan and island regions. Copy should be emailed to the Chairperson, Council of Management, JNCASR. The detailed advertisement is available on the website. Kindly do refer to www.jncasr.ac.in. ISRO Propulsion Complex Department of Space invites online applications for 22 vacancies in Technical Assistant, Technician B, Cook A and Fireman A post at Mahindagiri, Tirunelveli District, Tamil Nadu. The vacancies include 1 Technical Assistant, Automobile, 3 Mechanical, 1 Electronics and Communication, 2 Technicians, B, Turner, 3 Fitter, 1 Welder, 1 Machinist, 1 Refrigeration and Air Conditioning, and 1 Electrician. 3 Cook A and 4 Fireman A Technical Assistant posts are in Level 7. Technician B posts in Level 3 and other posts are in Level 2. Qualifications range from First Class Diploma in relevant engineering discipline for technical assistance. For details, kindly do refer to the website. Online applications will be accepted only till 5th October 2026. For details, kindly look up the website at www.iprc.gov.in.
0: Mm-hmm.
2: Rail Land Development Authority invites applications on deputation basis from eligible officers of central or state governments, PSUs, autonomous bodies and other government organizations for 6 posts: Executive Director, SDP and General Manager Design at Delhi, JGM, DGM Civil at Ahmedabad, JGM, DGM, Electrical Engineering at Surat, JGM, DGM, MEPF at Ahmedabad, and JGM, DGM, Signal and Telecom Extra Low Voltage at Mumbai. The post carry pay level 14 or levels 13 and 12 as applicable as per the 7 CPC. The last date for applications is 21st September 2026 by 5 PM with interaction interview scheduled thereafter at short notice. Details and application performer is available on the career vacancy section of RLDA website. Do look up www.indianrailways.gov. And now we have the employment news in Hindi.
0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में उपलब्ध हैं ये पद। स्टाफ नर्स रिक्त पदों की संख्या 1, प्रयोगशाला तकनीशियन 2, एक्सरे तकनीशियन 1, तैराकी कोच 1, नेटवर्क प्रशासक 2 पद, कैमरामैन 1, सहायक प्रबंधक सह स्टोर कीपर 1, पेंटर सह आर्टिस्ट 1 पद, वरिष्ठ प्रोजेक्शनिस्ट 1 पद, कनिष्ठ प्रोजेक्शनिस्ट 1 पद और प्रयोगशाला परिचर 1 पद। वेतन का विवरण, अपेक्षित योग्यताएं और प्रत्येक पद के लिए अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.svpnpa.gov.in। रेल भूमि विकास प्राधिकरण आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, जेजीएम सिविल, डीजीएम सिविल, जेजीएम और डीजीएम विद्युत अभियांत्रिकी, जेजीएम, डीजीएम, एमईपीएफ तथा जेजीएम सिग्नल्स एवं दूरसंचार तथा अतिरिक्त निम्न वोल्टेज, जेजीएम अर्थात संयुक्त महाप्रबंधक, डीजीएम यानी उप महाप्रबंधक और SDP यानी स्टेशन विकास परियोजनाएं। विस्तृत जानकारी, वेतनमान एवं भत्ते, आवेदन का प्रारूप इत्यादि जानने के लिए देखिए वेबसाइट www.rida.indianrailways.gov.in। नालंदा विश्वविद्यालय में इन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं। बौद्ध अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, हिंदू अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, दर्शन शास्त्र 1 पद प्रोफेसर, सह प्रोफेसर 1 और सहायक प्रोफेसर 2 पद, संस्कृत प्रोफेसर सह प्रोफेसर 1-1 पद तथा सहायक प्रोफेसर 2 पद, डेटा विज्ञान और AI प्रोफेसर 1 पद, सह प्रोफेसर 1 पद तथा सहायक प्रोफेसर भी 1 पद, विज्ञान टेक और नीति अध्ययन विभाग में प्रोफेसर का 1 तथा सह प्रोफेसर का भी 1 ही पद उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, तैनाती के स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 12 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा नालंदा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nalandauniv.edu.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुनिए www.nalandauniv.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर डालेंगे एक नजर और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि और आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ। परिक्रमा के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं हमारी बहुत खूबसूरत एंकर लालिमा अनेजा डेंग।
2: ओहो, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। आप भी खूबसूरत लग रही हैं,
1: थैंक यू।
2: पिंक पिंक में। वेल फ्रेंड्स, ऑन दैट लवली नोट, लिटरली लवली नोट, यस, एज शी सेड, आई एम लालिमा अनेजा डेंग एंड विद मी इज दिव्या तोमर एंड शी नाइसली लेड द रोड मैप ऑफ व्हाट वी गोइंग टू हैव इन दिस प्रोग्राम नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। एंड सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस राइट अवे बिकॉज आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट ऑल वी हैव। जस्ट इन वन लाइन आई विल टेल पीपल दैट वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, वी हैव अ डिस्कशन सेगमेंट which is called Dateline India. We have some reports, some capsules, some tributes, and a lot more. Stay tuned. All this over the next 30 minutes, right? So let's begin with the headlines right away. Okay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance.
1: Hindustan Aeronautics Limited आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायु सेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: Railways approve 493 crore rupees project for the construction of new rail line between Mukutban and Garchandur in Maharashtra.
1: सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया।
2: ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी मूडीज रेजेस इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ टू 7% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर।
1: और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।
2: And friends, now it's time for Dateline India, as we promised in the program. This is the time when we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we're going to talk about something very, very, very important, because the phone that you use, the computer that you use, the car that you drive, the mobile that you drive, everything has one thing common, and that is the big S word. Yes, a tiniest thing, but very important. Semiconductor. So, semiconductors are fundamental to today's digital economy, and they power everything from smartphone to automobile and even medical devices. And we have made a lot of progress in this because that has become a part of our Atmanirbhar Bharat mission. And you know, there is something, Divya, aajkal ek exhibition chal rahi hai semiconductor pe. It's called Semicon 26. It's the fifth in the series so far. Mm-hmm. And it's happening at Yashobhumi in Delhi, 17th, 18th and 19th, these 3 days. And we had our Honorable Prime Minister inaugurating the event. And to tell you that Semicon 1.0 in December 2021 took place with an outlay of 76,000 rupees. Several fabrication and design facilities have been established and propelling the country towards technological leadership and reduced import dependence. You know, semiconductors are the building blocks of modern technology, and they power artificial intelligence, telecommunications, electric mobility and defense and advanced manufacturing. Even you have the Internet of Things, like 5G, 6G, data centers, autonomous vehicles. All this requires a good semiconductor.
1: बिल्कुल लालिमा, और इस बढ़ती अहमियत की वजह से ही इसका असर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में

0: तेजी से होते विस्तार के साथ देख रहे हैं हम लोग। और 2014 और 2024 के बीच ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 6.5% रही और अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों में ये 8.5% की दर से बढ़ेगा। और इसीलिए बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने तकनीकी और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मजबूत कर रही हैं। भारत में भी सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि 2030 तक ये 110 अरब डॉलर और 2035 तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
1: दैट्स राइट। इनफैक्ट ताइवान टुडे लीड्स, दिव्या, ताइवान लीड्स द वर्ल्ड एज फार एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड। एंड एक्चुअली वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर आफ्टर द पैंडेमिक, बिकॉज आफ्टर द पैंडेमिक वी रियलाइज दैट no semiconductor chips had been made and people had very, very long queues if they wanted to book some car or any vehicle because there was an acute shortage of semiconductors. And India is now very good at converting any adversity into opportunity, just as we did for the PPE kits. We did the same thing for semiconductor. We realized that this is a gap we must fill. And one thing which is very important, Devya, here is that semiconductor manufacturing has a huge incubation period. Kai baar 4-5 saal lagte hain. आज हमने एक फैक्ट्री सेटअप की तो पहला चिप आने में 3-5 साल लग सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ विजनरी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट डिड। एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज नाउ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टोटली सपोर्टिंग द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू एडवांस इंडियाज सेमीकंडक्टर एम्बिशंस एंड स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम।
0: बिल्कुल लालिमा, और क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एक ऐसे पदार्थ हैं जिसकी विद्युत चालकता, जो जिससे विद्युत चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। तांबे जैसे चालक आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुचालक इसका प्रबल प्रतिरोध करते हैं। और सेमीकंडक्टर पदार्थों को विद्युत संकेतों को स्थानांतरित करने, प्रवर्धित करने, संवेदन करने या नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और स्पेशली आजकल हम देखते ही हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सभी सेमीकंडक्टर्स पर ही निर्भर हैं। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण, वायु वाहन रक्षा प्रणालियां, उपग्रह और डेटा केंद्र अर्धचालक आधारित घटकों का उपयोग करते हैं। और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो अर्धचालक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत तत्व हैं।
1: बिल्कुल, सोचने की बात है कितना छोटा होता है माइक्रोचिप और कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, सिलिकॉन इज द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। यू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम? वेल, सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलिका एंड which occurs abundantly in sand. Chip manufacturing begins with highly purified silicon, which is formed into cylindrical ingots. And these ingots are sliced into thin wafers and then polished. Inside the fabrication plants, these wafers undergo hundreds of carefully controlled processes. These include deposition, photolithography, etching and iron implantation. And come to think of it, a semiconductor industry or a setup must not have even a dot of dust. It has to be an absolutely clean dust-free environment, and that's one of the big challenges.
0: बिल्कुल, और ये सभी प्रोसेस मिलकर ऐसी जटिल संरचनाएं बनाते हैं जिनसे अरबों ट्रांजिस्टर और दूसरे कंपोनेंट बनते हैं। फोटोलिथोग्राफी के दौरान रोशनी का इस्तेमाल करके वेफर पर पैटर्न बनाए जाते हैं और ये पैटर्न ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जिनसे आखिर में चिप के ट्रांजिस्टर, इंटरकनेक्ट और दूसरे हिस्से बनते हैं। ट्रांजिस्टर चिप पर लगे बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते हैं। जटिल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए इस प्रोसेस को कई लेयर पर दोहराया जाता है। तैयार सेमीकंडक्टर डिवाइस को फिर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग या आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्रोसेस से गुजारा जाता है। पैकेजिंग चिप की सुरक्षा करती है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जुड़ने में मदद करती है। टेस्टिंग ये पक्का करती है कि तैयार डिवाइस जरूरी परफॉर्मेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं।
1: That's right, you've explained very well, and I must share this with our listener friends that we've had Semicon 1.0, which means that we got into that manufacturing phase. Now we are on to Semicon 2.0, which means that we are now into chip designing. We are also into advanced packaging and all that comes with it. And India, one feels, India has an edge over the others, and that's exactly what our prime minister also feels, Divya, because it is said that we have a demographic dividend. We have such a huge youth population.
0: Bilkul.
1: We are churning out engineers every year, year after year.
0: Skill population ka humko yahan benefit hai.
1: Exactly, you're right. We have a skill ministry and we have a skilled manpower. And the fact that we are a robust economy at 7.8%, we are the fastest growing economy in the world. So that gives us a kind of an ecosystem where we must and we should become a semiconductor hub of the world.
0: बिल्कुल. और भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताएं सिर्फ एक औद्योगिक अवसर से कहीं ज्यादा है. ये आयात पर हमारी निर्भरता

0: Period. In 2021, under Semicon 1.0, the country had no commercial chip plant. But by 2026, we have 12 units stand approved and 5 are in production already. Mm-hmm. Students across hundreds of colleges are now designing chips. And Semicon 2.0 is the next chapter in this account. And it takes a functioning ecosystem and completes it. Machines, materials, design, research, talent now join fabs and packaging. And the road ahead, of course, is demanding. And I just mentioned a little while ago that chip manufacturing ranks among the most complex industries in the world. You got to be patient, you got to be precise, and you have got to have very steady policy support, which our government is ready to give and is giving. So devices will be manufactured more fully within India, and we hope that critical systems will depend less upon distant supply chains, and we will find our young engineers who will have high value work closer to home. Come to think of it, a tiny little chip carries such a huge promise, and India has resolved to build it at home.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। गोवा में इन दिनों गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव का माहौल है। घरों में गणपति की स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना, पारंपरिक पकवान और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाने का सिलसिला जारी है। आज गणपति उत्सव का 5वां दिन है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोवा की अपनी खास परंपराओं से सजा ये पर्व लोगों के लिए आस्था के साथ साथ अपनों से मिलने और साथ मिलकर खुशी मनाने का भी अवसर है।
0: Exactly, and I'm just hoping and praying and assuming that all our friends are now using eco-friendly Ganeshas, which means Ganeshas made of clay. हम क्यों इतनी शोशाबाजी में पढ़ते हैं, क्यों हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, हम क्यों इतना रंग बिरंगे केमिकल वाले पेंट्स यूज करते हैं जब हम उन गणेशाज को इमर्स करेंगे।
1: क्योंकि ईश्वर जो है कहीं ना कहीं लालिमा, ये भाव के भूखे होते हैं।
0: Exactly.
1: तो हमें हम क्यों उनकी ही बनाई हुई प्रकृति को खराब करने में लगे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सुंदरता में क्या फंसना, क्ले के बनाओ, मिट्टी के बनाओ और उन्हें वेजिटेबल पेंट से पेंट करो और बाद में विसर्जित कीजिए। आई जस्ट होप दैट्स हैपनिंग। एंड नाउ लेट्स टेक अ लिसन यस एट दिस रिपोर्ट। या
2: गोवा में गणेश चतुर्थी के दिन घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर विधि विधान से पूजा की जाती है। गणपति के स्वागत के लिए घरों को नारियल, सुपारी, केले और आम की पत्तियों से सजाया जाता है। पूजा के साथ पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। परिवार और रिश्तेदार एक साथ आरती करते हैं और सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। गोवा के कई घरों के साथ साथ सार्वजनिक आयोजनों में भी गणेश उत्सव की रौनक है। सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ सिर्फ पूजा का पर्व नहीं बल्कि परिवार, परंपरा और आपसी मेलजोल का भी उत्सव है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: All right, so Ganpati Bappa Morya. Interestingly, when we say Ganesh, we start every puja, every event with a Ganesh puja, because Ganesh, matlab jo Gan means group, har group ke jo ish hai wo Ganesh hue. So he starts our day, he starts every event. All right, moving from there, from Goa to another place where, let's talk about still water. It is said that don't give man a fish, you teach him how to do fishing. Well, that was in lighter vein. Entrepreneurship in the fishery sector is set to receive a fresh impetus with the launch of a new national level initiative by the Indian Council of Agricultural Research, ICAR. It's called Kshitij 2.0, and the initiative is being led by ICAR, Central Institute of Fisheries Technology from Kerala. Now, this program seeks to promote innovative ideas and support startups and technology-based enterprises in the fisheries and aquaculture.
1: आइए सुनते हैं केरला से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: The selected participants will undergo 2 months of virtual incubation. Those advancing to the next stage will receive 4 months of need-based physical incubation. The program will provide expert monitoring, technical guidance, pilot testing and field validation. Emerging areas such as aquaculture and fishing technologies, value-added fish products, fish health and nutrition, aqua feed, cold chain management, packaging and preservation and utilization of fisheries waste least will receive special attention. Support will also cover business development, marketing, regulatory compliance, and intellectual property. A key component of the program

0: program is SIFEQ Ideathon, where participants can present their business proposal for further development and incubation. 8 top proposals will receive acceleration funding of 4 lakh rupees each, while 20 proposals will receive seed funding of 50,000 rupees each. 40 selected proposals will also be offered free incubation registration. The program is being implemented through Zonal Technology Management Agribusiness Incubation Center at ICAR SIFT under the National Agricultural Innovation Fund, along with the Malsya Fisheries Incubation Center at ICAR SIFT under the Pradhan Mantri Malsya Sampada Yojana. SHIT 2.0 is expected to create new opportunities for young entrepreneurs, fish farmers and innovators by connecting scientific knowledge and technology with practical needs in the fishery sector. The initiative aims to help promising ideas move from the laboratory and drawing board to the field and marketplace, giving further momentum to entrepreneurship and innovation in India's blue economy. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: Well, come to think of it, India has such a huge coastline that we can't ignore the fisheries sector and our fishermen friends. And that is why the country and the government has a great, huge targets to improve and for the blue economy, as our reporter just mentioned.
2: बिल्कुल. और अब चलते हैं केरला के बाद बिहार में. दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब केले की खेती होती है उसके बाद उसके तने को वेस्ट समझ के छोड़ दिया जाता है. लेकिन इस वेस्ट को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला है बिहार के एक व्यक्ति ने. तो खेती के बाद बच जाने वाला केले का तना अक्सर जो बेकार समझ लिया जाता है, लेकिन बेगूसराय के एक व्यक्ति हैं राकेश कुमार. उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ करके बेगूसराय में इसी तने से रोजगार और कारोबार का एक जरिया बनाया है. नावकोठी प्रखंड के चक मुजफ्फरपुर गांव के हैं राकेश कुमार, और इन्होंने केले के तने से पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है. आज उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद दुबई और कनाडा तक पहुंच रहे हैं.
1: वाओ, दैट साउंड सो गुड. वैसे दिव्या, आपको बताऊं, आई हैव अ मैट एट होम व्हिच इज मेड फ्रॉम बनाना फाइबर्स एंड आई प्रिजर्व इट एंड आई यूज इट सो रेयरली, क्योंकि बहुत कम मिलती है. लेकिन अगर
2: सब में लाइवनेस होती है, जितने भी हम जैसे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम वुड का वुडन अगर कोम यूज करते हैं, और जितनी भी जो वेस्ट जो हमारे स्पेशली इस तरीके के वेस्ट से बनती हैं चीजें, उनमें ऐसा होता है कि हम फील गुड अपने आप करते हैं.
1: एग्जैक्टली, एंड दीस आर नेचुरल प्रोडक्ट्स व्हिच व्हिच आर सपोज्ड
2: प्लास्टिक के अगर हम अल्टरनेट पे देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो लेट्स लिसन इन एंड सी व्हाट व्हाट दिस स्टार्टअप इज डूइंग. या
2: बिल्कुल.
3: MBA की पढ़ाई के बाद करीब 13 वर्षों तक कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले राकेश कुमार ने स्वरोजगार की राह चुनी. उन्होंने केले के तने से फाइबर निकालकर इको फ्रेंडली फैब्रिक बैग और दूसरे उत्पाद बनाने का काम शुरू किया. बिहार स्टार्टअप योजना के तहत उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता भी मिली.
4: आज हम सब बैग बनाते हैं बनाना फैब्रिक का, जो दुनिया के हर कोने में मैं सप्लाई कर रहा हूँ. सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव बैग बनाना या फाइबर बनाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम लेवल को बढ़ाना, जो लोकल वहाँ पे अनएम्प्लॉयड फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार देना. तो इस जर्नी का पार्ट है, हमने एग्रीकल्चर वेस्ट को कन्वर्ट किया, किसान की इनकम को बढ़ाया, रोजगार पैदा किया, और सबसे बेहतरीन इस दुनिया के लिए वातावरण के लिए हम सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया.
3: राकेश केले के तने से फाइबर निकालकर बैग, लेदर के विकल्प, कॉटन मिश्रित फैब्रिक और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद तैयार कर रहे हैं. खास बात यह है कि फाइबर निकालने के बाद बचे अवशेष से वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है. खेती में बेकार समझे जाने वाले केले के तने को उपयोगी उत्पाद में बदलकर राकेश ने न सिर्फ गांव में रोजगार का रास्ता बनाया है, बल्कि बिहार के स्थानीय स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मिसाल भी पेश की है. परिक्रमा के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा की रिपोर्ट के साथ, पटना से नीतिश्री.
1: Yeah, really nice initiative, and to think that the product which is made is eco-friendly and you're also consuming the waste. There's no waste, you know. That's really nice to hear that. Well, moving on, and from Bihar, let's come to close to Delhi, and that's Haryana. Well, friends, in Haryana, under the Seva Sankalp Abhiyan, health and other services are being provided to the poor and needy families. Let's listen in.
5: हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित रखने की बजाय गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम हुआ है. हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए

0: सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से पात्र लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वे आज सेवा संकल्प अभियान के तहत नागरिक अस्पताल सोनीपत में आयोजित जिला स्तरीय निःशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ करने के मौके पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन के साथ पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा है। स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता और समय पर जांच पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए नागरिक अस्पताल सोनीपत में मेमोग्राफी की सुविधा भी शुरू की जा रही है। उन्होंने टीबी मुक्त हरियाणा के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। समय पर पहचान और नियमित उपचार से टीबी का इलाज संभव है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: Well, we've talked so much about eco-friendly stuff. Let me tell you, friends, that as part of our series, Prakriti Ki Baat, Akashvani Ke Saath, in our upcoming episode, we speak to Manjari V. Mahajan, recipient of the National Teachers Award, about the work on waste management and environmental conservation in her school. You may tune in to 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. And you can also listen to this program on News on AIR app and the News on AIR official YouTube channel.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
1: जी,
2: जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया।
1: इन द एशियन गेम्स वुमेन्स क्रिकेट क्वार्टर फाइनल इंडिया बीट जापान बाय 8 विकेट्स। पुट इनटू बैट, जापान वर ऑल आउट फॉर 57 रन इन 19.5 ओवर्स, चेजिंग अ विक्ट्री टारगेट ऑफ 58 रन्स। इंडिया अचीव द टारगेट इन जस्ट 5 ओवर्स विद 90 बॉल्स टू स्पेयर। शेफाली वर्मा लेड द चेज विद एन अनबीटन 40 ऑफ 15 बॉल्स, वाइल रिचा घोष रिमेन्ड अनबीटन ऑन 12 ऑफ 6 बॉल्स। विद दिस विक्ट्री इंडिया हैज एडवांस्ड इनटू द सेमीफाइनल्स वेयर दे विल फेस बांग्लादेश ऑन संडे। एंड Now, in some business news, benchmark domestic equity indices ended on a mixed note today. The Sensex dipped 20 points to close at 74,295. Nifty added 76 points to settle at 23,346. However, the broader market outperformed the frontline indices. Nifty mid-cap 100 index climbed 1.2%, while Nifty small-cap 100 index surged 1.7%. In the Forex market, rupee appreciated by 8 paise to close at 95 rupees and 88 paise against the US dollar. To talk about the Indian bullion market, 24 carat gold was trading up at 1,54,790 rupees per 10 grams. Silver was trading higher at 2,41,790 rupees per kilogram when reports last came in. For more on economic news, tune in to Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड रिवोल्यूशनरी मदन लाल ढींगड़ा। ही वॉज बोर्न ऑन 18 सितंबर 1883 इन अमृतसर।
4: इन जुलाई 1909 ढींगड़ा असैसिनेटेड सर विलियम कर्जन वाइली, एन एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, at a gathering in the Imperial Institute, London. Dhingra refused to take service of government's attorney, saying he did not recognize the legitimacy of court to try him.
3: He declared that his act was a humble revenge for the inhuman hangings and transportation of patriotic Indians. While he was being removed from the court, he said to the Chief Justice, "Thank you, my lord, I don't care. I am proud to have the honor of laying down my life for the cause of my motherland." He was sentenced to death and died on the gallows at the Pentonville Prison, London, on August 17, 1909, at the age of 26.
4: Madanlal Dhingra was a symbol of the youth of his time, who was strongly opposed to the oppressive measures adopted by the British ruling India with an iron hand. In recognition of Madanlal Dhingra's valor, Annie Besant said, "More Madanlals are the need of the time."
3: Another revolutionary, Virendranath Chattopadhyay, started a monthly magazine in his memory named Madan Talwar, from German, and printed by Madame Kama. Madan Lal Dhingra's name is inscribed in the hearts of every Indian for his heroism and fearlessness.
4: 18 September is the death anniversary of a well-known Indian theosophist and freedom fighter, Bhagwan Das.
1: All right, let's talk about some important people now. Let's talk about Kaka Hathrasi. Yes, you know him as Kaka Hathrasi, but he was born as Prabhu Lal Garg. And he chose Kaka as he played the character in a play which made him popular. And Hathrasi is after the name of his hometown. And he has 42 works to his credit, comprising a collection of humorous and satirical poems.
2: और काका हाथरसी को 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. आइए सुनते हैं उनकी कुछ पंक्तियां.
5: लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे, काका कवि को इसी वर्ष में करोड़पति कर दे वरदे.
1: जी
2: बिल्कुल. और काका हाथरसी की यही खूबी थी कि वो बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में बहुत गहरी बात कह जाते थे. अब हम बात करते हैं आसिद सेन की. हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले आसिद सेन की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट करने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने 200 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया. आइए सुनते हैं उनका ये संवाद.
6: अरे भगवती, तुमने कुछ सुना?
7: मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बचते होंगे.
2: स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास की आज पुण्यतिथि है. 1958 में स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षाविद भगवान दास का निधन हुआ. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. सारंगधर दास भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए और 1946 तक जेल में बंद रहे. और उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ की अध्यक्षता भी की. इनका जीवन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल बड़े पदों से नहीं होता, कभी शिक्षा से, कभी समाज सेवा से, कभी विचारों से और कभी संघर्ष से भी देश आगे बढ़ता है. वहीं प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राजनारायण बोस की भी आज पुण्यतिथि है. उनका निधन 18 सितंबर 1899 को हुआ. वे बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के प्रमुख चिंतकों में शामिल हैं. और आइए बात करते हैं साहित्य की दुनिया के मशहूर नाम श्रीकांत वर्मा की. आज उनकी जयंती है. श्रीकांत वर्मा प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार और साहित्यिक समीक्षक थे. उनकी रचनाओं में आधुनिक जीवन की बेचैनी, राजनीति, समाज और व्यक्ति के भीतर चल रहे संघर्षों की झलक मिलती है. श्रीकांत वर्मा 50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे. लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव रही स्नेहलता श्रीवास्तव की भी आज जयंती है.
1: और टुडे वी टॉक अबाउट द फेमस मराठी लिटरेटर शिवाजी सावंत. ही पास्ड अवे ऑन दिस वेरी डे एंड ही इज अ वेरी वेल नोन नेम इन मराठी लिटरेचर.
2: और अंत में हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी का भी आज जन्मदिन है. वे एक मजी हुई अदाकारा हैं और उन्होंने अपने अभिनय से सच में बहुत ही ज़्यादा सब दर्शकों का मन लुभाया है. आइए सुन.

0: That's really nice. On that note, it's time for us to bid adieu. This is Lalima Aneja Dang and
1: Divya Tomar.
0: Signing off. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मक्का पर हुए हमले के प्रयास के बाद भी भारत ने एक बयान जारी किया था। जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। ये बाब अल मंडाब से होकर गुजरने वाले नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और एक भारतीय युद्धपोत के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है।
3: पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समुद्र में है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में माना जाएगा। इसके अंतर्गत पार्टी के नियंत्रण को लेकर आंतरिक विवाद के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम और फूल घास चिन्ह को निलंबित कर दिया गया था। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजिनगढ़ में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित मंजरी वी महाजन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसोजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसोजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President congratulated the Prime Minister on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Replying to a question at a media briefing in New Delhi, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said, India has condemned attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca. Mr. Jaiswal said, such attacks undermine regional peace and security.
4: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
1: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. He said INS Kolkata was on routine deployment in the Western Arabian Sea when Pakistan Navy ship PNS Hunain carried out an unacceptable and unprofessional maneuver, resulting in the collision. Defence Minister Rajnath Singh will preside over the handing over ceremony of HAL platforms to the Indian Air Force and Pawan Hans in Bengaluru today. The public sector aviation manufacturer HAL will hand over two LCA FOC trainer aircraft to IAF, four Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rejinagar on the 6th of next month under new identities. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% for the current financial year from its earlier projection of 6%. The agency said that the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. In Pakistan, 15 people were reportedly killed and other 50 others injured after a blast near a mosque in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province today. The police said the explosion took place during Friday prayers and caused a crater near the mosque. According to police officials, rescue operations were being conducted at the site of the incident. According to police, the unidentified assailants targeted the checkpost before escaping from the spot. India has been ranked first in business climate among 40-plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. Indian tech ball debutant Kim C. D'Souza stormed into the semifinals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Kim C. produced a strong comeback in her Group A match two encounter against Japan's Yuna Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. And that is the end of this news bulletin.
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
6: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में जिसकी वो प्रिंसिपल है वहाँ पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत

0: हवा दिया है और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: धन्यवाद
0: मंजरी जी। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
1: हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं।
0: सीख सकते हैं, और प्रकृति हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस दिशा में आपने कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
1: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज।
0: वेट वेस्ट जब आप कह रही हैं, तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट वेस्ट में आती हैं?
1: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
0: सो जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
1: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है।
0: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
1: एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे। तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
0: एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक और जो पहलू है पानी का, उसके प्रति किस तरह से आपने उसमें कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए?
1: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें, इवन जो वेस्ट वाटर होता है जैसे जो टैप से आ रहा है उसको हमारी कोशिश रहती है कि उसको यूज करें, हम रीयूज करें फ्लावर बेड्स के लिए, और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर को, और जब जरूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज कर लेते हैं वाटरिंग के लिए।
0: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने काफी कार्य किया है?
1: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में, और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं।
0: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है, तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं?
1: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ, ऐसे हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना।

0: है, तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है।
1: आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे, उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है, और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
0: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरमेंट में कई ईयर्स तक ऐसे ही रहता है। तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर सकें।
1: तो ये रिसाइकल की जो आप बात कर रही हैं, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक, जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
0: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था। तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों, किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं, तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी। तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें। इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और इनको हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहां पर डोनेट कर रहे हैं, और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है। तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है
1: कि अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके क्या मतलब है। अपसाइकल
0: में ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं, वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है।
1: आप कह रही हैं कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना? क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है?
0: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट हैं ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है उनको, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को गाइड किया, इन्वॉल्व किया, तो वो समझने लगे।
1: तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमने पंचायत मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने प्रोजेक्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ, वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है विप्रो अर्दियन की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट किया तो इसमें हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया, और दोनों ही सालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने देखा बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई, वो छोटी छोटी टर्म समझने लगे और वो इम्पोर्टेंस समझने लगे कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी है।
1: तो आपको राजकीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया?
0: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला, और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है, और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें ये अवार्ड दिया, और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था, वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था, तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है, और ये सम्मान मिला है जो हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज की हैं स्कूल में उसके लिए।
1: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं?
0: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट।

0: एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकें।
1: जी सो आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट की बात करी, तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहें कि एक छोटे लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है?
0: जी बिल्कुल, खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन है, और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं, और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं। मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा, फिर कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं, खुश होते हैं। और
1: जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का, सभी का, जो भी लिविंग बीइंग है, वो है खाना। खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध है, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है, पुराने जो मोटे अनाज थे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट, जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है?
0: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन, तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है।
1: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी, उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
0: बैग फ्री डेज होते हैं, ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं, हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं, और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं।
1: अच्छा, बिना किताबों के
0: आते हैं, और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए। तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के।
1: जी,
0: क्योंकि नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता। कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है, कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं, तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है। तो ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं।
1: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या कोई प्रदर्शनी लगा आते हैं या कोई एक्टिविटीज?
0: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं, जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स, तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में। और मेरे एरिया में ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं, तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे, रूम्स बनाते थे, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है, तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ, वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं, जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग, तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है।
1: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों के लिए बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हों, तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है या आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकते?
0: बिल्कुल करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
1: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो, जो भी आपके खास आप कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम, उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो, कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हो?
0: बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज़ लेते हैं, तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज़ किसी ने टॉफ़ी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
1: सो मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के साथ, सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज्ड लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से? और कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत जरूरी है?
0: जी बिल्कुल जरूरी है, और खासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे, वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरमेंट के साथ जोड़ें।
1: जो एनवायरमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
0: हमारे पास 6th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
1: सो आपको लगता है कि अब जो आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है, या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
0: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6th में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में सीखते हैं, तो फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
1: पंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सकें, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को? ये जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
0: स्कूल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
1: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
0: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा।
1: कोलैबोरेटिव अप्रोच,
0: कोलैबोरेटिव अप्रोच रहनी चाहिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए।
1: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है उसका प्रमुख पहलू?
0: जी, हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूं और बच्चों को एनवायरमेंट कॉन्शियस बना सकूं।
1: सो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं, वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
0: वो एक्टिविटीज यही है कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती हैं इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
1: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो हैं वो करते हैं आपके,
0: वो करते हैं बिल्कुल
1: गाइडेंस में,
0: बिल्कुल करते हैं।
1: सो मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर, और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहे, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: जी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

दोस्तों, सादगी की भी अपनी एक बेमिसाल खूबसूरती होती है। गांव की पगडंडी, लहलहाते खेत और ऐसे में किसी सीधी सादी नजर का दिल के पार उतर जाना, जहां कोई बनावट नहीं, बस मन का सहज समर्पण होता है। इसी पवित्र और सौम्य एहसास को स्वर देता है हमारा ये खूबसूरत गाना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा।

फिल्म चितचोर से ये बेहद ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे केजे येसुदास की आवाज में। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दूसरा आदमी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में एक खूबसूरत गीत, संगीत राजेश रोशन का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

अपनी एक अनोखी जुबान होती है। मंजिल कहाँ है, कब है और कैसे मिलेगी, जब ये सवाल पीछे छूट जाते हैं तब जाकर मुसाफिर अपनी असली मौज में आता है। जब कदमों के नीचे सड़क हो और हवाओं में आजादी हो तो हर अजनबी शहर अपना लगने लगता है। इसी अल्हड़ मिजाज और खुलेपन को स्वर देता है हमारा अगला ये लाजवाब गाना।

परिचय फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीत आरडी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गोरा काला से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाज मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, जब रास्ते पथरीले हों और दूर दूर तक कोई हमसफर नजर न आए, तब इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। जो भीड़ के सहारे चलते हैं वो अक्सर रुक जाते हैं, मगर जो सच के रास्ते पर अकेले कदम बढ़ा देते हैं उनके पीछे पूरा कारवां चल पड़ता है। तो आइए सुनते हैं आत्मबल और हौसले को बढ़ाने वाला ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, सफर फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल इंदिवर के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चांदनी से लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज में एक बेहद ही खूबसूरत गाना, संगीत शिवहरी का और बोल आनंद बख्शी के।

दोस्तों इसी खूबसूरत गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

0: नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Replying to a question at a media briefing in New Delhi, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said India has condemned attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास अपना एक घर हो, ऐसा घर जहां परिवार बिना किसी डर के रह सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह हो सके और बारिश, गर्मी या सर्दी में परेशानी न हो। एक पक्का घर केवल चार दीवारों और छत का नाम नहीं है, ये परिवार को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा देता है। इसी सोच के साथ जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU शुरू की गई। PMAYU के अनुभवों और बढ़ती आवासीय जरूरतों को देखते हुए सितंबर 2024 में इसका नया चरण PMAYU 2.0 शुरू किया गया। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 से 2029 के बीच 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी, गरीब और मध्य

0: मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस तरह जरूरतमंद परिवारों तक पक्का घर पहुंचा रही है, महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी दे रही है और तकनीकी मदद से योजना में पारदर्शिता तथा निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि PMAYU के तहत कौन लोग लाभ ले सकते हैं और इस योजना के नए चरण में क्या बदलाव किए गए हैं।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मूल उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास। योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को सहायता दी जाती है जिनके पास भारत में कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं है। लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बेटे या बेटियां शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई वयस्क कमाने वाला व्यक्ति, यदि उसके नाम पर कहीं भी पक्का मकान नहीं है तो उसे भी अलग परिवार माना जा सकता है। योजना में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी पात्र परिवार के पास 21 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का पक्का मकान है तो उसे मौजूदा मकान को बढ़ाकर अधिकतम 30 वर्ग मीटर तक करने के लिए सहायता मिल सकती है। अब बात करते हैं PMAYU 2.0 की। PMAYU 2.0 के तहत पात्र परिवारों को शहरों में मकान बनाने या खरीदने के लिए प्रति मकान अधिकतम 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG और मध्यम आय वर्ग यानी MIG को शामिल किया जाता है। EWS परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक, LIG परिवारों की आय 3 से 6 लाख रुपए तक और MIG परिवारों की आय 6 से 9 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। PMAYU 2.0 में आवास की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है लाभार्थी आधारित निर्माण। इसके तहत पात्र EWS परिवार अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मकान का अधिकतम कार्पेट एरिया 45 वर्ग मीटर तक हो सकता है। दूसरा है साझेदारी में किफायती आवास। इसके तहत सरकारी या निजी एजेंसियां पात्र EWS परिवारों के लिए किफायती मकान बनाती हैं। इन मकानों को खरीदने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रति मकान अधिकतम 2,50,000 रुपए तक की सहायता देती हैं। तीसरा है किफायती किराए का आवास। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शहर में किराए पर सुरक्षित और साफ सुथरा मकान चाहिए लेकिन वे अपना मकान बनाने या खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसमें प्रवासी श्रमिक, बेघर लोग, औद्योगिक श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, शहरी गरीब, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक और संविदा कर्मचारी जैसे लोग शामिल हो सकते हैं। चौथा हिस्सा है ब्याज सब्सिडी योजना। इसके तहत पात्र परिवारों को मकान खरीदने, दोबारा खरीदने या मकान बनाने के लिए लिए गए गृह ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1,80,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है निर्धारित शर्तों के अनुसार। श्रोताओं, PMAYU की एक खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के तहत मकान का स्वामित्व या सह स्वामित्व महिला लाभार्थी के नाम पर रखना अनिवार्य है। इससे महिलाओं को अपने घर में मालिकाना हक मिलता है और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका भी मजबूत होती है। श्रोताओं, अब सवाल है कि इस योजना का जमीन पर कितना असर हुआ है। 9 अगस्त 2026 तक PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत कुल 1,25,00,000 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक मकान पूरे करके लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इन स्वीकृत मकानों में से करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में है। श्रोताओं, ये आंकड़े बताते हैं कि पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं है, ये परिवार की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है।
0: श्रोताओं, इतने बड़े स्तर पर मकानों का निर्माण और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जरूरी है कि मकान सही जगह बने, काम समय पर हो और सरकारी सहायता का सही इस्तेमाल हो। PMAYU में इसी काम के लिए डिजिटल तकनीक, जियो टैगिंग और ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन तकनीकों के साथ साथ पक्के मकान मिलने से लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव आया है।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तकनीक का इस्तेमाल योजना की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। PMAYU 2.0 का एकीकृत वेब पोर्टल एक डिजिटल मंच की तरह काम करता है। इसके जरिए पात्र लोग आवास सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। इस मंच पर लाभार्थियों के साथ

0: साथ शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकारें और योजना से जुड़ी एजेंसियां भी काम करती हैं। मकान के निर्माण की अलग अलग अवस्थाओं में उसकी जियो टैगिंग की जाती है, यानी मकान की जगह और निर्माण की स्थिति को डिजिटल तरीके से दर्ज किया जाता है। मकान के निर्माण को 5 प्रमुख चरणों में देखा जाता है। जमीन पर काम शुरू होना, नींव तैयार होना, मकान का मुख्य ढांचा बनना, फिनिशिंग और बाहरी काम तथा अंत में मकान का पूरा होना। इससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि मकान किस स्थिति में है और निर्माण कार्य समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं। PMAYU का डैशबोर्ड भी योजना की प्रगति की जानकारी देता है। श्रोताओं, आवास निर्माण में नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उप मिशन भी चलाया गया। इसके तहत देश और दुनिया में इस्तेमाल हो रही नई, मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीकों को बढ़ावा दिया गया। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत दुनिया भर से 54 प्रमाणित तकनीकों का चयन किया गया। इनमें से 6 अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके देश के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाए गए। PMAYU 2.0 में इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बेहतर डिजाइन, अच्छी गुणवत्ता और टिकाऊ आवास निर्माण को बढ़ावा देना है।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके लिए पक्का मकान उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। आंध्र प्रदेश के अड्डांकी की मंडलापू अनंत लक्ष्मी अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक अस्थायी छत वाले छोटे मकान में रहती थी। परिवार की आमदनी सीमित थी और परिवार भैंस पालन पर निर्भर था। अपने दम पर पक्का मकान बनाना उनके लिए मुश्किल था। PMAYU के तहत सहायता मिलने के बाद उन्होंने अपना पक्का मकान बनाया। नए घर से परिवार को सुरक्षित रहने की जगह मिली, स्वच्छता की स्थिति बेहतर हुई और खुले में शौच की समस्या भी समाप्त हुई। इस बदलाव ने परिवार में आत्मविश्वास बढ़ाया और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर तरीके से सोचने का अवसर दिया। ऐसी ही एक कहानी मेघालय के नोंगपोह की लूसी बोन सिंह कली की है। लूसी बोन अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य हैं। वे आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं और अनानास की खेती भी करती हैं। पहले उनका परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। बरसात के मौसम में मकान की बार बार मरम्मत करनी पड़ती थी। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था और उनके पिता के इलाज पर भी असर पड़ता था। PMAYU के तहत पक्का मकान मिलने के बाद परिवार को हर मौसम में सुरक्षित घर मिला। मरम्मत पर होने वाला खर्च कम हुआ और बची हुई राशि का उपयोग उनके पिता की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए किया जा सका। परिवार ने वर्षा जल संचयन भी अपनाया, फलदार पेड़ लगाए, LPG कनेक्शन लिया और LED लाइट का इस्तेमाल शुरू किया। श्रोताओं, इन दोनों उदाहरणों से समझा जा सकता है कि एक पक्का घर परिवार के जीवन में कई तरह के बदलाव ला सकता है। ये केवल सिर पर छत नहीं देता बल्कि परिवार को सुरक्षा, स्वच्छता और आर्थिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की यात्रा इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि शहरों में रहने वाले हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का अवसर मिले। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहितसम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य सानिध्ये HAL संस्थानेन भारतीय वायुसेनायै तेजस LCA अथ HTT-40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबन गडचांदूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 93.4 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ। विपुलमात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि।

0: तत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागर क्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिंता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरब देशस्य सार्वभौम क्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणां आर्थिक संपत्तीनां चोपरि कृतानां आक्रमणानां दृढं खंडनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्र मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य संजातस्य आक्रमण प्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीय युद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्ष विषये विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीय प्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम्। सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान् अपेक्षाञ्च सर्वथा अंगीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: उत्तर सेना सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इत्येषः उधमपुरे ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं जैशे इत्यस्य द्वयोः आतंकवादिनोः हननार्थं व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सेनायाः उत्तर सेना सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उधमपुर जनपदस्य माजलता क्षेत्रे ऑपरेशन सोहनस्य समये व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य द्रुतं सुनिश्चितं व्यावसायिकं च कार्याचरणाय प्रशंसाम् अकरोत्। अस्माकं संवाददात्रानुसारं जम्मू कश्मीरस्य आरक्षकैः CRPF इत्यनेन च सह अविच्छिन्न समन्वयेन सम्पन्नं गुप्त सूचनाधारितं सफलम् अभियानं भयोत्पादन निरोध ग्रिड इत्यस्मिन् संयुक्त अन्तरसंस्था समन्वयस्य शक्तिं पुनः एकवारम् अधोरेखितम् अस्ति। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पादस्य विकास मानांक पूर्वानुमानं 6% संवर्ध्य 7% यावत् विहितम्। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् अयम् ऊर्ध्वमुखी संस्कारः पश्चिम एशिया संघर्षेण जनितात् वैश्विक आघातात् परमपि भारतीय अर्थव्यवस्थायाः प्रत्यस्थतां दृढतां च प्रदर्शयति। मूल्यांकन संस्थानुसारं G20 समूहेषु सर्वेभ्यः देशेभ्यः अपेक्षया भारतस्य आर्थिकवृद्धिः तीव्रतरा भविष्यति। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे समायोज्यमाने 20तमे एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य क्वीन्जी जोआकिम डिसूजा इत्येषाद्य प्रातः काले महिला एकल स्पर्धायां विजयद्वयं सम्प्राप्य टेकबॉल क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवती इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट, निफ्टी सेटल्स अबव 23,300। India is emerging as trusted partner in global semiconductor industry, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth forecast to 7%.

0: को करंट फाइनेंशियल ईयर।
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के और निफ्टी 23,300 से ऊपर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग जगत में भारत भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर के 7% रहने का अनुमान जताया।
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। हालांकि विस्तृत बाजार में मुख्य सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.2% के लाभ में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% की तेजी आई। इससे पहले वैश्विक संकेतों के कारण बाजार गैप अप के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ।
0: In the Indian stock market today, the Sensex ended largely unchanged while the Nifty closed on a positive note. The Sensex dipped 20 points to close at 74,295. The Nifty added 76 points to settle at 23,346. However, the broader market outperformed the frontline indices. The Nifty Midcap 100 index climbed 1.2%, while the Nifty Small Cap 100 index surged 1.7%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues and traded within a narrow range throughout the session. However, uncertainty surrounding the closing auction session or CAS continued, with the Sensex slipping into negative territory after the CAS.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 4.3%, टाइटन में 2.1% और एशियन पेंट्स तथा मारुति में 2.2% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स में 3.7%, पावर ग्रिड में 2.5% और HDFC बैंक में 2.3% की बढ़त देखी गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 24 out of 28 sectors urged upward. Among the top gainers, services as well as industrials advanced 1.7%. Capital goods rose 1.6% and housing finance added 1.5%. In contrast, focused IT shed 1.4%, IT lost 1.3%, and consumer durables dropped 1.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,630 companies advanced, shares of 1,703 companies declined, while shares of 215 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 95.88 रुपये पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार पर नजर डालें तो सेंसेक्स में कुछ बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं दिखा गया, लेकिन 20 अंक की गिरावट थी। वहीं निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखी गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 3,000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज की है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से एक लंबे समय बाद इतनी बड़ी गिरावट पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं दिलचस्प कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा
1: जी।
2: पर एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एक विद्यार्थी जो के रूप में अगर मैं खुद को मानूँ तो एक्चुअली हम लोगों को आदत पड़ गई थी कि वन वे मूवमेंट स्टॉक मार्केट में
1: जी।
2: अब नीचे गिर रही है तो ये कहा जा सकता है वो आदत, हमारी आदत बिगड़ गई थी ना। तो ये वन वे मूवमेंट अपवर्ड होता है ना नीचे होता है, जैसे समंदर में ज्वार भाटा होता है अप एंड डाउन वेव्स आते हैं, उस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है। अब जहां तक आज की इंटरेस्टिंग बात जो है, अगर उसमें सबसे दिलचस्प बात जो लगी, आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, एंड वही एक्चुअली स्टोरी है जो आपके फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो जब भी

0: उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत क्या होता है, बड़ी बड़े जो किरदार होते हैं किसी फिल्म में या किसी नाटक में, उनकी तरफ आपकी नज़र तो चली जाती है, पर जो साइड रोल्स करते हैं उन वहाँ से नज़रें हट जाती है, लाइट उनके ऊपर नहीं गिरती हैं, पर यहाँ पे वहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो जो आपने देखा होगा मिड कैप इंडेक्स में आपने कहा
1: जी,
0: और स्मॉल कैप
1: अच्छी
0: में,
1: बढ़त है।
0: जी, तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे जो भारतीय जो इंस्टीट्यूशनल वित्तीय संस्थान है वो निवेश करे जा रहे हैं, और आप और हम जैसे जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा भी वहीं जा रहा है। तो ये वो हैं जो आने वाले कल के सुपरस्टार्स कहा जा सकते हैं। मिड कैप में सब तो नहीं होते हैं, कई लार्ज कैप से मिड कैप में उनका डिमोशन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं कि प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, डिमोशन भी हो जाता है, तो एक क्लास नीचे भी आप उतर सकते हैं। तो वो मिड कैप ये माना जा सकता है कि आगे चल के जो कल के जो सुपरस्टार्स हैं वो वहाँ हैं, तो वहाँ पर काफ़ी एक्शन देखा जा रहा है। और ये दूसरी बात यह है कि अभी भी, चाहे जितना भी कुछ लोग कहें, अभी भी लोग नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, SIP अभी भी हो रहा है।
1: जी
0: तो अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को, आशीर्वादों को गिने, तो वो अभी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त हैं और वो चालू है। यस, देयर इज़ नो डाउट कि 2000 पॉइंट जो आपने बोला निफ्टी में, तकरीबन 2000 से ज़्यादा गिरा है। अगर किसी ने निफ्टी 50 में डाला होगा तो वो शायद निराश हो जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखिए एक साल भर हो गया ऊपर नीचे नहीं हुआ,
1: जी
0: पर ये अवधि भी तो नहीं है जहाँ पे आपको रिटर्न देखना है। आप अगर निफ्टी स्टॉक्स में डालते हैं या इवन इंडेक्स फंड में डालते हैं या इंडेक्स में स्टॉक्स में उस अनुपात में डालें जो सूचकांक में है,
1: जी
0: तब
1: जी
0: भी आपको कम से कम 5 से 8 साल की मियाद आपको देखनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। उम्मीद है कि हम काफ़ी मैच्योर हो गए इक्विटी इन्वेस्टर्स, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स, और मुझे लगता है आगे चल के और भी मैच्योर हो जाएंगे।
1: उदयन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव मेड। यू सेड दैट यू नो दिस इज रियली नॉट द टाइम टू, सो वुड यू से दैट दिस पीरियड, वेल वी आर सीइंग दिस सो मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, वी ऑल नो द रीजन्स फॉर इट, इट्स टाइम नाउ फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स टू यू नो दिस इज येट अनदर लर्निंग कर्व फॉर देम, दैट दे आर गोइंग टू बी पीरियड्स लाइक दिस वेर यू वुड जस्ट हैव नो ऑप्शन बट आइदर टू जस्ट सिट स्टिल or maybe you know look for opportunities where you can invest and you know make broaden your horizon, but this is yet another learning curve or learning lesson for the Indian investors to you know how to cope with periods like this when the markets are going to be in this kind of situation.
0: Very interesting point that you're making, Anubha. The reason why what you're saying is so pertinent is there's been a very large number of young investors who have come in.
1: Especially since COVID.
0: Yes, and my hat's off to them because people who are older than this generation, which is me, and there are many tens of thousands like me, we have seen where when the markets went up and everybody joined the party, and when markets went down, everybody fled. So that hasn't happened. That's evolution for you.
1: Right.
0: Right. So we obviously the new gen investors who have come in, they have come in with the right ideas. Technologies help them to quickly get in, but they have the stomach, which is such super news. You know, before, you know, people like us who have been observing the markets for so many decades now, we used to lament the fact that, you know, most of the people who are benefiting from Indian stock markets are not Indians. That is not happening anymore. So those are things which, no matter how much of analytical doom and gloom people might come up with, some of it may be justified, some of them may not be justified, you cannot write them off. It's still working out. But yes, you're right. The fact that you have to see these periods through is education. And that's where the interesting part is. So suppose, what could one lesson be? That, okay, if you have invested in mutual funds, which is the fund manager or which is the fund which is doing well in this period?
1: Right.
0: Because if you can handle this period well, that means means you are a man and not a boy. So I'm not
1: coming
0: trying to
1: of age.
0: Yeah, men versus boys. It's from that standpoint I'm trying to say that. So these are the kind of things. Yes, of course, it's not always about doing something. It's also about thinking through, having a plan. And if the plan says don't do nothing, then it's a strategy, by the way.
1: Right. Let's move on.
2: Udyan, ek bahut chhota sa comment aapka is par jaanna chahunga. Closing auction session ko lekar ke anischitata ka mahol dekha ja raha hai. Iske bare mein SEBI ke chairman ne bhi kaha hai ki hame jagrukta badhane ki zarurat hai.
0: Bilkul. Dikkat attendance की है, जैसे किसी ने कहा है, जैसे कॉलेज और स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, सब हाथ उठा के या अटेंडेंस मार्क हो, तो यहाँ पे किसी ने कहा है और मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगा कि ये अटेंडेंस प्रॉब्लम है, वहाँ

0: नहीं सकते,
1: बिल्कुल
0: इवेंचुअली आपको यहीं जाना पड़ेगा। तो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ।
1: आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में लगभग 2.7% का उछाल आया, जबकि जापान के निक्केई 225 में 1.4% की बढ़त देखी गई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपने नीतिगत दरों को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25% कर दिया है, जो 1995 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बैंक के पॉलिसी बोर्ड ने 7-2 के बहुमत से इस कदम को मंजूरी दी। बैंक ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि श्रम और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मूल महंगाई 2% के लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बढ़ती मांग और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जापान की अर्थव्यवस्था तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जैसे जैसे आर्थिक हालात बदलेंगे वो नीतिगत ब्याज दर बढ़ाना और मौद्रिक समायोजन के स्तर को व्यवस्थित करना जारी रखेगा। उधर यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों ही 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। उदन बैंक ऑफ जापान ने ये जो फैसला लिया है, अगर इसको येन की दृष्टि से देखें और कारोबार के नजरिए से देखें तो कितना असर हम आगे चल करके देखेंगे और इसका इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है या और भी चीज़ें सामने हमारे नज़र आएंगी?
0: बिल्कुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो आप अपने मुद्रास्फीति और दूसरी चीज़ों के बारे में बात की, ये कोई मामूली बातें नहीं है। जापान जाना जाता था बहुत ही सबड्यूड करेंसी हुआ करती थी, वहाँ येन में खरीदारी करके लोग, उसे कैरी ट्रेड बोला जाता था, उसकी तो मेरे ख्याल से धज्जियाँ उड़ रही हैं शायद इस वक्त। मेरे पास पूरा आकलन नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, पर अगर यहाँ चल रहा है, जापान की आर्थिक स्थिति को लेके, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके लोग नर्वस हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं कैसे अमरीकी जो प्रशासन है, देर मूविंग इन टैंडम विद जापानीज
1: मॉनिटरी, कह सकते हैं यूएस सपोर्ट कर रहा है इसमें,
0: वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसके बारे में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी ने जुबान से तो नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेशन से, पर ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो किया जा रहा है एंड लोग नर्वस हैं। और हर, और सिर्फ ये जापान में ही नहीं, हर विदेश सारे देशों में बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर आप खर्चे ज़्यादा करेंगे तो आपको बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप देखेंगे बॉन्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके जो यील्ड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और वो नर्वसनेस आपको दिख रही है, और जितना लॉन्ग टेन्योर्ड बॉन्ड्स हैं वहाँ पर और दिख रहा है।
2: Udayan, you know, if you look at the decision, of course, today Bank of Japan has raised interest rates. Just yesterday, Bank of England decided to hold its rate, but they said that it may go for a hike later in the year. And a day before that, US Fed raised, went in for the first rate hike in almost 3 years. And if I go a little back, the European Central Bank has also raised its rates. Now, what is interesting I find here is that while, the US Fed was a complete unanimous decision, and even ECB was a unanimous decision, but here we see in Bank of Japan, it's a 7-2 majority decision, and Bank of England. So 6 members voted to hold while 3 others wanted a raise. What I find very interesting is, moving forward, when you look at the major central banks in the world, how challenging is it becoming for the central banks to maintain a balance between managing inflation, keeping it down, while at the same time giving impetus to the economy?
0: Anubha, it doesn't help that the central banks haven't exactly covered themselves in glory in the last 5-6 years. And see, it is when you are ill, when you're not doing well, you're feeling weak, you need medicine, you need a change in lifestyle, you don't need steroids. So when you're pumping in cash, you're actually pumping steroids, and that's not exactly the cure for this kind of an issue. So what it does, it distorts many things. It suddenly makes the equity markets look more booming than it should be. Your the fact that it's a risky asset, you start suddenly forget and you start doing it, so it's almost as if you're not in a normal state of mind. So that's there, but I wanted to point out something very important to you, which is for US, all the other countries that you talked about, I mean, I can understand. For US, it's the right time to do it because everything is going at a broader level okay. Yes. You know, their inflation is up, so they want to control it. The employment is near about okay, almost okay.
2: Yeah.
0: Their productivity is superb. Their

0: भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को 2 हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। और जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई, तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा। और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
3: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि

0: अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो
1: जी
0: वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, मतलब बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर। सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे, और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
0: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है?
3: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा, तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में है, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं। उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25 क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं, और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
1: बिल्कुल
3: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
4: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
4: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
4: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी जी।
4: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल,
4: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई डैम्स, कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
4: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल,
4: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है, लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल,
4: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं,
0: तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच

0: इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है
1: जी।
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
0: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी

0: डिले हो गया. पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग
1: दिव्यांग
0: हो गया,
1: जी.
0: वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना. तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी. तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है. प्रधानमंत्री जी, गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट
1: जी
0: लिस्ट में है. तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ,
1: जी जी
0: तो वो भी एक अलग से ये थी. तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल
0: हम पूरे भारत को लेकर. और उन्होंने एक उसमें कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था.
1: जी
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है,
1: बिल्कुल
0: सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना
1: नहीं
0: नहीं होती
1: आती
0: है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना. मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में, वो आपने जो पूछा, तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स आप अपने आप आते
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है. और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग, जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया. तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर योजनाओं पर काम करते थे.
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था. और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले. तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका, और ये पोजिशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलकर काम नहीं करें. तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक. तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था. तो जब ईपीएफओ के पास गए, उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे. पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े, और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजिशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं. और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया
1: हटा
2: यार.
1: दिया.
2: और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ, पर उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया. तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए. और ये बहुत, मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव.
1: जी आप बिल्कुल सही कहा. और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती हैं. अब जैसे नीति आयोग में भी बात है, तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है. तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में, उसे आप
0: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो
1: जी
0: 2030 के
1: थर्टी के
0: टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं.
1: जी
0: तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है. तो
1: जी
0: यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी. तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देन. तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा. मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का

0: नेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है. पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है. तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट. ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है.
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी.
2: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शर्पा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था. ये हालत थी कि उनके शर्पा लोग, यूरोप के जो शर्पा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे. और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो. तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं. तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की हर स्टेट में गए. हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ. वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया. वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया. हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट और हर स्टेट ने रोल प्ले किया. हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया. उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया. और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई. ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था. ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे. भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की. तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप. और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो. उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं. वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं. अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं. फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए. कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है. तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया. और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए.
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है. और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है. केतकर जी,
0: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा. G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए. ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा. मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो. भारत आज हर जगह टेबल पर है. G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है. और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं. भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं.
1: बिल्कुल,
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं. तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है. वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है. वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा. तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है.
1: बिल्कुल. और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है. उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे।

2047 और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए।

0: है, क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों को मिलेगा विरासत से जुड़ने का अवसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में एमबीबीएस के लिए 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विभिन्न कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग तथा दिल्ली अभिलेखागार द्वारा हेरिटेज क्लबों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में हेरिटेज क्लब स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद इसे सभी सरकारी विद्यालयों में खोला जाएगा। साथ ही साल भर विद्यार्थियों के लिए ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों के दौरे, अभिलेखागार और पुस्तकालय भ्रमण सहित कई गतिविधियां होंगी। इसके अलावा उनके लिए पारंपरिक कला शिल्प, मौखिक इतिहास और हेरिटेज फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के बच्चे अपने समृद्ध विरासत को केवल किताबों में ना पढ़ें, बल्कि उसे जाने, समझें और उसके संरक्षण के प्रति गर्व तथा जिम्मेदारी का भाव विकसित करें। वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को दिल्ली के विस्तृत और समृद्ध विरासत से परिचित कराया जाएगा।
2: आज हम लोग न केवल दिल्ली के असली इतिहास को देश के सामने लाने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे छात्रों को भी इस इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का काम क्लब के माध्यम से किया जाए और वो कमान आप सबके हाथों में होगी। आइए मिलकर इस नई शुरुआत को सफल बनाएं।
1: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि नई पीढ़ी

0: को राजधानी के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, वीरों, महापुरुषों, कला, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं से परिचित कराना आवश्यक है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। मतदान के लिए 2 स्लॉट निर्धारित किए गए थे। दिन के समय कक्षाएं लेने वाले छात्रों के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, वहीं सायंकाल वाले छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मतदान के लिए कुल 1000 ईवीएम व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 960 का इस्तेमाल मतदान के लिए किया गया, जबकि 40 ईवीएम को रिजर्व में रखा गया। मतदान कल नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हुए नुकसान और नियमों के उल्लंघन के लिए उन पर चुनावी हर्जाना क्यों नहीं लगाया गया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने डूसू चुनाव के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश पारित किए। पीठ ने कहा कि कोई भी विजय जुलूस न निकले यह सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी। अदालत में 16 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में कुछ लोगों के अतिक्रमण करने और प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत को बताया कि उसने कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करना और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार करना शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राजघाट स्थित गांधी दर्शन से सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 17 अक्टूबर तक देश भर में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में KVIC के ई कॉमर्स पोर्टल समेत 5 डिजिटल सेवाओं की शुरुआत भी की गई। इस कार्यक्रम से देश भर में 3000 से अधिक नई परियोजनाएं स्थापित होंगी और लगभग 37,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। महोत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, खादी यात्रा, स्वदेशी संकल्प, जागरूकता और कारीगर संवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: केंद्र सरकार ने दिल्ली में MBBS की 100 सीट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। ये सीटें मैदान गढ़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से जुड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स संस्थान को दी गई हैं। इस केंद्र में 16 विभागों की OPD शुरू कर दी गई है और कुल मिलाकर 970 बिस्तरों वाला अस्पताल खोला जाएगा। संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इसी के तहत पहले MBBS कार्यक्रम के लिए 100 सीटें निर्धारित गई हैं। एम्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के बीच हुए समझौते के अनुसार अस्पताल के 50% बिस्तर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अन्य लाभार्थियों के लिए हैं, वहीं बाकी 50% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए होंगे। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों तक की खपत तक ही सीमित रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम थोक उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से आगामी त्योहारों के दौरान वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि खुदरा चीनी की कीमतें अब उच्चतम स्तर से लगभग 10% तक

0: कम हो गई हैं। सरकार ने आज चीनी के थोक और खुदरा विक्रेताओं से चीनी की कीमतों में हुई महत्वपूर्ण कमी का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की। मंत्रालय ने कहा कि सरकार घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है और उपभोक्ताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए 20 और 27 सितंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में एक अनौपचारिक वार्ता में भाग लेते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा से लेकर वैश्विक कंपनियों को भारत में संपूर्ण उत्पाद डिजाइन करने में सक्षम बनाने तक सेमीकंडक्टर उद्योग में विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया को काफी अच्छी वैश्विक प्रतिक्रिया मिली है।
2: वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
3: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की अपराध शाखा ने साथ मिलकर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से पाकिस्तान मूल का 2 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में भी वांछित था। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, 2 सोने के सिक्के, 1 सोने की चेन और 1 हीरे का सेट सहित 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने निवेश के नाम पर पीड़िता से लगभग 60 लाख रूपये के आभूषण और नकदी की ठगी की। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST की दक्षिणी दिल्ली की के आयुक्त के कार्यालय ने लोहे और इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के खिलाफ चल रही है कार्रवाई का हिस्सा है। आरोपी को CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मालिक को फर्जी चालानों के माध्यम से 25 करोड़ रुपए से अधिक के अमान्य ITC के धोखाधड़ी, पूर्ण लाभ उपयोग और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों को पश्चिम विहार क्षेत्र में ग्रीस का वीजा हासिल करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। जांच के दौरान दोनों अवैध प्रवासी वैध पहचान या यात्रा दस्तावेज पेश करने में असफल रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में छत्तीसगढ़ से आए युवा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि ये युवा अगले 5 दिनों तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों और प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे और अपने अनुभव देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बांस एक बहुउपयोगी, नवीकरणीय और टिकाऊ संसाधन है जो आजीविका के साथ साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में भी योगदान देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन से मुलाकात कर उन्हें टीम दिल्ली में शामिल करने पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संजू सैमसन का दिल्ली से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष दिल्ली में बिताए और यहीं से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों को मिलेगा विरासत से जुड़ने का अवसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में एमबीबीएस के लिए 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विभिन्न कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं। ये हमले बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख

0: उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ तीन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, एलसीए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। हैदराबाद में आज दक्षिण क्षेत्र क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का सफल समापन हुआ। सम्मेलन के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के किसानों को सहयोग देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक अन्य लोग घायल भी हुए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का आज है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़ चुके हैं उस महफिल में जिसका नाम है मधुरिमा। वक्त हुआ है 8:11:06। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री और मधुरिमा की महफिल में आज हम बात करेंगे राग पीलू की और राग पीलू पर आधारित कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे।

फिल्म बंदनी का ये गीत आपने सुना, और ये राग पीलू का जो गीत है ये हमने आपकी नज़र किया। राग पीलू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और चंचल प्रकृति का राग है। राग पीलू तरंग म्यूजिक राग है जिसका उपयोग मुख्यतः ठुमरी, दादरा और हल्के फुल्के संगीत में किया जाता है। इसका थाट काफ़ी है, जाती औड़व संपूर्ण, आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। इसका वादी स्वर गंधार गा है और संवादी स्वर निषाद नी है।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा की महफिल। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राग पीलू की। शास्त्रीय राग पीलू के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो गायन का समय है वो दिन का तीसरा प्रहर है, दोपहर से शाम का समय माना जाता है। उसकी प्रकृति चंचल और श्रृंगार रस प्रधान ये राग होता है। स्वर जो है इसके, इसमें दोनों

गंधार कोमल और शुद्ध, दोनों धैवत और दोनों निषाद तथा अन्य स्वर जो हैं शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम राग पीलू पर आधारित गीत आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत राग पीलू पर आधारित।

वक्त फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में, और आइए अब सुनते हैं गीत एक फूल चार कांटे फिल्म से।

इस गीत के साथ ही मधुरिमा की महफिल आज यहीं समाप्त करते हैं। संजीव अग्निहोत्री को दीजिए इजाजत, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती। श्रोताओं, 20वें एशियाई खेलों का बिगुल बज चुका है। हालांकि आधिकारिक उद्घाटन समारोह कल होना है, लेकिन भारत का विजय अभियान आज से ही शुरू हो गया है। आज के अंक में हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। हम बात करेंगे जापान के टोक्यो पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के बड़े बयान पर। चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिसने आज सुबह जापान को धूल चटाकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। साथ ही भारत के उस जीत की भी बात करेंगे, जहां टैगबॉल के मैदान पर तिरंगे की धमक हुई है। कल के उस मैच की भी बात होगी, जहाँ भारत ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और 46वें फिडे चेस ओलंपियाड के तीसरे चरण के दौर की भी बात करेंगे, जहां पे निर्णायक मोड़ पर मैच पहुंच चुका है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले 15 मिनट तक। तो श्रोताओं, चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर की तरफ, जो आ रही है महिला क्रिकेट के मैदान से। जापान के आईची नागोया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के अभियान की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने मेजबान जापान को 8 विकेट से धूल चटाकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस मैच की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारी सहयोगी दिव्या से। दिव्या, बताइए कैसा रहा हमारी बेटियों का प्रदर्शन?
1: जी जया, आज नागोया के कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में भारत की महिला गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला है कि जापानी टीम पूरी तरह से असहाय नजर आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया। और भारत की तरफ से सबसे घातक गेंदबाजी की श्री चढ़नी ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और

0: 4 विकेट चटकाए। रही सही जो कसर थी वो शेफाली वर्मा ने 2 विकेट में पूरी कर दी। इसके बाद रन चेज में शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ नाबाद 40 रन कूट डाले और भारत को 8 विकेट से एक तरफा जीत दिला दी। अब भारतीय टीम 20 सितंबर को सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी।
1: क्या बात है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारी विमेंस इन ब्लू ने तो कमाल कर दिया है। श्रोताओं, मैं जानती हूं कि आप इस वक्त गाड़ी चला रहे होंगे, घर पर होंगे या फिर दफ्तर में, लेकिन जहां भी हैं अपनी विमेंस इन ब्लू के लिए तालियां तो बनती है। जो लोग इस वक्त घर पर आराम से बैठकर ये शो सुन रहे हैं वो अपने कमरों को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दे, और हाँ, जो लोग हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं वो बस मन ही मन हमारी टीम को वेल डन कह दे, क्योंकि आपका ध्यान सड़क पर होना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो इस बार एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेक बॉल की, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने इतिहास रचते हुए इस खेल के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने जापान की टॉप सीड खिलाड़ी को हराकर हर किसी को चौंका दिया है। तो चलिए इस नए खेल में भारत की उम्मीदों पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मुकेश से।
2: जी हाँ जया, आज एशियाई खेलों के नगोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अपने पहले ही एशियाई खेलों में 24 साल की भारतीय खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा ने ग्रुप ए के बेहद कड़े मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त युइना साकामोतो को 2-1 से हरा कर तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने कंबोडिया की खिलाड़ी को भी मात दी और सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाया। शनिवार को उनका मुकाबला इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। और जया, अब केवल एक जीत भारत का पहला ऐतिहासिक मेडल पक्का कर देगी। हालांकि मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गई है, लेकिन रेपचेज के मुकाबले में अभी पदक की आस बाकी है। जया, एक और निराश करने वाली खबर यह है कि सॉफ्ट टेनिस के मेंस टीम इवेंट में क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम को इंडोनेशिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, और उस टीम का सफर अब यहीं पर समाप्त हो गया है।
1: शुक्रिया मुकेश इस बेहतरीन अपडेट के लिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। श्रोताओं, भले ही एशियन गेम्स की स्पर्धाएं आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत कल से हो रही है, जहां ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉट पुट के मौजूदा चैंपियन तंजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से ठीक पहले भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। जापान में भारत की राजदूत नागमा मलिक ने टोक्यो में उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। खेल मंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इन खेलों में भाग ले रहे 503 सदस्य विशाल भारतीय दल का नेतृत्व और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां खुद उपस्थित हैं। टोक्यो से आ रही रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मांडविया ने वहां पहुंचकर भारतीय एथलीटों के रहने, उनके खान पान और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। एक विशेष बातचीत में खेल मंत्री ने यह दोहराया है कि भारत का विजन बहुत लंबा और स्पष्ट है, कि सरकार मिशन 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिसके लिए 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खेल बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि जापान की धरती पर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह तय करेगा कि हम वैश्विक मंच पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खेल मंत्री के इस दौरे से निश्चित रूप से हमारे 300 से अधिक उन युवा खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, जो पहली बार एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर उतर रहे हैं। चलिए अब एशियन गेम्स के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की तरफ, जहां टेनिस के विश्व कप यानी डेविस कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच 2 दिनों की महाटक्कर की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन के दोनों सिंगल्स मैच समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारत फिलहाल 0-2 से पीछे चल रहा है, लेकिन ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। कल इसके बाकी बचे हुए निर्णायक मैच खेले जाने हैं। आज के मैच की पूरी रिपोर्ट के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी निखिल की रिपोर्ट।
3: सियोल के ओलंपिक टेनिस सेंटर में आज भारतीय टेनिस फैंस के लिए दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। डेविस कप 2026 के इस बेहद अहम नॉकआउट मैच के पहले दिन मेजबान दक्षिण कोरिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई। पहले सिंगल्स मैच में भारत के युवा खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश ने शानदार शुरुआत करते हुए पूर्व वर्ल्ड नंबर 157 कोन सुन वू के खिलाफ अपना पहला सेट 6-3 से जीता, लेकिन अंत में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के अनुभव के आगे वे मुकाबला 6-3, 3-6, 4-6 से हार गए। इसके बाद सभी की निगाहें भारत के टॉप सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल पर थी। नागल ने भी पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन सेमीफाइनलिस्ट चुंग ह्योन को बेहद कड़ी टक्कर दी और पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया, लेकिन चुंग ह्योन ने वापसी करते हुए मैच 6-2, 4-6, 5-7 से अपने नाम कर लिया। पहले दिन भारत भले ही 0-2 से पीछे हो गया है, लेकिन कल होने वाला डबल्स मैच में एन श्रीराम बालाजी और निक्की पोनाचा की जोड़ी से भारतीय फैंस को शानदार वापसी की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स गेम।
1: अब बात करते हैं कल के मैच की, जहां भारत ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है अब तक की। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों के विशाल अंतर से हराया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर शानदार क्लीन स्वीप पूरा किया। यह T20 इतिहास में भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था और इसके बाद मंगलवार को खेले गए मैच में भी टीम इंडिया ने इतने ही अंतर से जीत हासिल की थी। अगर कल के मैच के मुख्य आकर्षण देखें तो अभिषेक का शतकीय तूफान हम देख सकते हैं, जहां पे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में शतक जड़कर फुल मेंबर देशों के बीच T20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 34 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इसके अलावा जो सबसे आकर्षण के केंद्र में एक है विशाल स्कोर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन ने भी 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया और पूरी टीम 14 ओवर और एक गेंद में सिर्फ 94 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए और रवि बिश्नोई ने 26 रन देकर भी 3 विकेट छटकाए हैं। क्रिकेट के इस जश्न के बीच चेस ओलंपियाड के तरफ चलते हैं, जहां भारत के मुकाबले अभी भी काफी रोमांचक स्थिति में चल रहे हैं। आज शतरंज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। 46वें फेडर चेस ओलंपियाड 2026 का तीसरा दौर है और आज के मैच अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने अब तक अपने अजेय क्रम को बरकरार रखा है। अगर अभी की हम ताज़ा रिपोर्ट देखें, जानकारी देखें, तो जो पहले दौर में अर्जुन एरिगेसी को अप्रत्याशित हार मिली थी, अब वे आज बोर्ड नंबर 3 पर शानदार वापसी कर रहे हैं। वे इटली के फ्रांसिस्को सोनीस के खिलाफ इस समय पूरी तरह से हावी हैं। वहीं बोर्ड नंबर 1 पर वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और इटली के सबिनो ब्रुनेलो के बीच भी बहुत ही पेचीदा और बराबरी का मैच चल रहा है। वहीं बोर्ड नंबर 2 पर आर प्रज्ञानंदा ने लोरेंजो लोडिकी के खिलाफ एंड गेम में मामूली बढ़त बना रखी है। शानदार फॉर्म में चल रहे निहाल सिरीन भी बोर्ड नंबर 4 पर मजबूती से डटे हुए हैं, इस मैच को जीतने की बेहद मजबूत स्थिति में भी है। अगर हम महिला टीम की बात करें तो ग्रीस के साथ हमारी भारतीय महिला टीम का मुकाबला चल रहा है। भारत के दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल अपने अपने बोर्ड पर ग्रीक खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त बना चुकी हैं और किसी भी वक्त भारत के पक्ष में पहला अंक ला सकती हैं। वहीं आज के मैच में स्टार खिलाड़ी कोनेरू हम्पी की वापसी हुई है, वे बोर्ड नंबर 1 पर संयम के साथ खेल को आगे बढ़ा रही है। अब चलते हैं बैडमिंटन की बात करते हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। आज भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए यहां से बहुत बड़ी और ताज़ा अपडेट आ रही है। दरअसल टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स में असम की टीम ने ऐतिहासिक दबदबा दिखाते हुए चारों श्रेणियों यानी कि बॉयज गर्ल्स मेन्स और वुमेन्स के गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है और इस खिताबी जीत के साथ ही असम की सीनियर टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई भी कर लिया है। असम की जो स्टार और अंतर्राष्ट्रीय शटलर हैं अश्मिता चाहिला की अगुवाई में टीम ने 3-0 से एक तरफा जीत हासिल की है और खिताब अपने नाम किया। वहीं अगर हम पुरुष

टीम की बात करें तो फाइनल में असम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में शुरुआत में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और मणिपुर को 3-1 से हरा कर मेंस टाइटल पर कब्जा किया। इसके अलावा बॉयज टीम ने भी असम के जूनियर खिलाड़ियों बॉयज टीम में जो जूनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 से मात दिया है। टीम इवेंट्स समाप्त होने के बाद आज दोपहर से ही व्यक्तिगत

भारतीय टीम शतरंज से अभी ताजा अपडेट आ रही है कि राउंड थ्री में भारतीय पुरुष टीम इटली पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स में भारत के स्टार अर्जुन एरिगेसी बोर्ड नंबर तीन पर जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ महिला वर्ग में दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने ग्रीस के खिलाफ भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में ही भारत की इस दोहरी जीत पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम एशियन खेल की भी बात करें तो दो दिन के बाद हॉकी का भी मैच होने वाला है, जो कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी, हमारे गौरव की बात है। वो मैच भी एशियन में शुरू होगा। और अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में हमारी टीम कहीं भी पीछे नहीं है। अगर महिला की बात करें या फिर पुरुष टीम की बात करें, दोनों ही टीमें अपनी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा जो और भी आकर्षण के केंद्र बने होंगे वो हॉकी के अलावा बहुत सारी खबरें भी हैं हमारे पास। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। स्पोर्ट्स स्कैन में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। भारतीय एथलीटों को चीयर करते रहिए, क्योंकि आप जब तक मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी हमारा भारत जीतेगा। तो अब इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान

0: नहीं हुआ है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमी

0: कॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
8: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
7: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली

0: साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली मिले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी NTA की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephonic call from President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in areas of energy, defence, technology, investment and healthcare. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of the Crown Prince in the BRICS summit and UAE's cooperation.

मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यह संदेश बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा किया गया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि यह संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि 2026 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जबकि 2025 में यह 7.3% थी। यह मजबूत निजी खपत, निवेश, बुनियादी ढांचे पर सरकार के लगातार खर्च, सेवा क्षेत्र की मजबूती और निजी निवेश में तेजी के कारण संभव हुआ है। बांग्लादेश ने क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देने के लिए सार्क संगठन को फिर से सक्रिय करने की मुहिम तेज कर दी है। ढाका में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के दौरे के दौरान बांग्लादेश ने इस पर भूटान से मजबूत समर्थन मांगा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना वाले स्थान पर बचाव कार्य चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने मौके से भागने से पहले चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र से 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में

0: भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: केरलम राज्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और खाड़ी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केरलम पर्यटन ने संयुक्त अरब अमीरात के पर्यटन उद्योग और हितधारकों के साथ दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट में भाग लिया। अरेबियन ट्रैवल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक प्रमुख वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी है जो 14 से 17 सितंबर तक दुबई में आयोजित की गई। यह आयोजन इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन पेशेवरों के लिए एक वैश्विक व्यापार मंच के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने पड़ोसी देश में हाल ही में आई बाढ़ में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते से वस्तुओं और सेवा के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते को जल्द पूरा करने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज मॉस्को में रूस के रक्षा उपमंत्री जनरल यूनुस बेक येवकुराव से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत रूस के दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सेना ने बैठक के बाद बताया कि संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और सैन्य सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कल से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:31 और 6 सेकंड। श्रोताओं, ये समय है, आप जानते ही हैं, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। आज साथ हूँ मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुँचती है श्रोताओं, इस प्यारे से ख्याल के साथ कि इस प्यारी सी रात में जैसे सदाबहार गीत आपके दिलों को मरहम लगाते हैं, ठीक वैसे ही दोस्त कहते हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। जी हाँ जनाब, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा बनते हैं। वो कहते हैं ना, चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आइए सुनते हैं हरसिंगार का ये प्यारा अंदाज और ये प्यारा गीत। बुलंदी फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे किशोर जी और आशा जी की आवाज में, और इस गीत को अल्फाज दिए हैं मशरूह सुल्तानपुरी साहब ने। जी हाँ श्रोताओं, ये प्यारा अंदाज आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, हम तो आपको ले आए हैं 100.1 MHz पर, और आप देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों कि कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो समय वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जी हाँ, दिल की बात कहने के लिए कभी कभी दूसरों के दर्द चुरा कर अपने दिल का हाल सुनना कुछ बहुत प्यारा लगता है। कुछ इस अंदाज में आइए सुनते हैं अगला गीत, अब्दुल्ला फिल्म से रफ़ी साहब की प्यारी आवाज़, और इस आवाज़ को अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार का ये खूबसूरत अंदाज आप तक पहुंच रहा है। जी हाँ श्रोताओं, बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं कि और ये कहूँ कि जिंदगी का जो अनुभव है ना, वो कुछ आपको यही अंदाज सिखाता है। उम्दा लोगों के साथ हम और बेहतर होना सीखते हैं और गलत के साथ शांत रहने की कला हमें आती है। कहते हैं, रुके तो चांद, चल पड़े तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में छांव जैसा है। रात के आंचल में चांद का झांकता कुछ ऐसा सुकून देता वो जलवा। जी हाँ, जो आपको और आपके मन को गीत के अंदाज में कुछ ऐसा ही आप तक पहुंच रहा होगा, ये ऐसा ही सुकून आप महसूस कर रहे होंगे। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से, और इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये सुरमई अंदाज़।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार और श्रोताओं, ये गीत 90 के दशक की एक ऐसी फिल्म जो आज भी हमारे दिल को महका जाती है, यही कहूँ कि मुस्कुराहट हमारे होठों पर जरूर ले आती है। आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया तुषार भाटिया जी ने। श्रोताओं, कहते हैं इश्क अगर रूह से हो तो हर चेहरा कमाल लगता है। वैसे भी खूबसूरती न सूरत में न लिबास में है, निगाहें जिसे चाहें उसे हसीन कर देती हैं। ये अंदाज तो खैर शायरी का है, लेकिन हाँ, नज़रिया बहुत कुछ बदल देता है। चलते चलते बस जो समय है वो हमें इशारा कर रहा है कि आज के हर सिंगार को यहीं समेटने की आप मुझे दें इजाज़त। वो कहते हैं ना, मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। जी हाँ, चलते चलते बस आपसे यूं ही मिलते रहेंगे और आप तक बेहद खूबसूरत अंदाज के कार्यक्रम पहुंचाते रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का, 11:10 पर मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे और 11:40 पर मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। तो फिलहाल आइए आपको सुनवाती हूँ एक बेहद प्यारा गीत जो कि हीरा पन्ना फिल्म से है, लता जी और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने और संगीत बद किया आटी बामन जी ने। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती

नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। In Indian stock market, Sensex ends on flat note. Nifty settles above 23,300. India is emerging as trusted partner in global semiconductor industry, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth forecast to 7% for current financial year.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के और निफ्टी 23,300 से ऊपर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग जगत में भारत भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर के 7% रहने का अनुमान जताया।
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence to and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। हालांकि विस्तृत बाजार में मुख्य सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.2% के लाभ में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% की तेजी आई। इससे पहले वैश्विक संकेतों के कारण बाजार गैप अप के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ।
0: In the Indian stock market today, the Sensex ended largely unchanged while the Nifty closed on a positive note. The Sensex dipped 20 points to close at 74,295. The Nifty added 76 points to settle at 23,346. However, the broader market outperformed the frontline indices. The Nifty Midcap 100 index climbed 1.2%, while the Nifty Small Cap 100 index surged 1.7%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues and traded within a narrow range throughout the session. However, uncertainty surrounding the closing auction session or CAS continued, with the Sensex slipping into negative territory after the CAS.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 4.3%, टाइटन में 2.1% और एशियन पेंट्स तथा मारुति में 2.2% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स में 3.7%,

0: पावर ग्रिड में 2.5% और HDFC बैंक में 2.3% की बढ़त देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 24 out of 28 sectors urged upward. Among the top gainers, services as well as industrials advanced 1.7%. Capital goods rose 1.6% and housing finance added 1.5%. In contrast, focused IT shed 1.4%, IT lost 1.3% and consumer durables dropped 1.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,630 companies advanced, shares of 1,703 companies declined, while shares of 215 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 95.88 रुपए पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार पर नजर डालें तो सेंसेक्स में कुछ बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं दिखा गया, लेकिन 20 अंक की गिरावट थी। वहीं निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखी गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 3000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज की है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से एक लंबे समय बाद इतनी बड़ी गिरावट पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं दिलचस्प कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, पर एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एक विद्यार्थी जो के रूप में अगर मैं खुद को मानूं, तो एक्चुअली हम लोगों को आदत पड़ गई थी कि वन वे मूवमेंट स्टॉक मार्केट में, अब नीचे गिर रही है, तो ये कहा जा सकता है वो आदत, हमारी आदत बिगड़ गई थी। ना तो ये वन वे मूवमेंट अपवर्ड होता है, ना नीचे होता है, जैसे समंदर में ज्वार भाटा होता है, अप एंड डाउन वेव्स आते हैं, उस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है। अब जहां तक आज की इंटरेस्टिंग बात जो है, अगर उसमें सबसे दिलचस्प बात जो लगी, आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, एंड वही एक्चुअली स्टोरी है जो आपके फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो जब भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत क्या होता है, बड़े बड़े जो किरदार होते हैं किसी फिल्म में या किसी नाटक में, उनकी तरफ आपकी नजर तो चली जाती है, पर जो साइड रोल्स करते हैं उन वहां से नजरें हट जाती है, लाइट उनके ऊपर नहीं गिरती है, पर यहाँ पे वहां पे एक्शन हो रहा है। तो जो आपने देखा होगा मिड कैप इंडेक्स में आपने कहा, और स्मॉल कैप
0: अच्छी बढ़त है
2: जी, तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे जो भारतीय जो इंस्टीट्यूशनल वित्तीय संस्थान है वो निवेश करे जा रहे हैं, और आप और हम जैसे जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा भी वहीं जा रहा है। तो ये वो हैं जो आने वाले कल के सुपरस्टार्स कहा जा सकते हैं मिड कैप में, सब तो नहीं होते हैं, कई लार्ज कैप से मिड कैप में उनका डिमोशन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं कि प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, डिमोशन भी हो जाता है, तो एक क्लास नीचे भी आप उतर सकते हैं। तो वो मिड कैप ये माना जा सकता है कि आगे चल के जो कल के जो सुपरस्टार्स हैं वो वहां हैं, तो वहां पे काफी एक्शन देखा जा रहा है। और तो और ये दूसरी बात ये है कि अभी भी चाहे जितना भी कुछ लोग कहें, अभी भी लोग नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, SIP अभी भी हो रहा है जी। तो अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को, आशीर्वादों को गिने, तो वो अभी काफी काफी जबरदस्त हैं और वो चालू है। यस, देयर इज नो डाउट कि 2000 पॉइंट जो आपने बोला निफ्टी में, तक 2000 से ज्यादा गिरा है। अगर किसी ने निफ्टी 50 में डाला होगा तो वो शायद निराश हो जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखिए एक साल भर हो गया ऊपर नीचे नहीं हुआ, पर ये अवधि भी तो नहीं है जहां पे आपको रिटर्न देखना है। आप अगर निफ्टी स्टॉक्स में डालते हैं, या इवन इंडेक्स फंड में डालते हैं, या इंडेक्स में स्टॉक्स में उस अनुपात में डालें जो सूचकांक में है, तब भी आपको कम से कम 5 से 8 साल की मियाद आपको देखनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। उम्मीद है कि हम काफी मेच्योर हो गए इक्विटी इन्वेस्टर्स, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स, और मुझे लगता है आगे चल के और भी मेच्योर हो जाएंगे।
1: This is really not the time to. So, would you say that this period, well, we are seeing these so much volatility in the markets because of whatever reasons, we all know the reasons for it. It's time now for the Indian investors to, you know, this is yet another learning curve for them, that there are going to be periods like this where you would just have no option but either to just sit still, or maybe, you know, look for opportunities where you can invest and, you know, make broaden your horizon. But this is yet another learning curve or learning lesson for the Indian investors to, you know, how to cope with periods like this when the markets are

0: going to be in this kind of situation.
1: Very interesting point that you're making, Anubha. The reason why what you're saying is so pertinent is there's been a very large number of young investors who have come in.
0: Especially since COVID.
1: Yes, and my hat's off to them because people who are older than this generation, which is me, and there are many tens of thousands like me, we have seen where when the markets went up and everybody joined the party, and when markets went down, everybody fled. So that hasn't happened. That's evolution for you.
0: Right.
1: Right. So we obviously the new gen investors who have come in, they have come in with the right ideas. Technology has helped them to quickly get in, but they have the stomach, which is such super news. You know, before, you know, people like us who have been observing the markets for so many decades now, we used to lament the fact that, you know, most of the people who are benefiting from Indian stock markets are not Indians. That is not happening anymore. So those are things which, no matter how much of analytical doom and gloom people might come up with, some of it may be justified, some of them may not be justified, you cannot write them off. It's still working out. But yes, you're right. The fact that you have to see these periods through is education. And that's where the interesting part is. So suppose, what could one lesson be? That, okay, if you have invested in mutual funds, which is the fund manager or which is the fund which is doing well in this period?
0: Right.
1: Because if you can handle this period well, that means you are a man and not a boy. So I'm not
0: coming of age.
1: Yeah, men versus boys. It's from that standpoint I'm trying to say that. So these are the kind of things. Yes, of course, it's not always about doing something. It's also about thinking through, having a plan. And if the plan says don't do nothing, then it's a strategy, by the way.
0: Right. Let's move on.
2: Udin, ek bahut chhota sa comment. Aap ka is par jaana chahoon. Closing auction session ko lekar ke anischitata ka mahol dekha jara. इसके बारे में सेबी के चेयरमैन ने भी कहा है कि हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, दिक्कत अटेंडेंस की है, जैसे किसी ने कहा है, जैसे कॉलेज और स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, सब हाथ उठा के या अटेंडेंस मार्क हो, तो यहाँ पे किसी ने कहा है और मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगा कि ये अटेंडेंस प्रॉब्लम है। वहां पे अगर पार्टिसिपेशन बेहतर होगा, लोगों को मालूम होगा, तो एक जो और ये जो चलन है, ये जो नॉर्म है, ये जो प्रैक्टिस है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, इससे आप पीछे हट नहीं सकते।
2: बिल्कुल,
1: इवेंचुअली आपको यहीं जाना पड़ेगा। तो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, मैं बिल्कुल मानता हूं।
2: आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 2.7% का उछाल आया, जबकि जापान के निकेई 225 में 1.4% की बढ़त देखी गई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपने नीतिगत दरों को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25% कर दिया है, जो 1995 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बैंक के पॉलिसी बोर्ड ने 7-2 के बहुमत से इस कदम को मंजूरी दी। बैंक ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि श्रम और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मूल महंगाई 2% के लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बढ़ती मांग और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जापान की अर्थव्यवस्था तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जैसे जैसे आर्थिक हालात बदलेंगे, वो नीतिगत ब्याज दर बढ़ाना और मौद्रिक समायोजन के स्तर को व्यवस्थित करना जारी रखेगा। उदयन, बैंक ऑफ जापान ने ये जो फैसला लिया है, अगर इसको येन की दृष्टि से देखें और कारोबार के नजरिए से देखें, तो कितना असर हम आगे चल करके देखेंगे और इसका इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है या और भी चीजें सामने हमारे नजर आएंगी?
1: बिल्कुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो आप अपने मुद्रास्फीति और दूसरी चीजों के बारे में बात की, ये कोई मामूली बातें नहीं है। जापान जाना जाता था बहुत ही सबड्यूड करेंसी हुआ करती थी, वहां येन में खरीदारी करके लोग, उसे कैरी ट्रेड बोला जाता था, उसकी तो मेरे ख्याल से धज्जियां उड़ रही हैं शायद इस वक्त। मेरे पास पूरा आकलन नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर अगर यहां चल रहा है, जापान की आर्थिक स्थिति को लेके, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके लोग नर्वस हैं। आपने देखा होगा कि काफी रिपोर्ट्स भी आई हैं कैसे अमरीकी जो प्रशासन है, दे मूविंग इन टैंडम विद जापानीज
2: मॉनिटर, कह सकते हैं यूएस सपोर्ट कर रहा है इसमें।
1: वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसके बारे में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी ने जुबान से तो नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेशन से, पर ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो किया जा रहा है एंड लोग नर्वस हैं.

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और श्रोताओं स्टूडियो से मैं हूं साथ रोहिणी। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन पछतावा हमेशा इंतजार करता है। इसलिए जब ये एहसास महसूस हो तो जज्बातों के सफर में जी हाँ धैर्य बनाए रखिए। शायद जिंदगी का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है। मनमीत बने कुछ ऐसे ही गीतों को सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने जिंदगी के इस सफर में। आइए आगाज करते हैं गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से अंदाज के साथ। आपको बता दें कि ये जो गीत है लव मैरिज फिल्म से है, लता जी रफी जी की आवाज में, और इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन जी।

कहते हैं रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, तो जिंदगी का सफर अगर मेहनत से जिया जाए ना तो वाकई में आप बहुत करीब होते हैं सफलता के, अपने लक्ष्य को पाने के। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये प्यारा अंदाज। ये अगला गीत जो आपकी नजर है, हरियाली और रास्ता फिल्म से मुकेश शिवलता जी की आवाज में। ये गीत जो भी आप सुनेंगे श्रोताओं, अनाड़ी फिल्म से है लता जी और मुकेश जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म से ये गीत।

100.1 MHz पर यह खूबसूरत अंदाज आप सुन रहे थे श्रोताओं। कहते हैं कि जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म से। जी हाँ, मुकेश जी और लता जी की आवाज में ये गीत सजा है और इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जय किशन जी ने। आइए सुने ये प्यारा अंदाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, फिलहाल जो स्टूडियो की घड़ी है वो इशारा कर रही है कि मैं अब आपसे लूं इजाजत। एक और बेहद प्यारे सुरीले गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूं। दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से ये गीत है, जिसे गुनगुनाया है लता जी ने अपनी आवाज में और अल्फाज से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने, संगीत दिया शैलेंद्र साहब ने। फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। शुभ रात्रि, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इस ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप राय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। चुनावों के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephonic call from President of UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed a deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation manufacturer Hindustan Aeronautics Limited, HAL, yesterday handed over light combat aircraft Tejas Final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru yesterday. Defence Minister Rajnath Singh and Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu attended the handing over ceremony. HAL handed over two light combat aircraft Tejas Final operational clearance twin-seater trainer aircraft to the Indian Air Force. It also handed over four Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. HAL also delivered the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Defence Minister named the aircraft Ankur. Speaking at the event, Defence Minister Rajnath Singh expressed confidence that India will emerge as a global player in the sector and appreciated HAL's efforts to indigenize defence and civil aviation technologies. The Election Commission yesterday allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Reji Nagar on the 6th of next month under new identities. The group led by Arup Roy has been allotted the name Democratic Trinamool Congress and the envelope symbol. The faction led by Mamata Banerjee has been allotted the name Mamata All India Trinamool Congress and the football player symbol. Polling for the Delhi University Students' Union, DUSU, concluded yesterday. Voting was held in two phases. Voting was held for four central posts, that is President, Vice President, Secretary and Joint Secretary. Counting of votes will take place today at the Multipurpose Hall of Delhi University's Sports Stadium in North Campus. And at the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating host Japan by 8 wickets in Nissan yesterday. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. And that's the end.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आज भी चलिए हम बैठकर कुछ पुरानी बातों को दोहराते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं, कमरे की सफाई कर रहे होते हैं, तो कभी कोई पुरानी डायरी हाथ लग जाए तो जरा सोचिए क्या होता है। उसे खोलने से पहले ही बीते हुए दिनों की खुशबू आने लगती है। पहले पन्ने पर लिखी तारीख देखकर याद आता है कि उन दिनों हम कितने अलग थे। कुछ सपने थे जो बहुत बड़े थे, कुछ नाम बहुत अपने थे, और कुछ रास्ते ऐसे थे कि जिनके बारे में ये कभी सोचा ही नहीं कि ये रास्ते बदल जाएंगे। और पन्ना पलटते पलटते एक जगह आकर उंगली रुक जाती है, जहां खुद को ही मोटिवेट करने के लिए उस डायरी के पन्ने में लिख दिया था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज वर्षों बाद उस वाक्य को पढ़कर अचानक लगता है कि कभी कभी हमारा पुराना मन हमसे कहीं ज्यादा समझदार हुआ करता था, है ना। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले की, मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है पवित्र पापी।

चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

पुराने दिनों की जब हम बात करते हैं तो हम उस दौर में भी चले जाते हैं जब हम किताबों के बीच फूल को दबाकर रखा करते थे और उस फूल में दबी होती थी बहुत सारी सुंदर सुंदर यादें। एक किताब के बीचों बीच सूखा हुआ फूल मिलना ठीक वैसे ही होता था जैसे किसी पुराने पत्र से मिलना। कभी वह फूल ताजा रहा होगा, किसी ने बड़े जतन से उसे चुना होगा और फिर किताब के पन्नों के बीच उसे सुरक्षित रख दिया होगा। वर्षों बाद रंग फीका पड़ चुका है, पंखुड़ियां नाजुक हो गई हैं, लेकिन उसे देखकर सवाल उठता है कि किस अवसर पर दिया गया था ये फूल, किसके हाथ से आया था, कौन सा मौसम था तब। इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले या फिर शायद दिल के अंदर ही छुप कर बैठे हों, जिन्हें याद कर लेने मात्र से ही लबों पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन उस फूल ने एक काम और कर दिया, उसने साबित कर दिया कि कुछ पल बीत कर भी हमारे भीतर अपनी जगह को हमेशा बचा कर रखते हैं। ऐसी बहुत सारी यादों को साथ बैठकर साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और फिर करते हैं आपसे बातें। फिल्म का नाम है जाने दुश्मन, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अगर तुम न होते।

कहते हैं कि प्यार की कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं होती, कोई निश्चित शब्द नहीं होते प्यार के लिए। प्यार को जीने और समझने के लिए मन और एहसास का होना जरूरी होता है। सुबह होने से पहले किसी घर की रसोई की रोशनी जलती है, कोई चुपचाप आटा गूंथ रहा है, कोई बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रहा होता है, दूध उबलने की आहट के साथ ही दिन की शुरुआत हो जाती है। घर के बाकी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन किसी एक की दिनचर्या सबके सुबह को आसान बनाने के लिए शुरू हो चुकी होती है। यह काम अक्सर तस्वीरों में नहीं आता, ना ही किसी समारोह में इसकी चर्चा होती है, फिर भी घर की गर्माहट में इसका हिस्सा सबसे बड़ा होता है। शायद प्यार की सबसे सच्ची शक्ल कई बार बड़े शब्दों में नहीं, सुबह सुबह तैयार किए गए एक छोटे से टिफिन में भी मिल जाता है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य में आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और रूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। रूप राय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चढ़नी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चढ़नी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said India had taken a note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US Sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, India has conveyed at senior levels of the U.S. administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation manufacturer Hindustan Aeronautics Limited, HAL, yesterday handed over light combat aircraft Tejas final operational clearance to in-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru yesterday. Defence Minister Rajnath Singh and Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu attended the handing over ceremony. HAL handed over two light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer aircraft to Indian Air Force. It also handed over four Dhruv next-generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. HAL also delivered the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Defence Minister named the aircraft Ankur. Speaking at the event, Defence Minister Rajnath Singh expressed confidence that India will emerge as a global player in the sector and appreciated Hindustan Aeronautics Limited's efforts to indigenize defense and civil aviation technologies. The Election Commission yesterday allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rajinagar on the 6th of next month under new identities. The group led by Arup Roy has been allotted the name Democratic Trinamool Congress and the envelope symbol. The faction led by Mamata Banerjee has been allotted the name Mamata All India Trinamool Congress and the football player symbol. In its order, the poll body said both groups would be treated as recognized political parties in West Bengal, Meghalaya and Tripura. And that is the end of this news bulletin.

हर एहसास का कोई नाम हो ये जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, वे परिभाषाओं से परे होते हैं। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ना उन्हें समझाया जा सकता है और ना उन्हें लिखा जा सकता है। उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, बस उन्हें पूरा जिया जा सकता है। फिर भी वो बातें दिल के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर बात को, हर एहसास को शब्दों की जरूरत नहीं होती। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल, और आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पतंग और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी हम जब कुछ लिखने बैठते हैं तो कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कागज पर उतर ही नहीं पाता, कागज खाली भी नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव, वही रुकना सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिखा जाता है शायद वो उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाता है। कहते हैं हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो बीच में कहीं किसी मोड़ पर ठहर कर उम्र भर के लिए याद बन जाते हैं। अगला गीत यशुदास की आवाज में, फिल्म का नाम है स्वामी।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यूं ही तुम मुझसे

जरा सोच कर देखिए कि बारिश वाली एक शाम हो, किसी सफर में हो और एक सीट बस की खिड़की के पास मिल जाए, तो जो सफर है ना वो अपने आप में बहुत सुंदर हो जाता है। शीशे पर पानी की लकीरें दौड़ती रहती हैं, बाहर दुकानों के बोर्ड धुंधले पड़ते जाते हैं और एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बादलों को गिनने की कोशिश करता है। पीछे बैठे बुजुर्ग बार बार अपनी छतरी संभालते हैं और कोई छात्र फोन पर घर पहुंचने की खबर दे रहा होता है। कोई महिला अपने बैग में बची हुई मिठाई संभाल कर रखती है। अलग अलग मंजिलों के ये यात्री, अलग अलग कहानी, कुछ किलोमीटर तक एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर एक एक करके अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अपने अपने गंतव्य पर उस बस से उतर जाते हैं और फिर बस जो है वो अगली कहानी को साथ लेकर आगे निकल पड़ती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अभी सुनेंगे एक गीत, आवाज है मुकेश और कंचन की, फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

बचपन वाली बारिश याद है? जरूर याद होगी। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी नदी बन जाता था। कागज की नाव बनती थी और उसे बहते हुए देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती, किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी सुंदर है, जो याद है, चल पड़ने की। हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती, कभी एक साधारण कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। है ना सुंदर सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम है खुशबू।

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद, आवाज है शमशाद बेगम और आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवनहंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बाद कोई जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत का इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उधर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। In India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि किताबों की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत अलग होती है। लिखने और पढ़ने वाले की जो सोच होती है वो आम लोगों की सोच से थोड़ी सी अलग होती है। लिखने वाला जो होता है ना, वो काली गहरी रात में भी रंग भर देता है, सितारों से रात को खूबसूरत बना देता है। रेगिस्तान की जो रेत होती है ना, उसे वो सुनहरी नजर आती है, और उस सुनहरी रेत में वो जीवन तलाश कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि पढ़ने वाले और लिखने वाले की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग दुनिया होती है। किताब का आखिरी पन्ना आते ही अक्सर मन उसे बंद नहीं करना चाहता, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन पात्र जो होते हैं ना, वो कुछ देर तक हमारे भीतर ही ठहर जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अब इनके साथ क्या हुआ होगा। शायद यही किसी अच्छी कहानी की पहचान भी है, कि उसके शब्द समाप्त होने के बाद भी उसकी दुनिया भीतर चलती रहती है। ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी भी ऐसी ही एक किताब है। हर अध्याय अपने समय पर पूरा होता है। कुछ पात्र रास्ते में मिलते हैं और कुछ आगे तक साथ चलते रहते हैं, कुछ बीच रास्ते में ही ठहर भी जाते हैं, और आखिरी पन्ना आने तक हम समझ पाते हैं कि कहानी जो चल रही थी ना जनाब, ये जीवन की, ये सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं थी, ये संवेदनाओं की, एहसासों को महसूस किए गए जीवन की एक कहानी थी। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है प्रेम कहानी।

बहुत सारी पुरानी बातों को याद करते करते एक और बात याद आ गई। घर के कोने में रखा वो पुराना एल्बम, पुराना एल्बम जिसमें बहुत सारी पुरानी यादें कैद होती हैं। किसी भी पुराने एल्बम में एक तस्वीर, सोचिए जरा, अगर अचानक सामने आ जाए, चेहरे परिचित हैं, बस समय ने सबकी उम्र बदल दी है। किसी के बाल अब सफेद हो चले हैं, किसी का शहर बदल चुका है और कोई तस्वीरों में ही सिमट गया है। तस्वीर के पीछे लिखी तारीख उस दिन को फिर से जिंदा कर देती है। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो तस्वीर लेते वक्त का एक साधारण सा क्षण था, एक दिन इतना कीमती लगेगा। जिंदगी की खूबसूरती शायद यही है कि हम महत्वपूर्ण पलों को अक्सर उस समय नहीं पहचान पाते जब वो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। उन पलों की सबसे ज्यादा याद या सबसे ज्यादा पहचान हमें तब होती है जब वे बीत कर हमारी सबसे प्यारी और सबसे प्रिय याद बनकर हमारे अंदर बस चुके होते हैं। और जिंदगी इसी का नाम है। इसलिए कहते हैं कि जब वक्त हमारे साथ चल रहा होता है ना, तो हमें हर एक पल को एक याद बनाकर खुद के भीतर संजो लेना चाहिए। और यही वो वक्त होंगे, यही वो यादें होंगी जब हम अकेले खुद के साथ बैठेंगे तो हमारे चेहरे पर छोटी छोटी मुस्कुराहटें लेकर आएंगे। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

शहर से जब हम गांव की तरफ चलते हैं तो गांव की जो पगडंडी होती है उस पगडंडी पर चलने की कोई जल्दी नहीं होती। दोनों ओर खेत, हवा में मिट्टी की सौंधी सी गंध और दूर कहीं बैलों के गले में बजती घंटियां। रास्ता बिल्कुल सीधा है, फिर भी हर मोड़ पर एक नया दृश्य मिल जाता है। किसी खेत में काम करता किसान, किसी पेड़ के नीचे बैठा राहगीर और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज। शहरों में मंजिलें जल्दी मिल जाती थी, गांव की पगडंडी रास्ते को भी याद रखने लायक बना देती है। शायद इसी वजह से कुछ रास्ते छोटे होकर भी बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म ही राजा से।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति पर चलते चलते आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी संबोधित करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते

0: हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ही ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल सिंह ने 2018 के जकार्ता 2022 के हांगचाऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khaled in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks in Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security. They impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistani Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today morning in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. And polling for the Delhi University Students Union, DUSU, concluded yesterday. Voting was held in two phases. Voter turnout of 39.86% was recorded in the election this time. Voting was held for four central posts: President, Vice President, Secretary and Joint Secretary. Counting of votes will take place today at the Multipurpose Hall of Delhi University's University Sports Stadium in North Campus. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ आज हूँ मैं आपका हमराही फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। कभी कभी कुछ रिश्तों को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक नज़र काफ़ी होती है।

खामोशी काफी होती है और आंखों में छुपा कोई राज दिल तक पहुंच जाता है। शाम की तन्हाई हो या रात का सुकून, मोहब्बत के कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं। और जब उन एहसासात को गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज, आड़ी बर्मन साहब का दिलकश संगीत और लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ें मिल जाती हैं, तो एक गीत नहीं, एक पूरा का पूरा ख्वाब बन जाता है। तो आइए कुछ पल ठहरते हैं, कुछ खामोशियां सुनते हैं और आंखों में छुपे उन अनकहे राज को महसूस करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराहे के इस दिलकश महफिल में।

0: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। घर फिल्म का ये नगमा था और ये फिल्म आई थी 1978 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में। रात की खामोशी में जब शहर की रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती है तो दिल की आवाज जरा साफ सुनाई देने लगती है। कहीं कोई चांद को निहार रहा है, कहीं किसी की याद पलकों पर ठहरी है, और कहीं कोई अपने महबूब के नाम एक खूबसूरत सा ख्वाब बुन रहा है। कहते हैं ना, मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं होती, उसका असर तो पूरी फिजा पर दिखाई देता है। हवा कुछ ज्यादा महकने लगती है, रात कुछ ज्यादा हसीन लगने लगती हैं, और लगता है जैसे बहार ने चुपके से दस्तक दे दी हो। तो आइए आज के इस पुरसुकून रात में, आइए कुछ पल के लिए पुराने जमाने की उसी मासूम मोहब्बत में लौट चलते हैं, जहां इजहार में शरारत थी, नजरों में नजाकत थी और गीतों में दिल की सच्ची दास्तान। फिल्म आराधना का ये सदाबहार नगमा आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन साहब का दिलकश संगीत और लता जी और साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब की वो बेहद दिल को छू लेने वाली आवाज़ जो सीधे दिल पे दस्तक देती है। दिल की खिड़की खोलिए और महसूस कीजिए उस मौसम को, जहां हर तरफ बस एक ही पैगाम है, बागों में बहार है।
1: तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:23 और 45 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। दोस्तों, जिंदगी भी अजीब दास्तान है ना। कभी रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं और कभी बस एक मोड़ आता है जहां खड़े होकर समझ नहीं आता किधर जाएं और किस तरफ मुड़ जाएं। रात की इस खामोशी में जब दुनिया थोड़ी थम सी जाती है, शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर हमें अपने पुराने कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ रास्ते हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ यादों तक। कुछ लोग सफर में हमारे साथ चलते हैं, कुछ किसी मोड़ पर पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा ठहर सी जाती है। और शायद इसी एहसास को गुलजार साहब ने इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि रास्ते भी सवाल करने लगे और खामोशी भी एक जवाब बन गई। फिल्म आंधी का वो बेहद खूबसूरत गीत जिसको संगीत से संवारा है आरडी बर्मन साहब ने और आवाजें हैं लता जी और किशोर कुमार साहब की। तो आइए इस रात जरा अपने सफर को याद कीजिए, उन चेहरों को याद कीजिए जो कभी आपके साथ किसी मोड़ तक चले थे, क्योंकि ये सफर बेहद खूबसूरत था। शायद हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर यादें कभी अलग नहीं होती।

फिल्मां थी का ये बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कभी कभी रात के किसी खामोश पहर में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तब दिल जाने क्यों कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है। कोई चेहरा याद आता है, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी मुलाकात, और फिर लगता है जैसे वक्त गुजर तो गया मगर कुछ एहसास वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, कभी सामने होती है, कभी ख्वाबों में, और कभी बस दिल के किसी कोने में। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें हमने कभी आवाज़ नहीं दी, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ नहीं मिले,

फिर भी दिल उन्हें उम्र भर महसूस करता रहता है। और जब उन अनकहे एहसासात को साहिर लुधियानवी के अल्फाज मिले और खयाम साहब की सादगी भरी धुनें मिले और हम सब के चहेते मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज मोहब्बत बनकर उतर आए, तो एक गीत नहीं रहता, वो दिल की एक खामोश दास्तान बन जाता है। तो आज के इस नर्म सी रात में उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा मगर शायद कह नहीं पाए, मगर महसूस हमेशा ही किया। जरा आंखें बंद कीजिए, अपने किसी खास चेहरे को याद कीजिए जिन्हें आप चाहते थे, और इस नगमे को महसूस कीजिए। फिल्म कभी कभी का ये अमर नगमा लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, कौन जाने आज रात इस गीत के किसी अल्फाज में आपको भी अपनी कोई पुरानी मोहब्बत मिल जाए, हो सकता है ऐसा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:40 और हमराही में मैं हूं आपका हमराही फेरोज। तो आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। रात का ये पहर भी कितना अजीब है ना, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर जब चारों तरफ खामोशी होती है तब दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा सुनाई देती हैं और फिर अचानक किसी की याद भी आती है। एक चेहरा, एक मुस्कुराहट, एक नजर और दिल खुद ब खुद कह उठता है ये हुआ कैसे। मोहब्बत शायद इसी का नाम है जब किसी को चाहने का एहसास धीरे धीरे दिल पर इस तरह दस्तक देता है कि पता ही नहीं चलता कब कोई अपना सा हो गया। कभी कोई नजर दिल चुरा लेती है, कभी कोई बात और कभी सिर्फ एक मुस्कान पूरी रात का ख्वाब बन जाती है। आज की इस खूबसूरत रात में कुछ ऐसी ही शरारत, कुछ ऐसी ही मोहब्बत और कुछ पुराने जमाने की वही मासूमियत लेकर आ रहा है अगला ये बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमा। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के नाजुक अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का ये दिलकश संगीत और आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी चुलबुली सी आवाज़। तो अगर आपका भी दिल कभी किसी से चुपके से लगा हो या किसी ने चुराया हो तो आज की ये पेशकश आपके लिए। फिल्म यादों की बारात का ये बेहद खूबसूरत नगमा, शायद कुछ यादें लौट आएंगी, शायद कुछ चेहरा मुस्कुरा उठेगा और शायद दिल फिर से वही पुरानी धुन गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाएगा इस नगमे के साथ।

फिल्म यादों की बारात का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी हमराही। और रात की खामोशी में कुछ रिश्ते और भी गहरे सुनाई देते हैं, वो रिश्ते जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें समझने के लिए कभी कभी सिर्फ एक नज़र काफ़ी होती है। दो लोग, दो दिल और उनके बीच की वो खामोश सी दुनिया जहाँ हजारों बातें बिना कहे समझ ली जाती हैं। मोहब्बत सिर्फ पास होने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस एहसास का नाम है जो फासलों के बावजूद दो दिलों को एक दूसरे से जोड़ ले हैं। कभी कोई अपना हमारी खुशी में छुपा होता है, कभी हमारी तन्हाई में, और कभी हमारी हर धड़कन के बीच। आज के इस पुरसुकून रात में हम आगे बढ़ेंगे एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जो दिलों के बीच बसे उसी खूबसूरत रिश्ते की दास्तान कहता है। आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का बेहद खूबसूरत संगीत और हम सब की प्यारी लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की ये आवाज़ें। तो ज़रा अपने किसी ख़ास शख्स को याद कीजिए इस माहौल में, उस रिश्ते को महसूस कीजिए जिसके बारे में शायद आप सब कुछ कह नहीं पाते मगर दिल सब जानता है। फिल्म एक दूजे का ये बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमा उन तमाम रिश्तों के नाम जो लफ्जों से नहीं एहसास से लिखे जाते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम रहे कि इस दिलकश महफिल में मोहब्बत, आखिर मोहब्बत है क्या चीज, एक सवाल जिसका जवाब शायद सदियों से दिल ढूंढता आया है। कभी मोहब्बत किसी की मुस्कान में मिलती है, कभी किसी की आंखों की खामोशी में, कभी एक मुलाकात में पूरी दुनिया समा जाती है और कभी उम्र गुजर जाती है, मगर दिल फिर भी कहता है कुछ तो बाकी है। मोहब्बत में अजीब सी कशिश होती है, दर्द भी देती हैं, सुकून भी, रुलाती भी हैं, और उसी आंसू के पीछे एक मीठी सी खुशी भी छुपी होती है। शायद इसीलिए मोहब्बत को समझना आसान नहीं, बस महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

सुरेश वाडकर साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। हमराही से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा ठीक 4:10 पर अगला प्रोग्राम अरुणिमा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की समय सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों तक की खपत तक ही सीमित रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थान CNN, MS Now और पॉलिटिको के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये मीडिया संस्थान उनके प्रशासन के बारे में लगातार झूठी और काल्पनिक खबरें प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी अन्य संस्थानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ संबंधित मीडिया संस्थानों और संगठनों की ओर से कानूनी चुनौती दिए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहार जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मी सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। कोहार अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजिंदर पाल ने 2018 के जकार्ता, 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उधर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khaled in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US Sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy, security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today morning in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal service authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defense, among others. In polling for the Delhi University Students Union, DUSU concluded yesterday. Voting was held in two phases. Vote turnout of 39.86% was recorded in the election this time. Voting was held for four central posts, president, vice president, secretary and joint secretary. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों रात हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है, हर दिन का खत्म होना किसी कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी अंधेरा सिर्फ इसलिए आता है ताकि हमें सुबह की रोशनी की कदर हो सके। जिंदगी में भी कुछ दिन ऐसे आते हैं जब रास्ते आसान नहीं होते, मंजिल दूर लगती है और दिल कहता है बस अब थोड़ा आराम चाहिए। तो आराम कीजिए लेकिन अपने ख्वाबों से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि कुछ मंजिलें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं और कुछ ख्वाब हमें खुद

पुकार रहे होते हैं। बस जरूरत है उस आवाज को सुनने की कि हमारा अगला कदम हमें कल से बेहतर जगह तक ले जा सकता है। तो आज की इस रात अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, जो बीत गया उसे शुक्रिया कहिए, जो आने वाला है उसका खैर मकदम इस्तकबाल कीजिए और अपने दिल में ये उम्मीद रखिए कि सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। इसी उम्मीद और इसी प्यार से, इसी प्यारे एहसास के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सफर का आगाज करते हैं फिल्म नील कमल का ये सदाबहार नगमा, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ तो बस क्या कहने। कभी कभी ज़िंदगी की पुकार बहुत धीमी होती है, बस दिल को थोड़ा खामोश करना पड़ता है ताकि उसे सुना जा सके।

मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ में यह नगमा था फिल्म नील कमल से, और यह फिल्म आई थी 1968 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, रात के इस खामोश पहर में एक खूबसूरत सा ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूं, और वो है, वक्त गुजरता रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं, और जिंदगी हमें एक शहर से दूसरे शहर, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक ले जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वक्त भी नहीं मिटा पाता, और वो है किसी की कही हुई एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में दिया गया एक सहारा, किसी के चेहरे पर लाई हुई हमारी एक मुस्कान, और वो मोहब्बत जो हमने किसी के दिल में छोड़ दी।

शायद जिंदगी का असली मतलब बहुत कुछ हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि अपने सफर में कुछ ऐसे निशान छोड़ जाना है जिन्हें याद करके किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, एक हंसी आ जाए। नाम रहे या ना रहे, किसी याद हो या ना हो, अगर हमारी मौजूदगी में किसी की जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाया है तो समझिए हमारा सफर बेकार नहीं था। तो आज की रात कल की फिक्र थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और खुद से बस इतना कहिए, जिंदगी छोटी जरूर है मगर इससे खूबसूरत बनाने के लिए एक नेक दिल और थोड़ी सी मोहब्बत काफी है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अब एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, किनारा फिल्म का वो नगमा जो हमें याद दिलाता है कि वक्त भले ही नाम मिटा दे लेकिन एहसासात अपनी जगह बना ही लेते हैं। गुलजार साहब के अल्फाज, आर डी बर्मन साहब का बेहद खूबसूरत संगीत और लता जी और भूपेंद्र की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:31 और 20 सेकेंड। दोस्तों, रात की खामोशी में आज एक बात कहते हैं, एक बात करते हैं। जिंदगी में हम अक्सर यही सोचते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी पसंद क्या है, बस इन्हीं उलझनों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन कभी कभी सुकून इस सवाल में छुपा होता है, जिसे हम चाहते हैं उसे क्या अच्छा लगता है, ये बात मायने रखती है। किसी की पसंद को समझना, उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेना और बिना किसी शोर के किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना, शायद यही रिश्तों की असल खूबसूरती है। हर रिश्ता बराबर देने और

बराबर पाने का हिसाब नहीं होता। कुछ रिश्ते तो बस समझने, निभाने और ख्याल रखने से खूबसूरत बने रहते हैं। और याद रखें, किसी के लिए किया गया एक छोटा सा काम, एक छोटी सी चीज शायद आपके लिए मामूली हो, लेकिन किसी की पूरी शाम, पूरी रात, किसी का पूरा दिन, बल्कि कभी कभी किसी के लिए पूरी जिंदगी यादगार बन जाती है। तो आज हम भी अपने किसी खास शख्स के बारे में सोचेंगे, और आप भी सोचिए और खुद से पूछिए उसे क्या पसंद है। शायद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार किसी बड़े वादे में नहीं, बल्कि इस छोटी सी समझ में छुपा है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, और सफर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है इंदीवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंदी साहब ने, और आवाजें हैं मुकेश की, यानी हम सबके बेहद अजीज, बेहद प्यारे मुकेश साहब। कभी कभी किसी की खुशी को अपनी पसंद बना लेना ही मोहब्बत की सबसे प्यारी जबान है।

जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सफ़र फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, रात की इस खामोशी में हम और आप मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफ़र पर, और इस ज़िंदगी के सफ़र पर एक ख्याल जो हमारे जहन में भी कई बार आता है और यकीनन आपके जहन में भी ज़रूर आता होगा, लेकिन उन ख्यालात को हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप हमें अपने फीडबैक के साथ ज़रूर अपने पैगाम पहुँचाएँ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा और ईमेल आईडी आप नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldyardaily@gmail.com fmgoldyardaily@gmail.com। तो आइए अरुणिमा के इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का रास्ता बहुत उलझ गया है, मंजिल दिखाई नहीं देती और आगे का सफ़र कुछ धुंधला सा लगता है, लेकिन शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी में है कि हर रास्ता हमें पहले से मालूम नहीं होता। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। इसीलिए अगर आज आपके सामने भी कोई ऐसा मोड़ है जहाँ आगे का रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ठहरिए, सांसें लीजिए और सोचिए कि हमें जाना किधर है, क्योंकि हर नदी को अपना किनारा एक ही पल में नहीं मिलता। वो बहती है, रास्ते बदलती है, पत्थरों से टकराती है और फिर भी अपना सफ़र जारी रखती है। हम भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं ना, कभी रफ्तार तेज़ होती है, कभी कदम धीमे पड़ जाते हैं, मगर सफ़र रुकते नहीं। तो आज की रात हम भी रुकेंगे नहीं, जो पीछे छूट गया उसे गिले शिकवे के साथ नहीं, एक खूबसूरत याद की तरह रखेंगे, और जो सामने है उसका हम स्वागत करेंगे। क्या पता जिस मंजिल की तलाश में हम इतने दिनों से भटक रहे हैं वो हमारे सफ़र में ही कहीं हमारा इंतज़ार कर रही हो। इसी खूबसूरत उम्मीद और सुकून के साथ अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म खुशबू से, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और आर डी बर्मन साहब का बेहद खूबसूरत संगीत है, किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर किशोर कुमार साहब की आवाज में ये बेहद खूबसूरत नगमा था फिल्म किनारा से। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, और रात के इस खामोश पहर में कभी कभी दिल से बस एक सवाल निकलता है, क्या जिंदगी में हर चीज का पूरा होना जरूरी है? तो जवाब होता है शायद नहीं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते, और कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। लेकिन जिंदगी यहीं तो खत्म नहीं होती ना, कभी कभी जो हमारे पास है उसे महसूस करना भी बेहद जरूरी है। देखिए ना, आसमान में आधा चांद भी निकला हो और खूबसूरत भी लगता हो, वो पूरा भी नहीं है फिर भी अपनी रोशनी से रात को सुकून देता है। तो शायद हमें भी अपनी जिंदगी की अधूरी चीजों से परेशान होने के बजाय जो मिला है उसकी कद्र करना बहुत ही जरूरी है। अगर आज दिल थोड़ा उदास है तो उसे उदास रहने दीजिए, हर एहसास को तुरंत बदलना ठीक नहीं। बस इतना यकीन रखिए ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। कल की सुबह आज की रात से थोड़ी अलग होगी और शायद कुछ नया, कुछ खूबसूरत आपका इंतजार कर रहा होगा। तो आइए आज की रात जो मिला उसके लिए शुक्रिया कहें, और जो नहीं मिला उसे यह खूबसूरत ख्वाब की तरह छोड़ दिया जाए। इसी सादगी भरे एहसास के साथ अब एक बेहद खूबसूरत कलाम, एक बेहद खूबसूरत गजल हम आपके लिए लेकर आए हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की बहुत ही प्यारी आवाजों में। कहते हैं कुछ दर्द, कुछ तन्हाई और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी है इसमें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की रात और ऐसा चांद। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये बेहद खूबसूरत गजल। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन भर हम कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, काम, जिम्मेदारियां, ख्वाहिशें, और कभी कभी तो खुद से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन जब दिन ढलता है और रात धीरे धीरे अपनी चादर फैलाती है तो लगता है जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो, अब थोड़ा ठहरो, आज जो मिला उसे महसूस करो। हर दिन बिल्कुल वैसा ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कुछ दिन बहुत खुशनुमा होते हैं, कुछ दिन थोड़े मुश्किल, और कुछ दिन ऐसे जिन्हें बस गुजर जाने देना चाहिए। मगर याद रखें, कोई भी दिन हमेशा नहीं रहता। जैसे शाम के बाद रात आती है और रात के बाद एक नई सुबह, वैसे ही मुश्किल वक्त के बाद सुकून का वक्त भी जरूर आता है।

0: आनंद फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए अरुणिमा से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 5:10 पर मैं रहूंगा लेकर अगला प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 मॉडल के प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक सुबह के 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब और आज की इस नई सुबह में आपका शानदार इस्तकबाल है। एक नई सुबह, एक नया दिन और जिंदगी की तरफ से मिला एक और खूबसूरत मौका। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आती है तो लगता है जैसे कुदरत हमें धीरे से याद दिला रही हो, कल चाहे जैसा भी था आज फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। और आज हम भी एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी के साथ। आज की शुरुआत किसी फिक्र से नहीं, एक छोटी सी दुआ के साथ। उस ईश्वर से, उस खुदा से दुआ करेंगे कि आज का दिन हर किसी के लिए आसान कर देना, जिसके दिल में कोई परेशानी है उसे सुकून अता कर देना, जिसके घर में कोई बीमार है उसे शिफा देना, जिसके दिल में कोई ख्वाहिश है अगर उसके हक में बेहतर हो तो उसे पूरी करना। ये सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया हुआ, उस खुदा का दिया हुआ है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ, ये ज़िंदगी भी हमारी उन्हीं की दी हुई है। तो हमारे दिलों से गुस्सा, नफरत और गिला, शिकवा कम करना और

उनकी जगह मोहब्बत, सब्र और प्रेम भर देना। इसी उम्मीद के साथ आइए आज के सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तेरी है जमीन तेरा आसमान। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये नगमा सुषमा श्रेष्ठ की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। अगर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की ये दिलकश महफिल, एक नई सुबह, एक नया दिन और अपने ख्वाबों को फिर से जीने का एक नया मौका। सुबह की पहली किरण हमें ये तो सिखाती ही है, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, आज को एक खूबसूरत शुरुआत दीजिए। जिंदगी में हर दिन हमारे मुताबिक हो ये मुमकिन नहीं, लेकिन हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। तो आज सुबह फिक्र थोड़ी कम कीजिए, मुस्कान थोड़ी ज्यादा रखिए, जो आपके पास है उसके कदर कीजिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए और अपने दिल से कहिए, आज का दिन खास है क्योंकि ये मेरा आज है। यकीन रखिए, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी पूरे दिन को रोशन कर देती है। तो चलिए इस उम्मीद और ताजगी को एक बार फिर से नगमे के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस उदास की बेहद खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह की पहली किरण जो हमें बेहद खूबसूरत लगती है, जब हम उन किरणों को देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक नई उम्मीद पैदा होती है कि हमारा आज का दिन बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होगा। जिंदगी वाकई कई बार ऐसा लगता है कितनी अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि कभी कुछ हमारे मुताबिक होता है और कभी बिना किसी वजह के रास्ते बदल जाते हैं। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी इसी अनिश्चितता में है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल से कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का और खुद को थोड़ा और समझने का। तभी तो शायर कहता है कि जिंदगी बिल्कुल एक पहेली की तरह है। कई बार बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं कि जिंदगी आखिर है क्या। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर भी हर सुबह हम कदम उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और एक बार फिर से एक भरोसे के साथ नई सुबह में कदम रखते हैं। शायद यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है, हर सुबह हमें दोबारा शुरू करने का मौका देती है। तो आज हम भी इस नई सुबह में एक नई उम्मीद के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।